स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: बोली एक हफ्ते की जो गतिविधि है वो इस तरह की रही है हम लोगों की कि जिसमें कि सब लोग ठीक से जुड़ सकें। जैसे कि 12 तारीख को शुरुआत हुई तो इनॉग्रल डे था वो, जहां पर ईस्ट कोस्ट में अगर हम देखें
1: की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जल आपूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पुलिस सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गाँव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गाँव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही है। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँव में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रूपये की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। PVK के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
3: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी

0: सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: स्वागत अभिनंदन, वेलकम बैक है, वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात। एक नई सुबह है साथियों, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह में। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। और हम कहते हैं रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हुआ है अभी 8:21, आज 9 अक्टूबर की सुबह है यार। साथियों आप भी हमारे साथ आज की मॉर्निंग जुड़ सकते हैं ढेर सारी बातों के साथ, और अच्छे अच्छे गाने अच्छी अच्छी बातें लेकर आ गया हूँ आपके रेडियो सेट पर आज की सुबह। और इन्हीं बातों से और इन्हीं गानों से जो है होगी आज की बेहतरीन से सफ़र की शुरुआत। अगर आप भी मेरे साथ आज जुड़ना चाहते हैं, ये मौका है आपके पास, तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं 9837896896। चलिए जी आज का सफरनामा शुरू करते हैं इस बेहतरीन गाने के साथ, इस वंडरफुल ट्रैक के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: तुमको मेरी कसम दूर जाना नहीं।
0: लेकिन उससे पहले बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए भाई साहब, ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो, ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो, जिससे विचार ना मिले उनसे थोड़ा सा दूर रहो। सुबह सुबह धमाल मचाने, अब से लेके 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होंगी दिल से दिल तक। आप कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही स्टे ट्यून्ड रहो मेरे साथ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552.
0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

देखिए, मैं रेडियो पर आता हूँ, आपकी जान बनकर रेडियो पे सुबह सुबह आता हूँ, आपका दोस्त बनकर, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपका गुरु भी बन के आ जाता हूँ। हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है आप सभी को। मेरी जोशीली आवाज के साथ एक ब्रांड न्यू वाली गुड मॉर्निंग एंड साथ में एक बढ़िया वाला बिग शाउट आउट आज की सुबह। एंड आज अभी वक्त हो रहा है 8:33, आज 9 तारीख हो गई है, आप निकल चुके हैं ना अपने मॉर्निंग सफर पे, बहुत ही बढ़िया। साथियों, सुबह सुबह का समय है और बार बार मैं तो आपसे बस एक ही बात बोलता हूँ कि जो आपके मन में होता है ना वो आपकी जुबान पर होता है ना, तो इसीलिए अपने मन को थोड़ा सा सकारात्मक ऊर्जाओं से भरिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचने का प्रयास कीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास आपकी कक्षा में 100 स्टूडेंट हैं और अगर आपने कोई अच्छी बात पढ़ाई है तो यकीन मानिए वो 100 फॉलो करें ना करें, लेकिन उसमें से 2 या 4 तो आपकी बात को डेफिनेटली फॉलो करेंगे, उस बात पे ज़रूर अमल करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर 100 पीपल में से 4 लोगों ने भी आपकी बात को फॉलो किया तो आपका काम तो हो गया ना सक्सेसफुल। तो इसीलिए बस अपने मन में और अपनी जो आपका एक ऑरा है उसको हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने मन को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए जीवन में, क्योंकि हर एक कदम जो है का आपके लक्ष्य की ओर होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप अपना कदम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाते हैं, अपनी कामयाबी की तरफ आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं, तो बस उसमें क्या करना है, एक तो आपको बिल्कुल अपनी ज़मीन से जुड़े रहना है। जब आप ज़मीनी स्तर से जुड़े रहते हैं ना तो आप कभी नीचे नहीं गिरते हैं, आप हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी में जब भी कुछ करना है, कुछ बनना है या फिर कुछ कर रहे हैं या कुछ बन रहे हैं, तो अपनी जो एक ज़मीनी स्तर पर आपका जो एक जुड़ाव है, आपका जो एक लगाव है, उसे प्लीज़ मत खोइए, उसे मत भूलिए। कहते हैं ना, जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ही जीवन में आगे जाने के चांसेस हैं ना। तो लाइफ में आप जितना हो सकता है ना बस ग्रैटिट्यूड को साथ रखिए, अपनी ज़मीनी स्तर से जुड़े रहिए और ज़िंदगी में जो भी आपको करना है, जो भी आप पाना चाहते हैं, यकीन मानिए वो सब कुछ ऊपर वाला आपको देगा। चलिए जी, आप सभी का एक बार फिर से वार्म वेलकम करेंगे एंड थैंक यू सो मच। हमारा शो आप जो है डेली सुनते हो, इतना प्यार हमें करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। ढेर सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने वंडरफुल मैसेज करने के लिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी और सच में ना इतने पॉजिटिव मैसेज आप पहुंचाते हैं कि मन हमारा भी प्रसन्न हो जाता है। ये मैसेज मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू आनंद, आप कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड सुबह सुबह आपके प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं आपकी बातें सुनकर और काफ़ी इंटरेस्टिंग गाने आप प्ले करते हैं, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। देखिए, कोशिश हमारी भी होती है कि हम भी जब रेडियो पर सुबह सुबह आए तो कुछ बेहतरीन गीत और बेहतरीन बातें और कुछ नई बातें लेकर आए हर दिन की सुबह। देखिए, जैसे ये सुबह ब्रांड न्यू होती है ना, वैसे ही बातें भी हर दिन कुछ ना कुछ नई होती है ना, तो हमारी भी कोशिश होती है कि जब भी हम रेडियो पर आएँ तो कुछ नया और बेहतरीन लेकर आएँ। थैंक यू सो मच शिखा हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिखा ने लिखा है, आनंद गुड मॉर्निंग, यू आर माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी, थैंक यू वेरी वेरी मच। एक बात बताता हूँ आप लोगों को, बड़ी कमाल की बात है कि जो जितना खूबसूरत और मन का सुंदर होता है ना, वैसे ही उसे सामने वाले लोग नज़र आने लगते हैं। तो ये खूबसूरती मेरी नहीं है कि मैं आपको खूबसूरत या अच्छा लग रहा हूँ, ये तो आपकी खूबी है, ये तो आप खूबसूरत हैं। जब हम सुंदर होते हैं, मन हमारा अच्छा होता है, हम अच्छे विचारों के धनी होते हैं, तो हमें ना हर इंसान, हर कोई हमें अच्छा नज़र आता है। तो बस आप भी अच्छे हैं इसीलिए आपको सब अच्छा लगता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट पर मैं निकाल रहा हूँ आज की सुबह एंड वन ऑफ माई ओल्ड टाइम फेवरेट गाना, ऑफकोर्स आपको भी पसंद आएगा। ट्रैक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है फ्रॉम द फिल्म चाइना गेट, उर्मिला माथुर का परफॉर्मेंस, बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग, साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं इस गाने को। एंड अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पर। सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर में वापस आते हैं।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया। सच बताऊं रूपमा राठौर, जसमिंदर नरूला की आवाज़ सुबह सुबह ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं तो दिन वैसे ही अच्छा हो जाता है जी। कैसे हाल चाल है श्रोताओं? कहते हैं जिंदगी हर दिन आपको एक कागज़ देती है, जिंदगी जो है हर दिन का सूरज आपको आपकी ज़िंदगी में एक कोरा कागज़ देता है, उस पर क्या लिखना है ये आपको डिसाइड करना होता है। अगर आप कुछ बेहतर लिखते हैं तो ज़िंदगी में आपकी हो जाती है बल्ले बल्ले। हाँ जी, कैसे हाल चाल? आज के दिन की आपको देता हूँ ढेरों मंगल शुभकामनाएं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी, सुप्रभात सुन रहे हैं आप आरजे आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए साथियों बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में कि आज का दिन क्यों प्रसिद्ध है, आई मीन टू से कि आज का जो ये इतिहास है वो क्यों खास है, इतिहास के पन्नों में क्या महत्वपूर्ण छिपा है, आज की तारीख में क्या लिखा है ऐसा इतिहास के पन्नों में जो आज के दिन को थोड़ा सा खास और स्पेशल बना रहा है। आपको बता दें सन 1876 में पहली बार टेलीफोन पर आउटवेयर के जरिए दो तरफा बातचीत जो है वो हुई थी श्रोताओं, आज ही के दिन। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और आज के दिन 1959 में ऑटो रिक्शा और प्लेन में चलते हुए जो है वो लोगों ने बातचीत करनी शुरू की थी श्रोताओं, आज ही के दिन। इसके अलावा आपको बताते चलें अफ्रीका देश का युगांडा गणतंत्र बना आज ही के दिन, और अर्जेंटीना के प्रसिद्ध मार्क्सवादी क्रांतिकारी जो थे 1967 में 1997 में इटली के अभिनेता और लेखक डीरो फोको साहित्य का नोबल पुरस्कार जो है वो दिया गया था, इनको सम्मानित किया गया था। इसी विषय पर मैं डेफिनेटली आपको एक और बात बताऊंगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले एक और ख़ास चीज़ आपको बताते चले। सन 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की, उत्तर कोरिया ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था आज ही के दिन। और आपको बताते चलें आज ही के दिन जो है और एक और खास चीज़ ये हुई कि भैया सन 1624 में मुराद बख्श जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन। इसके अलावा आज ही के दिन सन 1826 को राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनका जन्म हुआ था श्रोताओं आज ही के दिन। प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक थे, आज ही के दिन जन्म हुआ था अमजद अली खां का 1945 में। राधेश्याम बिरले छत्तीसगढ़ के प्रख्यात नृत्य नृतक रहे, इनका जन्म हुआ आज ही के दिन 1966 में। चलिए दोस्तों आज के दिन तो और भी बहुत सारे विशेष दिवस मनाए जाते हैं, विश्व डाक दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ज़रूर हम उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। बस आप ऐसे ही हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए, और बाकी अगर आप भी कुछ अच्छी बात पहुँचाना चाहते हैं, आपके आस पास कुछ अच्छा चल रहा है तो आप हम तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं। श्रोताओं वक्त हुआ है अभी कितना, 8:52, आनंद के साथ हैं आप। वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम के जरिए 9837896896 पर।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: कहा मेरी कसम,
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग, मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: ジョーカ
1: ー。आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग. Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। दिस इज माय लास्ट आवर। ये फ्राइडे है, वीकेंड है, एंड ऑफ कोर्स यार संडे को हो रही है नवरात्रों की शुरुआत, है ना। श्रद्धेय नवरात्र है जहाँ पर माँ देवी की पूजा अर्चना होगी। अगले 9 दिनों तक जो है हम लोग स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरीके से रंग जाएंगे। सिर्फ माता रानी के जो है भजन होंगे, जयकारे होंगे, बोल सच्चे दरबार की जय। तो हम भी नवरात्रि में कुछ नया करने वाले हैं यार आप लोगों के लिए। एंड स्पेशली ये श्रद्धेय नवरात्रि थोड़े स्पेशल होते हैं यार। मतलब सुबह शाम जो है माता रानी की पूजा अर्चनाओं के साथ साथ जो है मतलब मंदिरों में जो लाइन लगी होती है, जो भीड़ लगी होती है, मतलब क्या ही मैं बोलूँ यार, मुझे तो घूसबम्स आ रहे हैं। इनफैक्ट डांडिया, गरबा, मतलब अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस यार। रामलीला, दशहरा मेला, बहुत सारी ओकेजन्स होते हैं यार। रामलीला से मुझे याद आया, कल रात को भी रामलीला में क्या हुआ और आज क्या होने वाला है, ये कड़क अपडेट आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। लेकिन उससे पहले बजाओ यार। थैंक यू वेरी मच। सच में क्या मैसेज किए हैं आप लोगों ने, मेरे को अच्छा लगा यार। सुबह सुबह इतने पॉजिटिव मैसेज आप लोग पहुंचाते हो। थैंक यू सो मच रिंकू एंड इशी, एंड थैंक यू सो मच दीपक, साथ में मनप्रीत, मोहन मेरे साथ जुड़े हैं, एंड ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमित वर्मा, हाय। गुड मॉर्निंग प्रियल, गुड मॉर्निंग संजू, गुड मॉर्निंग, ये कौन लिखते हैं मुझे, रोहानिका, ओके रोहानिका, अगर मैंने तुम्हारा नाम सही पढ़ा है तो प्लीज आज की सुबह एक कप चाय मेरे साथ हो जाए। इफ यू डोंट माइंड, से जोक से बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आने वाले कुछ अच्छे गाने। इनफैक्ट एक छोटा सा सवाल आपके लिए देके जा रहा हूँ, एंड यू नो इसका आंसर आप मुझे कर देना अगर पॉसिबल हो, अगर आपको लगे कि हाँ यार इसका आंसर तो डेफिनेटली हम कर ही सकते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो।

चलो जी, व्हाट्सएप करके बताना है मेरे को फटाफट से एक छोटा सा सवाल आपको देके जा रहा हूँ आज की सुबह। अगर एक अंडे को उबलने में 10 मिनट लगते हैं, तो 10 अंडों को उबलने में कितना समय लगेगा? प्लीज टेल अस, दिमाग लगा के बताना। एंड दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी फनी क्वेश्चन। अगर आप इसका आंसर करेंगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। सुबह सुबह बताओ मेरी जान, इसको दिमाग लगा के आंसर बताना है आपको। आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन। आज की सुबह फ्राइडे मॉर्निंग आपसे पूछ रहा हूँ, अगर एक अंडे को उबलने में 10 मिनट लगते हैं तो 10 अंडे को उबलने में कितना समय लगता है? क्या लगता है आपको मुरादाबादी, बताओ जरा। व्हाट्सएप करो मुझे 9837896896 पे, इमिडिएटली मैसेज करना यार। चलो जी, लौट कर आते हैं। आपने बहुत सारे वॉइस नोट मुझ तक पहुंचाए हैं, बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंचाए हैं, वो सारे के सारे मैसेज एंड वॉइस नोट डेफिनेटली अभी मैं यहाँ पर शामिल करने वाला हूँ जरा सी देर में। बस आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए एंड सुनते रहिए आपके शहर का अपना अमेजिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 विद मी। आने वाले कुछ अच्छे गाने ही को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। ये फ्राइडे मॉर्निंग है, आज कितनी तारीख होगी बाबा? अरे 9 तारीख होगी यार। ठीक है ठीक है। चलो जी फिलहाल ही गाना सुनते हैं। मैं नहीं करता जी, तुसी मैनू कर लो पहले। चलो आप जहाँ भी जा रहे हैं सीट बेल्ट लगाओ, अच्छे से गाड़ी ड्राइव करो। आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं ऑल द बेस्ट।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: छोटे छोटे एड ब्रेक एकदम से खत्म हो गए। एड ब्रेक, वो पाजी की हालचाल है, कितों जा रहे हो तुसी यार? ओ भाई, मेरे को भी अपने साथ लेके चलो भाई साहब, मैं आपके साथ ही जाऊंगा भाई। हेलो, हाय, वेलकम बैक। मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, जहां दिल से दिल तक वाली बातें होती हैं। क्या बात है, जब भी छोले भटूरे को देखता हूं मन में आता है एक छोटा सा खतरा, और घड़ी उठाकर देखो हो गए हैं 9:17। वाह वाह, थोड़ा सा टैलेंटेड तो हूं मैं, नो डाउट यार। हेलो जी, जिन लोगों ने जस्ट अभी रेडियो ट्यून इन किया है उन सभी का वेलकम बैक है वंस अगेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद, और मैं आपका वही प्यारा सा नटखट आरजे आनंद, जो आपकी सुबह में थोड़ा सा और आनंदित भरने चला आता हूँ। हर दिन हर सुबह कुछ नए पैगाम लेकर आता हूँ आपकी खुशियों के लिए। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ इमीडिएटली, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछा है कि अगर एक अंडे को उबलने में 10 मिनट लगते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो 10 अंडों को उबलने में कितना टाइम लगेगा? आने वाला गाना

एवरीबॉडी तूने साथ में गाओ यार। किया तूने भाना प्यार किया, तूने भाना प्यार किया, तूने भाना जरा सी देर में एक गाना सुनेंगे आप, बहुत ही हैपनिंग वाइब आपको मिलेगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आनंद को, एक बहुत ही बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है, ढेर सारे लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू यार। और अभी यूपीआई को लेके बड़ी सारी बातें हो रही हैं, उस पे अब बात करेंगे जरा सी देर में। निभाता हूँ यार, मंडे टू सैटरडे आता हूँ। अच्छे गानों की प्लेलिस्ट मेरे पास एवरी मॉर्निंग होती है, बिकॉज यार आपकी सुबह को थोड़ा सा जोशीला जो बनाते हैं अच्छी बातों से। यूपीआई को लेके क्या बात हुई है इस पे बात कर लेते हैं, एंड बाकी शहर में क्या स्पेशल चल रहा है उस पे भी बात करने वाले हैं। इस बार के रामलीला ग्राउंड में जो रावण है ना, थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बार के रावण ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है? हर बार की तरह तो रावण सेम ही होता है ना। नहीं नहीं नहीं, आज अगर आप रामलीला में जाओगे तो वहां पर भी आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है यार। देखो बहुत कुछ है मेरे पास आज की सुबह मेरे पिटारे में, तो सब कुछ धीरे धीरे ही आपको बताऊंगा, इतनी जल्दी थोड़ी बता दूंगा। नहीं तो क्या यार, सब कुछ अभी जान लोगे, बाद में कुछ नहीं जानोगे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। नहीं तो क्या

चलिए भैया, आज के दिन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे हम, लेकिन उससे पहले फटाफट से मैं आपको क्या कहते हैं ना, दो तीन चीजें बता देता हूँ जिसके बारे में ना फिर आपको पता लग जाएगा, तो फिर आपका जो है ना टेंशन थोड़ा सा दूर हो जाएगा कि अच्छा ये वाली चीज़ भी, अच्छा जी अच्छा ये भी, ये हो रहा है, ये हो रहा है। चलो जी, मैं कहा ठीक है भाई, चलो जी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। और अभी फिलहाल ये जो 15 अक्टूबर को अपन UPI के बारे में बात सुन रहे थे ना कि भैया 15 अक्टूबर से जो है UPI पर ऐसे ऐसे चीज़ करके बढ़ने वाला है करके, है ना, मतलब UPI पर लेने देने पर जो है चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो उसे टालने की तैयारी चल रही है। मैं आपको मतलब पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जरा ध्यान से तो सुन लो भैया, ऐसे कैसे चलेगा यार, फिर आप कहते हो बताते नहीं हो। तो देखो, UPI पेमेंट करने वाले और जो कारोबारी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि भैया UPI ट्रांजेक्शन पर नए चार्ज की शुरुआत 15 अक्टूबर 2026 से होने की बजाय अब टल सकती है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक त्योहारी सीजन में UPI ट्रांजेक्शन की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। त्योहारी सीजन को देखते हुए अब जो है 1 जनवरी 2027 से जो है इस रूल को लागू किया जा सकता है। ऐसे देखो, अभी हम अंजंक्शन लगा रहे हैं, एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है, ये राइट है भी यानी ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी ये भी कहा गया है कि इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, वो बाकी है। अगर सरकार फैसला लेती है तो इस त्योहार के मौसम के शुरुआत में जो है थोड़ा सा रिटेलर्स को राहत मिल जाएगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी गुड न्यूज़ है यार, ये अच्छी बात है। और मैं तो चाहूँगा कि डेफिनेटली ये जनवरी में ही लागू हो, ताकि मतलब जो अभी भसल मची थी ना पीछे कि भैया नहीं हम UPI नहीं लेंगे, आपको पता है ना हर बंदा प्लास्टिक मनी लेके घूमता है यार आजकल। आपको बता दें, भारत में डिजिटल क्रांति की रफ्तार का अंदाज जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। हाँ जी, इंटरनेट डेटा की कीमत और खपत को जो है अब लगाया जा सकता है कि भैया केंद्रीय संचार मंत्री जो है उन्होंने कुछ चेंज किया है। भाई साहब, आपको बता दें 2014 में 1 GB डेटा की कीमत करीब 268 रुपये थी, जो कि अब घटकर सिर्फ 8 रुपये प्रति GB कर दी गई है। एंड सस्ती डेटा के साथ इंटरनेट की खपत भी जबरदस्त जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एंड यूजर्स के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर हो सकती है। पाजी, अब देखो यार कितनी अच्छी खबर होगी ये तो बात नहीं पता चलेगा। फिलहाल आज वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। आपको पता है छोटे छोटे जब हम थे तो पहले डाक द्वारा पोस्ट ऑफिस के जरिए छोटे छोटे हम लोग लेटर्स भी भेजते थे, हमारी फैमिली वाले अक्सर भेजते थे ना। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है इस पर बात करेंगे, और कौन कौन से स्पेशल डे हैं उस पर बात करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। एंड ये अभी एक कड़क अपडेट बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि हर जिले में पहुँचेगा 5G। एंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने IMC 2026 का उद्घाटन किया है, जिसमें 1 GB डेटा मात्र 8 रुपये का हुआ है। क्या लगता है आपको, इसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। आनंद के साथ है लेडीज एंड जेंटलमैन, आने वाला अच्छा गाना, एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ा के एंड मेरे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जस्ट अगर रेडियो आपने ट्यून इन किया है तो आपका मोस्ट वेलकम है जी, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग ओनली ऑन आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। आप सुनते हैं आनंद को मंडे टू सैटरडे। अभी के लिए कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, अभी लौट कर आता हूँ जरा सी देर में। सुनते जाइए इंटरेस्टिंग गाने आनंद के साथ।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: हाँ मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। मेरे
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

वारी जावा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही गाना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाने से ना पता नहीं क्यों मुझे अलग ही वाली मोहब्बत है। धुरंधर का ट्रैक एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वारी जावा बहुत ही अच्छा गाना है। आज फ्राइडे है, मतलब जुमे का दिन है यार, और आज वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। कोई मेमोरी है आपकी वर्ल्ड पोस्ट डे से रिलेटेड, तो यू कैन शेयर विद मी 9837896896। दिस इज माई कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके अपनी बढ़िया सी मेमोरी शेयर करो। आने वाला गाना धुरंधर का बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, शाश्वत एंड और भी कमाल के सिंगर, मिली जुली आवाजें हैं, बट आवाजें बहुत अच्छी है। एंजॉय करते हैं साथ में। गुड वाली मॉर्निंग।

0: यार बारी तो मैं उन लोगों पे जाना चाहता हूँ जिन्होंने लिखा है कि 10 अंडों को उबलने में 100 मिनट लगेंगे। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग ना उबल जाए और मैं स्टूडियो छोड़ के बाहर ना भाग जाऊँ। मतलब क्या सिंसेक्स लगा रहे हो, मतलब क्या दिमाग है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या तगड़ी बातें करते हो यार। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था यार कि अगर एक अंडे को उबलने में 10 मिनट लगते हैं तो 10 अंडों को उबलने में कितने मिनट लगेंगे यार, कितना समय लगेगा। 100 मिनट लगेंगे भाई, मुझे मारो, ये क्या ही हो रहा है। मतलब इतने महान लोग मैंने कभी नहीं देखे अपनी लाइफ में आज से पहले यार। बता क्या ही करूं मैं, क्या ही करूं यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। चलो लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में थोड़ी थोड़ी बातें अक्सर हो जाती है। अभी एक कॉलर मेरे साथ कनेक्टेड है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एड ब्रेक का टाइम है, उसके बाद उनको लेकर आता हूँ।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: वेलकम बैक है वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, जुमा मुबारक, फ्राइडे की सुबह, आज 9 अक्टूबर होगी, बस एक दिन बचा है, उसके बाद जो है हम सभी प्यार से बोलेंगे जय माता दी। नवरात्रि आने वाले यार, एंड ये जो हैपनिंग वाइब है, जो फेस्टिविटी है, वो ऑफ कोर्स स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे लोगों को ना बस सेल का इंतजार होता है, मैं बता रहा हूँ सच्ची वाली बात। चलो एक कॉलर जुड़ी, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका, हाउ आर यू?
4: शाजिया
0: जी, शाजिया जी, बहुत ही अच्छा नाम है आपका और काफी खिलखिलाती आवाज है आपकी, नो डाउट, बहुत मजा आ रहा है, पूरा शहर आपकी आवाज सुन रहा है। बताइए कैसे याद किया सुबह सुबह?
4: गुड मॉर्निंग
0: जी।
4: पहले आप मुझे पूछिए आप कैसी हैं।
0: अच्छा जी, मैं डेफिनेटली आपसे पूछूंगा आप कैसी हैं, मुझे ये बताओ।
4: मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ।
0: अरे वाह, ये कोई बताने वाली बात थी यार, लेकिन ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरा डायलॉग मेरे को चिपका डाला आज की सुबह।
4: हाँ, तो वो मैंने आपसे सीखा ना कि वो पुराना हो गया कि आप कैसी हैं। जी मैं ठीक हूँ, हम ठीक है, वो सबको पता है। आप कैसी हैं? मैं ब्यूटीफुल हूँ, ये मेरी वाइब है।
0: हाँ, मतलब मैं हैंडसम हूँ तो ये कह रही है मैं ब्यूटीफुल हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस, मतलब वेरी वेरी चालाक, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप लाइफ में हमेशा ब्यूटीफुल रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं।
4: थैंक यू
0: जी। शाजिया जी कहाँ रहती है, मुरादाबाद में? थोड़ा सा ये बताओ हमारी जनता को। एकता विहार कॉलोनी, ऑल राइट। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या करती है प्रोफेशनली आप शाजिया जी?
4: बेसिकली तो मैं टीचर हूँ, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ मैं।
0: अरे वाह, टीचर लोगों से थोड़ा सा डर भी लगता है मुझे, क्योंकि मैं हमेशा अपनी क्लास में पीछे बैठा हूँ, और जब जब मैं पीछे बैठा हूँ तब तब टीचर की नजरें सामने वालों पे नहीं, मेरे पे गई।
4: वो टीचर उन्हीं बच्चों को ज्यादा समझते हैं ना, वो टीचर क्लास में कौन बच्चा पीछे क्यों बैठा है वो टीचर जानता है अच्छे से।
0: सच में ये पता नहीं उनको कैसे पता लग जाता है, ये कोई यूएसपी करके बैठे होते हैं क्या टीचर्स लोग?
4: वो टीचर, हाँ वो टीचर का वो होता है सिक्स टाइम्स वाला जो होता है, वो थर्ड आई होती है कि अच्छा ये बच्चा बच के बैठा है, आ जाओ बेटा तुम आगे आ जाओ,
0: सबसे पहले उसी किताब पढ़ाते हैं, ये तो मैंने भी देखा है अक्सर, है ना। लेकिन यार कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और कभी कभी जो पीछे बैठे होते हैं ना वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, ये भी सच है।
4: ये भी सच है, हम किसी भी बच्चे को इवैल्यूएट नहीं कर सकते बुक्स और नॉलेज। कुछ बच्चे आपके साथ में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे एकदम मतलब उनको कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं है पढ़ाई में, लेकिन जब वो आगे जाते हैं लाइफ में तो उनके पास बहुत सारी चीजें अलग से करने के लिए होती हैं, तो वो उनका सबका बच्चों का कहते हैं ना, हर बच्चा एक अपने अलग माइंडसेट के साथ पैदा होता है, तो हम किसी भी बच्चे को जज नहीं कर सकते।
0: सच में सच में सच में, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, एंड आई टोटली एग्री विद यू। अच्छा और बताओ क्या चल रहा है जीवन में, सब बढ़िया चल रहा है?
4: हाँ सब बढ़िया चल रहा है।
0: आज वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है आज के दिन, तो आपने कभी पोस्ट किसी को मतलब पोस्ट के द्वारा कुछ भेजा हो लिख करके कोई खत?
4: पोस्ट पहले पता है क्या होता था, जब छोटे थे तो फोन नहीं था हम लोगों के पास में, तो मैं हमेशा अपने नाना को एक वो पीला वाला वो जो आता है ना पोस्ट कार्ड आता है वो मैं अपने नाना को लिखती थी, और मैं भी और मेरे बहन भाई सब लोग सब लिखते थे, और फिर उसके बाद हम इतना ईगरली उसका वेट करते थे उनके जवाब आने का और हम कभी कभी हम जैसे हमें पॉकेट मनी मिलती थी ना, तो हम उससे सारे पोस्ट कार्ड बोलते थे, पोस्ट कार्ड ही खरीदते थे, और कुछ नहीं, बस अपने नाना को लिखते थे। एक जो मतलब मैटर था, एक मतलब कहते ना एक फॉर्मेट टाइप की, हमें ये चीजें भरनी है, तो बस वो भरते थे कि आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, और वो भरा और उसको हाथ हाथ पोस्ट किया और फिर हम वेट करते थे कि उसका रिटर्न आएगा। तो पोस्ट कार्ड के साथ हमारी बहुत अच्छी मैं कह सकती हूँ कि मेमोरी है, और अभी तो मुझे लगता है शायद पोस्ट कार्ड इतने चलन में नहीं है, शायद मुझे लगता है बंद ही हो रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपने सीएम और पीएम के नाम लिखे हैं पोस्ट कार्ड, तो हमें लेने में बहुत दिक्कत हुई, मिल नहीं पाया।
0: किसकी कंप्लेन की जा रही है सीएम और पीएम को मैसेज और ये पोस्ट कार्ड भेज के, ये बताओ।
4: वो हमारी कुछ हमारी जो डिपार्टमेंटल कुछ नीड्स है, तो उसके लिए हम उनको थोड़ा सा एक्नॉलेज करने के लिए कि हमारा कुछ तरीके होते हैं पोस्ट कार्ड वगैरह।
0: ऑल राइट चलिए, वो आपका पर्सनल है, मैं उस पे ज्यादा जो है चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो किसी ने सुन लिया गाड़ी में बैठे बैठे तो मेरे पे चर्चा करनी शुरू कर देंगे।
4: होता है ना, हम लोगों की कुछ डिमांड्स होती है, तो वो कहते हैं ना एक रेस्पेक्टफुल वे में जो हम करते हैं, तो वो इस तरीके से करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा शाजिया जी, लगता है आज सुबह सुबह कुछ अच्छा ही खा के आई हैं आप, इसीलिए इतना अच्छा बोल रही हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। क्या खा कर आई?
4: हमेशा अच्छा ही बोलती।
0: अरे ओ भाई मुझे मारो, मगर ऐसी इतनी इंटरेस्टिंग लेडी मैंने पहली बार देखी है, जो खुद ही जोक मार रही है, खुद ही हंस रही है, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है।
4: हमारी पढ़ाई करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है।
0: आई एग्री यार,
4: अपनी तारीफ खुद ही करनी चाहिए।
0: टोटली अग्री, बहुत सारे लोग आपकी आवाज सुन के वो भी हंस रहे होंगे कि वाकई में शाजिया जी ने कमाल कर दिया, और आज तो धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। अब इनके पास है या नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा शाजिया जी, क्या लगता है लाइफ में कोई ऐसा दोस्त मुझे लगता है जिंदगी में होना चाहिए जो आपके सारे झूठ को पकड़ ले, उसके सामने झूठ चलता ही नहीं, ऐसा कोई है आपकी जिंदगी में बंदा या कोई ऐसा इंसान?
4: एक दोस्त तो आपका ऐसा होना ही चाहिए कि आप मान लीजिए अगर आप हंस रहे हैं दुख में और हंस रहे हैं, वो जानता है कि आप एग्जैक्टली हंस नहीं रहे हैं, आप अंदर से रो रहे हैं।
0: Absolutely.
4: तो ऐसा एक दोस्त होना चाहिए जो आपको जज ना करे आपके कपड़ों से, आपके आपके स्टेटस से, या भी किसी भी चीज को लेके। तो बस मुझे लगता है कि हर एक के, अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है तो आज के जमाने में, मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ खासतौर से, अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है तो आप राजा हैं।
0: क्या बात,
4: जहाँ बैठ के आप अपने दिल की बात कह सकते हैं कि अब मुझे कोई जज करने वाला नहीं है, मेरे मन में जो है मैं कह दूंगी।
0: okay,
4: तो मेरे okay. पास है, मेरी एक दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरी, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ भी बोलना होगा तो मैं बेधड़क उसको फोन करूँगी।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा शाजिया जी, आज की सुबह आप जीत रही हैं 2000 करोड़ की तालियां, आपके लिए मैंने बजा दी है, कंग्रेचुलेशन। अगर आप मेरे आमने सामने होती तो मैं आपको डेफिनेटली 10 रुपए का नोट देता, भले ही वो चलता है या नहीं मुझे नहीं पता।
4: 10 रुपए?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने जो है ना बहुत ही

0: ऐसी नहीं होती है, जब हम अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाते हैं ना तो फिर लोग हमसे खुद डरने लगते हैं।
1: शाजिया जी आपके लिए एक ऐसा गाना बजा रहा हूँ जिसको सुन के ना आप खुद ही घर में भरतनाट्यम करने लगेंगे और हस्बैंड बोलेंगे आज हो क्या क्या मेरी वाली को।
0: हस्बैंड को तो हमेशा लगता है कि ये थोड़ी सी किसकी हुई।
1: बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अपना ध्यान रखो और अपने उस दोस्त का भी जो आपका झूठ पकड़ लेता है। मुझे लग रहा है आप झूठ बोलने में को थोड़ी एक्सपर्ट हैं।
0: हाँ थोड़ी बात।
1: चलो बहुत मजा आया, जल्दी मिलते हैं मैम, आइए किसी दिन स्टूडियो बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ चलो बाय बाय, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बाय बाय बाय बाय बाय, थैंक यू थैंक यू। शाजिया जी जुड़ी थी मेरे साथ, ये आने वाला गाना आप सभी के लिए। ना गलत मत बोलो यार, तुसी पिटवाओगी क्या? दिलजीत दोसांझ की अमेजिंग परफॉर्मेंस, कहा दीवाना तेरा मैं, दीवाना तेरा मैं, ओ ओ ओ, ये गाना डेफिनेटली आप सुनेंगे। लेकिन आज वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है और मैडम ने देखी कितनी अच्छी बातें करी ना, पहले वो खत तो भेजती थी कबूतर जा जा जा कबूतर जा, हमेशा मम्मी कहती थी बेटा चला जा नहीं तो गंदगी कर देगा और उसके बाद मुझे बाद में बड़ी सफाइयां करनी पड़ती हैं। लेकिन कबूतर भी इतना ज्यादा मतलब ठीक होता है, वो जाता ही नहीं है। मम्मी कहती बेटा जा, नहीं जाता है आंटी, जाऊंगा ही नहीं। कबूतर तो नहीं जा रहा है, लेकिन फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ी सी देर के लिए विराम देने अपने गले को, बड़ी लंबी चौड़ी बात होगी। फिलहाल गाना एंजॉय करो, लौट कर आता हूँ थोड़ी सी देर में। 9:40 हो गए, कि जाम में हो तो मैसेज

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: सुनो भैया, मैं चाहती हूँ कि शादी पर आप सबसे खूबसूरत दिखो।
5: अरे बिल्कुल, अपना राज कलेक्शन है ना, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न
7: के साथ 999 में ब्लेजर बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर भी उपलब्ध है, यानी कि 2 ब्लेजर के साथ 1 ब्लेजर मुफ्त। तो आज ही आए राज कलेक्शन।

वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, एंजॉय कर रहे हैं अभी आप? क्या बात है, तृप्ति डिमरी राजकुमार राव, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। विकी विद्या का वो वाला वीडियो, अभी कौन से वाले वीडियो की बात कर रहे हैं? सीरियसली आई डोंट नो यार, मेरे को समझ नहीं आता कि आजकल ना पिक्चरों के नाम को क्या हो गया है भाई। लेकिन आपके लिए जोरदार तालियां, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे आंसर्स किए हैं। हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है ना, और आज अंडों से रिलेटेड मैं सवाल पूछ रहा था कि भाई आप मेरे को मैसेज करके बताओ, अगर एक अंडे को उबलने में 10 मिनट लगते हैं तो 10 अंडों को उबलने में कितने मिनट लगेंगे? और इतने ज्यादा मतलब जो है खुराफात हमारे रेडियो लिसनर है ना, मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही फनी था, लेकिन आप वेरी फनी यार, बहुत ही बेहतरीन यार। सब लोगों ने एक से बढ़कर एक मैसेज किए हैं। चलिए जरा आपके नाम के साथ आपके मैसेज को इमिडिएटली शामिल करता हूँ इस स्टेशन पे। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल इतने वंडरफुल मैसेज पहुंचाने के लिए, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड इतने सारे लोगों ने व्हाट्सएप किए हैं, जो लोग अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद को, जहां ढेर सारी बातें होती हैं दिल से दिल तक। वेल थैंक यू वेरी वेरी मच इतने ब्यूटीफुल मैसेज करने के लिए। सबसे पहले तो यार ये मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज प्रेरणा, गुड मॉर्निंग प्रेरणा, हाउ आर यू, आई होप आप बढ़िया होंगी। इन्होंने लिखा है, आनंद जी ये वाले अंडों को उबलने में इतना मिनट लगेगा, समझ गया मैं, थैंक यू वेरी मच। राइट आंसर अभी मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। गौरव टेलर नवीन नगर से लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कश्मीर से जुड़े हैं मैं राजुद्दीन साहब। एंड ये मेरे पास मैसेज पहुंचा है, दुर्गेश भाई का सही जवाब पहुंचा रहे हैं। एंड साथ में रामपुर से शमा मेरे साथ जुड़ गई हैं आज की मॉर्निंग। रिहाना जुड़ चुकी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, हाय सर कैसे हालचाल हैं। यादव फैमिली से गुड मॉर्निंग पहुंच रहा है, एंड साथ में राइट आंसर, थैंक यू जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कोमल मेरे साथ जुड़ रही हैं सही आंसर के साथ। जय श्री राम कैसे हालचाल हैं। बबलू सैनी मुंबई से मुझे सही जवाब दे रहे हैं। अफरोज ने मेरे को राइट आंसर दिया है। मोहम्मद कामिल साहब सही जवाब के साथ जुड़े हैं। रोहित राणा अलीगढ़ से एडवांस में हैप्पी नवरात्रि लिखते हैं, एंड राइट आंसर भी दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, विवेक अग्रवाल अनमोल ट्रैवल से मेरे साथ जुड़े हैं, एंड इन्होंने सही जवाब दिया है। इसके अलावा सही जवाब एक और मेरे पास पहुंच चुका है। गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है। ये मैसेज किसका है भाई, आपने नाम क्यों नहीं लिखा है, वेरी बैड, नाम जरूर लिखा करो जी। नंबर के 4 डिजिट हैं 8765, अगर सुन रहे हैं तो नाम भी मेंशन करना भाई। गुड मॉर्निंग जी, सहारनपुर से जुड़े हैं जोन रोजी पल विलीस, बहुत ही खूबसूरत बात लिखते हैं, मौजूदगी की कदर किसी को नहीं है, बाद में तस्वीर देखकर रोने लगते हैं। ओ माय गॉड, क्या ट्रू लाइन बोली है। गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंच रहे हैं मेरे पास। आसिम अली का, हाय गुड मॉर्निंग आसिम, कैसे हाल चाल है मेरे भाई, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए आज की सुबह। एवरीबॉडी साथ में गाओ, बहुत ही कमाल की फिल्म थी। अमित वर्मा जुड़े हैं मेरे साथ आज की सुबह, बहुत निकुंज भैया वेलकम है आप सभी, आप सभी दोस्तों का वेलकम बैक है वंस अगेन। और निकुंज जी आप भी जुड़ गए मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच। ओ माय गॉड, हवा हवाई है। फिलहाल बाहर का टेम्परेचर क्या कहता है बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत अच्छा लगता है वर्ल्ड पोस्ट डे आज मनाया जाता है, इस पे हम ढेर सारी बात अभी आपसे कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स भी किए हैं, ऑफ ईयर भी ढेर सारे लोगों से बात हुई है मेरी, थैंक यू वेरी वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं आपको फटाफट वेदर बता देता हूँ, करंट टेम्परेचर क्या कह रहा है और आने वाला टेम्परेचर कितना रहेगा, अभी आपको जो है वैसे कैसे अलर्ट रहना है। तो अभी 24 डिग्री सेल्सियस वेदर है, करंट की मैं बात कर रहा हूँ 24 डिग्री, एंड आगे ये हाइएस्ट पहुँच सकता है 28, लोएस्ट 21 तक पहुँच सकता है जो है भैया, तो आपने जो है अपना ख्याल रखना है अच्छे से, और बाकी अपने परिवार का भी ख्याल रखना है, ठीक है जी। आज हवाएं थोड़ी तेज रफ्तार के साथ चलने वाली है, तो ऐसे में आप जरा अपने कपड़ों का भी खास ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो आपके कपड़े ये हवा उड़ा के ले जाए। चलो जी लौट कर आते हैं, उसके बाद आज का एक कड़क सवाल होगा जिसका जवाब देकर आप जीतेंगे एक्साइटिंग डानी नाइट कॉन्सर्ट के वाउचर। मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6, और दिल से गाओ जियो बिंदास।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग. बिंदास
2: मॉर्निंग. उधर करो.
3: फिर चली गई.

भाई देखो गाना बहुत ही अच्छा है, नितिका गांधी सच में यार बहुत ही अच्छा गाती हैं। एंड सच में यार इतने वंडरफुल सॉन्ग सुबह सुबह आप सुनते हैं किसके साथ? आनंद के साथ एंड सचिन टंडन की आवाज़ साथ में। सचिन जी का म्यूजिक अच्छे गाने एब्सोल्युटली आपकी सुबह को फैब्यूलस बनाते हैं। लेकिन अभी एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब देकर आज की सुबह आप जीतेंगे एक्साइटिंग प्राइज। क्या करना है बॉस आपने? इमिडिएटली मेरे को मैसेज करना है, मैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा गाने का इंट्रो म्यूजिक प्ले करूंगा। मतलब एक गाना बेसिकली प्ले होगा आज आफ्टर लॉन्ग टाइम। कुछ गाने वाने का म्यूजिक पूछ रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है होने वाला है आज की सुबह। बस इस गाने को आपने आइडेंटिफाई करना है, ये जो चल रहा है भाई वो कौन सा गाना है। अगर आपने पकड़ लिया इस गाने को तो बस मेरे को फटाफट से क्या करेंगे आप, व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम के साथ अपना सही जवाब पहुंचाएंगे 9837896896 पर। व्हाट्सएप करना है आपने, आप चाहो तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपके पास छोटा वाला फ़ोन है तो आप उसमें जाकर टेक्स्ट मैसेज भी पहुँचा सकते हो। ज़रा ध्यान से सुनो कौन सा गाना है। बहुत ही ब्यूटिफुल मूवी है, रिसेंटली एनिवर्सरी कम्प्लीट की है

0: व्हाट्सएप करके बताओ मुझे 9837896896 पर। अभी जो आपने म्यूजिक सुना है वो कौन से गाने का है? दिस इज अ वेरी वेरी फैबुलस ट्रैक जिसमें नरूला ने गाया है। What a song. And what a star cast यार। चलो जी मैसेज कर दो मुझे फटाफट से इमीडिएटली अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। अभी आज के लिए इतना ही काफी है जनाब। जल्दी से उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम एंड अपना राइट आंसर कुछ फटाफट से सेंड करो गाइस। हाय माय नेम इज आनंद। You are listening to FM मुरादाबाद 89.6 पे बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही अच्छा गाना है यार,
1: सुनिए मिठी गला का।
0: और बाकी शहर में क्या कुछ स्पेशल चल रहा है ये भी आपको बताता हूँ फटाफट से। फिलहाल वॉली बढ़ाओ, सुबह सुबह जलेबी की याद आ रही तो खाने चले जाओ भाई, अकेले मत खाना, मुझे लेके जाना, बता रहा हूँ मैं। फिलहाल अगर जलेबी नहीं है आस पास तो इस गाने से फील ले लो यार, बहुत ही अच्छा गाना है। वॉली बढ़ाओ, एंजॉय करते जाओ। गुड मॉर्निंग।

0: आप जहाँ भी निकल रहे हैं, ऑल द वे बेस्ट मॉर्निंग टाइम है। स्पेशली कड़क अपडेट आपको बताने आ गया हूँ। सुबह के 10 बज चुके हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ हैं आप और ये है फ्राइडे की सुबह।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: अरे आनंद इज बैक।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
6: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
5: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
7: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
8: मेरी कसम
7: मिस कर दिया तो रीलोड।
9: चाय चाय चाय
7: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
0: हाँ जी, कुछ लोकल अपडेट आपको फटाफट से दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक अच्छा गाना सुनो एंड इस गाने के बाद वापस आता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ। ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो लीडिंग जेंटलमैन। ये फ्राइडे मॉर्निंग है, दिस इज द ब्रांड न्यू मॉर्निंग 9 अक्टूबर की सुबह। वक्त मिलाओ 10:02 हो गए।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

क्या बात है, एक बहुत ही वंडरफुल ट्रैक 10:05, ये ब्रांड न्यू सुबह है आरजे आनंद को सुन रहे हैं आप, और ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स आपके साथ होती हैं इसी चैनल पर, जहां पर मैं होता हूं, आप होते हैं और अच्छे गाने होते हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ऐसे ही हमारा साथ निभाते रहिए, हम भी आपका साथ निभाते हैं एवरी मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और अभी यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आप लोगों के पहुँचे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आज की सुबह, थैंक यू सो मच। और आपको बता दें ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी महंगी हो सकती है, जीएसटी काउंसिलिंग ने 5% टैक्स का प्रस्ताव दिया है बॉस, तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो भैया देखो 5% जो है अब आपको डिलीवरी पर मतलब जीएसटी का प्रस्ताव आया है, तो अभी देखते हैं भाई साहब ये क्या होने वाला है, समझ नहीं आता बॉस कब कौन सी चीज़ आ जाती, कुछ पता ही नहीं चलता है। क्या हो सकता है यार, देखते हैं। फिलहाल जनवरी 2027 तक जो है टल सकता है यूपीआई पर MDR, ऐसा बताया जा रहा है। ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले विस्तार से पूरी जानकारी बताई दी है ना, तो अगर आप जो है ये सोचने में लगे हो यार पेमेंट लगेगा फेस्टिव सीजन में कैसे काम चलेगा बॉस, तो अभी मुझे लगता है कि ये हो सकता है आगे बढ़ जाए, है ना, आगे पहुंच जाए, और पहुंच जाए तो अच्छी बात है। कल मैंने आपको एक छोटा सा ना हिंट दिया था लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा था कि देखिए अगर आप ChatGPT पे कुछ पूछते हैं ना अपनी हेल्थ के बारे में, अगर आप कुछ पूछते हैं, अगर आप अपनी सेहत को लेकर के कुछ भी बात करते हैं ChatGPT से, क्योंकि एक नई रिसर्च में पता लगा कि बहुत सारे लोगों को अगर थोड़ा सा जुकाम खांसी भी होता है तो वो तुरंत ChatGPT पे जाते हैं और वहां से सोल्यूशन मांगते हैं, और ये बहुत ही गलत चीज़ है यार, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो इसके लिए आपको ChatGPT पे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे भाई अगर आप डॉक्टर के पास भी चले जाओगे तो भी बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना, क्योंकि हर चीज का जवाब मुझे लगता है कि ChatGPT से ढूंढना इट्स नॉट गुड यार, बट आपको ये नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। सिर दर्द, बुखार, पेट दर्द या मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ा हो सवाल हो तो भैया AI कुछ ही सेकंड में जवाब दे सकता है, लेकिन हर AI का जवाब सही हो ये ज़रूरी नहीं है बॉस, इसीलिए जो है AI आपके मेडिकल टर्म्स को समझने में और उसको सही इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, तो इसीलिए भैया डॉक्टर के पास आप अपने क्वेश्चंस को लेके जाएं, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपको परामर्श लेनी है वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से लें, और जो भी आपको मेडिसिन लेनी है वो भी एक बार आप ज़रूर जो है पूरी अच्छे से डॉक्टर से सलाह लेकर ही अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू करें। कोई भी चीज बिना पूछे बिना सोचे समझे ChatGPT से हेल्प ले लेना वो भी मेडिकल से रिलेटेड, आई थिंक ये बहुत ही रॉन्ग है, इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए स्पेशली अपनी हेल्थ से रिलेटेड तो मैं तो कहता हूं भाई सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करो यार, है ना। छोटी छोटी बातें ना कभी कभी हमारी लाइफ में हमें बहुत पीछे कर देती हैं, और ये हमें पता होना चाहिए भाई, इसीलिए मैंने आपको बताया है। बाकी जो अरुण गोविल है इस बार वो है नजर आने वाले हैं राजा दशरथ के रोल में, जो है जिन्होंने रामायण में रोल निभाया था राम जी का, अब वो नजर आएंगे राजा दशरथ के किरदार में। नितेश तिवारी की एक बहुत ही कमाल की फिल्म आने वाली है रामायण, जिसमें अरुण गोविल जो है अब वो नजर आएंगे राजा दशरथ का किरदार करते हुए, उनका पहला लुक जो है सामने आया है, काफी लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार इन्होंने निभाया और बहुत ही पॉपुलर हो गया, आज भी जब भगवान राम की बात होती है तो उनका चेहरा सामने आ जाता है मुस्कुराता हुआ, राइट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, और यार रामायण को लेकर सारे लोग बड़ी तेज़ी से जो है वेट कर रहे हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ा हुआ है। एक और चीज़ आपको बता दें, युवाओं में तेज़ी से बढ़ रही है हाई BP का जो खतरा है, जी हाँ युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ रहा है, इसकी सबसे बड़ा रीज़न जो बताया जा रहा है वो है तनाव यानी कि स्ट्रेस, नींद की कमी, शारीरिक गतिविधियाँ ना करना, ज़्यादा नमक खाना, मोटापे और धूम्रपान को जो है अपने बिल्कुल करीब रखना, मतलब कुछ भी खा रहे हो भाई तो वेट तो आपका बढ़ेगा ही ना, है ना, और आप कोई नेचुरल एक्टिविटी नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, धूम्रपान अल्कोहल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है कई बार आपके BP को हाई कर सकते हैं और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका खतरा बढ़ सकता है, तो इसीलिए भैया अगर ऐसी कोई परेशानी है, कोई शिकायत है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से परामर्श लें और कोशिश करें नियमित रूप से अपनी जो है BP की जाँच कराते रहें बीच बीच में, और संतुलित खान पान रखें, पर्याप्त नींद लें और व्यायाम ज़रूर करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको दिक्कत हो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल एक काम आपको करना है जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, मज़ा आएगा। 10:10 हो गए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, बॉलीवुड का एक बहुत ही पॉपुलर गाना है, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, आपने ऑफ कोर्स सुना है ये गाना, इस गाने को आइडेंटिफाई करना है। जसविंदर नरूला ने गाया, बहुत ही प्यारा ट्रैक,
भाई साहब की आवाज भी है। यस, मैसेज करना है आपको मुझे व्हाट्सएप करके, भैया आप बता सकते हो 9837896896 पे। उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर। कौन सा गाना है? लास्ट मौका है आपके पास आज की सुबह।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: एग्जैक्टली बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आप आनंद के साथ, जहाँ ढेर सारी बातें हो रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक लकी कॉलर को लेकर आता हूँ फटाफट।

चलिए गाइस, मेरा जाने का समय 10-15 हो गए। खुशी स्टूडियो में आ गई है, आप उसके साथ ढेर सारे गाने एंजॉय करिएगा और अच्छी अच्छी बातें भी। वेल, अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। उन लोगों का भी दिल से थैंक यू जिन्होंने 10 अंडों को बोलने में 100 मिनट बताए। क्या ही कर सकते हैं यार, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके, और अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे जाने की अनुमति। होगी मेरी आपकी मुलाकात कल सुबह सवेरे से स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, तब तक के लिए गाइज ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रेडियो ऐसे ही बजाते रहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके ढूंढ सकते हैं आप, लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको मिल जाऊंगा मैं इंस्टा हैंडल पे, किस नाम से, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूं। टिल देन टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, साइनिंग ऑफ। और लेकिन उससे पहले आपने जो मुझे मैसेज किए थे वो फटाफट पढ़ लेता हूँ। आज की सुबह मैंने आपसे कहा था आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा गाना है, बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप किए।

0: एग्जैक्टली गाना बताना था. एंड सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा है, यहाँ पर नाम बता दूं. बता देता हूँ जी. मेरे पास सबसे पहले सही जवाब आया था प्रेरणा का. कंग्रेचुलेशन प्रेरणा. एंड हरिओम महेश्वरी जी ने भी सही जवाब दिया था भाई. अजी ताली बजाओ यार इन दोनों के लिए. बहुत ही अच्छी बात है. और गाना आप दोनों के लिए है. बाकी लोगों को भी दिल से थैंक यू यार जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया आज की सुबह. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू सो मच. और बहुत ही अच्छा गाना था. एंड दिस इज द राइट आंसर. एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छा गाना है. मूवी बहुत अच्छी है स्टारिंग बाय अजय देवगन एंड काजोल. सुनो गाना. इसी गाने के साथ बाय बाय करने का टाइम. क्या गाना है. व्हाट अ सॉन्ग. आज की सुबह बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए. काफी ब्रिलियंट है यार. चलिए 10:18 हो गए. मैं निकलता हूँ ऐसे. इन शॉर्ट आपके नाम पढ़ता हूँ. राधे राधे आनंद जी, अलका वर्मा जी, थैंक यू. आप आ चुकी हैं. आपकी अटेंडेंस लग गई मेरी क्लास में. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे बताया बहुत से लोग ना अटेंडेंस लगाने ही आते हैं. चलो गाइस कल होगी मेरी वो आपकी मुलाकात. एंड सही जवाब दे रही है अलका जी. थैंक यू. हरिओम जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना जवाब पहुंचाने के लिए. थैंक यू सो मच. यादव फैमिली से राइट आंसर पहुंचा था. एंड आदरणीय आरजी जी को गुड मॉर्निंग. सुहानी शिवपुरी से सही जवाब दे रही थी. गुलाम जलानी पाशा कुंदगी से जुड़े. मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी. डॉक्टर शैयद शारिक अली जी जुड़े. सही जवाब पहुंच रहा है गौरव टेलर जी का नवीन नगर से. और ये मेरे पास मैसेज आया मुंबई महाराष्ट्र से. गाना नहीं पता है सर. कोई बात नहीं. नॉनेश कुमार राइट आंसर दे रहे हैं आज की सुबह. निकुंज भाई थैंक यू सो मच. आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है. बिल्कुल जी मैं भी बाहर के मौसम का आनंद लेने निकल रहा हूँ यहाँ से. बहुत जोरों की भूख लगी है. अब जाके कुछ खाना पीना है मेरे को. रेहान मेरे साथ जुड़े हैं रामपुर से. थैंक यू मेरे भाई. और भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया आज की सुबह. थैंक यू वेरी वेरी मच. जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया आज की सुबह उन सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया यार.
1: आनंद सर जो आपने सवाल किया है.
0: हाँ जी
1: वही इसका जवाब है. प्यार तो होना ही था.
0: क्या
1: अजय देवगन. अजय देवगन के साथ में काजोल.
0: बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात यार. बहुत बहुत थैंक यू मेरे भाई. चलिए गाइस होगी मेरी आपकी मुलाकात कल सुबह ढेर सारी नई नई बातों के साथ. नई नई और अच्छे गाने होंगे. अच्छी वाइब होगी. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ कल हम सेलिब्रेट करेंगे. आज की सुबह कुछ अलग था. कल की सुबह कुछ और अलग होगा. अपना खूब सारा ख्याल रखना है आपने. छोड़ के जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा गाना. इसी के साथ कहता हूँ आपको बाय बाय टेक केयर. ये प्यारा सा दिन आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आए. आज रामलीला अगर आप देखने आ रहे हैं रामलीला ग्राउंड में तो मैं आपको वहीं मिल जाऊंगा. आज राम विवाह होने वाला है. माता जानकी से भगवान श्री राम का आज विवाह है. तो आप डेफिनेटली आइए. बहुत ही अच्छा लगेगा आपको. बच्चों को लेकर जरूर पहुंचेगा रामलीला ग्राउंड में. आज रामलीला बहुत ही स्पेशल होने वाली है. बस एक कड़क अपडेट आपको देनी थी फटाफट से. और बहुत ही भव्य मेला भी लग चुका है. तो आप लोग जरूर आए. जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है आए और रामलीला का लाभ उठाएं. मैं भी आपको वहीं मिलूंगा. अभी के लिए बाय बाय टेक केयर. हैव अ गुड

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: अरे आदाब सर श्रीकाल, बिल्कुल जी प्यार तो होना ही था क्योंकि बाहर का मौसम जो इतना औसम है एंड ऐसा लग रहा है ना फ्राइडे मॉर्निंग की जैसे आज से ही सर्दी स्टार्ट हो गई है। बाहर का जो मौसम है बड़ा ही खूबसूरत सा है, देखिए जो सूरज आ चुके हैं वो भी लुका छुपी खेल रहे हैं एंड बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है और खुशी भी यहाँ पर आ गई है। आपके अपना फेवरेट शो लेकर मॉर्निंग मसाला एंड ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों जरा खिड़की से बाहर झांके आसमान में छाए बादल और ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास सुबह को और भी खूबसूरत बना रहा है। और मुरादाबाद में आज सुबह मौसम कितना ही खूबसूरत है ना, बादलों से घिरा हुआ है एंड बात करेंगे वेदर की भी और आज क्या कुछ स्पेशल है। बहुत सारी बातें हैं यार बताने के लिए, सब कुछ एक बारे में नहीं बताएंगे, अभी तो आए हैं ना तो थोड़ा सा इंतजार करो और बाकी हाँ मेरे साथ कनेक्ट रहो। उसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल नंबर पर मैसेज करना होगा एंड हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: अरे सुनो बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
0: सुनो ना मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। देखिए अभी आपने अमेजिंग ट्रैक सुना अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी मेट्रो इन दिनों, और हम आपको भूलकर कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम आपके साथ ही हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं, देखिए आज फ्राइडे मॉर्निंग है दोस्तों, और आप सभी को खूबसूरत शुक्रवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज का हमारा मॉर्निंग थॉट भी ना बहुत ही खूबसूरत है कि संघर्ष के बिना ज़िंदगी अधूरी है और मेहनत के बिना सफलता अधूरी है। ज़िंदगी बिना हर किसी का सफ़र अलग होता है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी रास्ते हमारा मुश्किलें हमारा हौसला आजमाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मुश्किलों से घबरा कर रुक जाना नहीं, बल्कि हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि दोस्तों सक्सेस सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि उस सफ़र में की गई मेहनत और खुद पर रखे गए भरोसे का नाम भी है। तो इस फ्राइडे खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव थिंकिंग। मैं आपके साथ आपकी खुशी, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मॉर्निंग मसाला एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और आपके यहाँ पर लगातार खूबसूरत संदेश भी आ रहे हैं, तो उनको भी मैं बिना किसी देरी के जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। आज की मॉर्निंग हमारे डियर लिसनर्स क्या पहुँचा रहे हैं, सर उनकी दिल की बातें भी तो जान लेते हैं ना, बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है कि आप भी सब्र से इंतज़ार कर रहे हैं कि खुशी जी अब हमारा मैसेज शामिल करें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के संदेश जो यहाँ पर आए हैं। और हमारे पास यहाँ पर हमें सबसे पहले मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हमारे साथ आज की सुबह हमें मैसेज पहुंचाते हैं बबलू साहू, जमुना देवी जी एंड प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या साहू। कहते हैं मैम गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए इतने प्यार से आप हालचाल मालूम कर लेते हैं ना, तो हम अच्छे हो ही जाते हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं हरिओम महेश्वरी जी मुरादाबाद लाइन पर से। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर पहुँचा है, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी दोस्त, मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा एंड साथ में इनकी फ्रेंड भी है लाइबा नजमा रामपुर से शबनम जी हैं, और ये थैंक यू सो मच हमें पहुंचाती हैं आज की सुबह, और ये फ्लावर्स हमारे लिए भेजे इन्होंने, और साथ में इन्होंने इतना खूबसूरत दिल भी भेजा है। हाय रबा भैया, आपका दिल ऑलरेडी मेरे पास है, समझ रही हैं आप। और अगले मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए, गुड मॉर्निंग खुशी दी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ निखत फातिमा जी, आज की सुबह हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। और दोस्तों आज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग से डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, हेलो खुशी जी, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुज कश्यप जी मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह, और इन्होंने भी एक गाने की रिक्वेस्ट आज की मॉर्निंग भेजी है, तो बिल्कुल सुनवाएंगे। और दोस्तों आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचाना बिल्कुल भी मत भूल जाना, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। लौट कर आती हूँ एक मजेदार अपडेट के साथ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मुरादाबाद 89.6। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और वक्त हुआ है 10:47 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और दोस्तों, तारीख है आज 9 अक्टूबर की एंड आज सेलिब्रेट किया जाता है विश्व डाक दिवस। दोस्तों, चिट्ठियों का वो दौर याद कीजिए जब अपनों के हाथों से लिखे कुछ शब्द चेहरे पर मुस्कान ले आते थे। डाकिया सिर्फ चिट्ठियां नहीं बल्कि अपनों का प्यार, खुशियां और भावनाएं लेकर आते थे। आज तकनीकी के दौर में संदेश भेजना भले ही आसान हो गया है, लेकिन चिट्ठियों से जुड़ी यादें आज भी हमारे दिल में खास जगह रखती हैं। आज उन सभी डाककर्मियों को सलाम करें जो हमारे संदेशों को अपने अपनों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, दूरियों को मिटाने का पैगाम है डाक। अपनों के प्यार का एक खूबसूरत नाम है डाक। और आपके साथ जुड़ी चिट्ठियों की कोई प्यारी सी याद है तो आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। विश्व डाक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके यहाँ पर लाजवाब संदेश आए, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। और दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का। आज की सुबह हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। चलिए दोस्तों, सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद लौटकर खुशी यहाँ पर आती है। आप कहीं मचाइए, बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 106 पर। खुशी आपके साथ है और अभी आपने तिरंगा मूवी से ट्रैक एंजॉय किया एंड इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी अनुज कश्यप जी ने। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद सिटी में क्या कुछ चल रहा है एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और अभी हम आपको वक्त भी बता देते हैं, समय हुआ है 10:59, 10:59। दोस्तों मुरादाबाद से सांस्कृतिक और सामाजिक अपडेट भी आपको मिलनी बहुत जरूरी है। लाइन पार की रामलीला में राम और सीता जी के प्रथम मिलन, पुष्प वाटिका और गौरी पूजन के प्रसंगों का खूबसूरत मंचन किया गया एंड जिसने दर्शकों का मन मोह लिया है। और आज भी बहुत स्पेशल, यू नो, रामायण में खूबसूरत लीलाएं दर्शाई जाएंगी, तो आप भी जरूर आइएगा। और वही बात करेंगे शहर में छात्राओं के लिए आयोजित सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस दौरान छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए और विशेषज्ञों ने उनके हुनर को और निखारने के लिए टिप्स भी दिए हैं। बात करते हैं उधर नवरात्रि और दिवाली की तैयारियां भी तेजी से हो रही हैं। शहर में शेरावाली माता की मूर्तियों का निर्माण तेजी से चल रहा है और मूर्तिकारों को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। यानी मुरादाबाद में एक तरफ सांस्कृतिक की छटा है और दूसरी तरफ हुनर और त्योहारों की रौनक भी देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करें आज मुरादाबाद के वेदर की, तो बता देते हैं आपको मुरादाबाद में आज 9 अक्टूबर को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम के पूर्व अनुमान के मुताबिक सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होने और धूप निकलने के आसार भी हैं। आज अधिकतम तापमान करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय मौसम का ध्यान जरूर रखें और अगर सुबह कहीं बादल या हल्की बारिश देखने को मिल रही है तो उसके लिए भी तैयार रहें। फिलहाल मौसम के इस बदलते मिजाज के साथ मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। और अभी करंटली अगर बात करें टेम्परेचर की, तो 26 डिग्री सेल्सियस का अभी टेम्परेचर है करंटली मुरादाबाद का। एंड आपके जो यहाँ पर संदेश आए मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का। बहारुल हसन जी अपनी फैमिली के साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, निशा जी गुड मॉर्निंग विश करती हैं। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसी हैं आप? और ये गाना सुनना चाहती है फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन। अच्छा जी, ये प्यारा से गाना आप सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए यहाँ पर मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशात हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? आपका शो हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ट्रैक सुनना चाहते हैं, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी का। जय श्री राम हमें पहुंचाते हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और चलिए एवरीवन सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, खुशी आपसे कहती है मुस्कुराते भी रहिए, मुस्कुराना बिल्कुल मिस मत करना है, ठीक है? इतना प्यारा सा चेहरा है, इतना खूबसूरत सा दिन है, हाँ, तो उसे बिना मुस्कुराहट के कैसे आप, मतलब देखिए मुस्कुराहट के बिना ना वो इनकम्प्लीट लगेगा। तो मैं कहती हूँ आपसे कि देखिए चेहरे पर ना मुस्कुराहट बरकरार रखिए। आप मुस्कुरा रहे हैं, शायद दूसरा वाला, सामने वाला पर्सन भी आपको देखकर मुस्कुरा जाए, तो खुश रहना चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए। और ये इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है, मुस्कुराने की बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मुस्कुराओ यार। और सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6, सुनते हैं अमेजिंग ट्रैक।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276111।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए हम भी चले आए, हम कैसे रह सकते हैं भाई आप सबके बिना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और वक्त हुआ है 11:16। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामीण महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल की गई है। एंड उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बीसी सखी योजना के जरिए बैंकिंग सेवाएं लोगों के घर के करीब पहुंचने में मदद मिल रही है। इस योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाएं बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में काम करती हैं और ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग लेन देन जैसी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करती हैं। इस पहल से ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं, वहीं महिलाओं के लिए भी रोजगार और कमाई के अवसर भी बन रहे हैं। यानी ये पहल गांव में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों तकनीकी से जुड़ी अहम खबर की। एंड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पिछले 10 से 12 वर्षों में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रहा, बल्कि सुशासन और सरकारी सेवाओं को आम लोगों तक पहुँचाने का एक अहम जरिया बन गया है। एंड डिजिटल इंडिया की मदद से अब कई सरकारी सेवाओं का लाभ मोबाइल के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है। इससे लोगों का समय बचता है और सरकारी सुविधाओं तक पहुंचना आसानी होती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं, हालांकि डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करते समय अपनी निजी जानकारी और OTP की सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है। एंड अपना OTP किसी के साथ बिल्कुल भी ना शेयर करें। और एवरीवन, अगर कोई अनजाने WhatsApp ग्रुप में कोई लिंक आ रहा है तो उस पर तुरंत क्लिक ना करें बिना किसी जानकारी के। और चलिए भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर कुछ और खूबसूरत संदेश आए हैं, उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं सुहानी का, ये मैसेज अपना पहुंचाती है शिवपुरी मुरादाबाद से। मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नईमूल अक्रम जी का सिरसवा दोराहा से, और राज की सुबह ये भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। एक सवाल मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो मैंने सोचा क्यों ना प्ले आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पर हमें थैंक यू पहुंचाते हैं अनुज कश्यप जी, मोस्ट वेलकम सर। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नागल से रिहाना जी का, मैम कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह दुर्गेश सैनी जी, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, जय श्री राम आपको भी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, क्या हाल है आपकी? खुशी तो खुश रहती है सर, और कोशिश करती है कि आप सबको भी ढेर सारी खुशियां दें नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए नए एंड ट्राइंग के साथ, जो आपकी सुबह को बना दे और भी ज्यादा खूबसूरत। और इन्होंने आज की सुबह एक थॉट भी शेयर किया है, बहुत ही प्यारा सा है कि इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो मन की शांति से बड़ी हो। एग्जैक्टली राइट, मन की शांति सबसे जरूरी है। तो चलिए एंड अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत गाने जो आपको देंगे बहुत सारी खुशियां, हैप्पीनेस।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

हेलो एवरीवन, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अभी वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:31। और दोस्तों, आज की मॉर्निंग ना हमने सोचा कि क्यों ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए इंटरेस्टिंग सा। दोस्तों, आज का मेरा जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड मजेदार है। और सवाल मेरा ये है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़े बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़े बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? सोचिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और हमें बताइए इसका सही जवाब क्या है। और जो जवाब पहुंचाने के लिए आपको हमारा नंबर तो मालूम होना चाहिए ना। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9883789689। बताइएगा कौन सी ऐसी चीज है जिसे तोड़े बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जब तक आप अपने संदेश पहुंचाते हैं, हम तब तक और यहाँ पर जो खूबसूरत संदेश आए उनको शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है विकी सागर जी का मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि जानकारियां बहुत ही अच्छी देती हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा विकी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप की रिक्वेस्ट इसी गाने की क्यों आती है बार बार? कांटा लगा? हाँ जी, बताइए आपको कांटा कहीं बार लगा है क्या, या ये गाने से क्या कनेक्शन है आपका, पहले तो मुझे ये बताओ। क्योंकि जितनी बार भी आपके जो मैसेज आते हैं तो स्पेशली इस गाने की रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा आती है मेरे पास। मैंने आपके व्हाट्सएप पे जितने भी आपके मैसेज आए हैं आज मैंने चेक किया है तो सबसे ज्यादा इसी गाने की रिक्वेस्ट आई है। एंड प्लीज टेरिस बताइए मुझे कि ये गाना आपको क्यों इतना ज्यादा पसंद है। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मसाला में आपकी प्यारी आवाज सुनकर सुबह और भी अच्छी हो गई है। आपकी शानदार अंदाज और खूबसूरत गानों के साथ शो का मजा ही अलग है। ऐसे ही अपने प्यारे बातों से हमें एंटरटेन करती रहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी भी है, शो के हिसाब से मुमकिन हो तो हमारी पसंद जरूर प्ले कीजिएगा। डेफिनेटली सर, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आसिफ जी इटली से। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर मिला है हमें उमेश कुमार प्रजापति जी का, लोधीपुर मुरादाबाद से। हर हर महादेव पहुंचाते हैं और एक ट्रैक इन्होंने सुनना चाहा है, कॉलेज की लड़कियों। तो चलिए सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक। और आज की सुबह मैंने आपसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है, भूली तो नहीं है ना? अच्छा चलो, अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं है, मैं याद दिलाने के लिए हूँ ना। चलिए एक बार और मैं आपसे मालूम करती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मेरा आज की मॉर्निंग। ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़े बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? जरा सोचिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और हमें बताइए इसका सही जवाब क्या है। अपने जवाब हमें पहुंचाएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। चाहे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप वो आपकी मर्जी है। देखते हैं हमारे मुरादाबाद के श्रोताओं में से कौन सबसे बड़ा पहली मास्टर है, आज जान लेते हैं जिनका सबसे पहले जवाब आता है। चलिए अभी आप सुनिएगा कुछ अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद लौटकर मैं वापस आती हूँ। आप कहीं बजाएं, यूं ही मुस्कुराइए।

0: देखिए दोस्तों, इंतजार तो मैं अभी कर रही हूँ आपके सही जवाबों का, लेकिन भाई आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। देखो, आप दो दो चीजें बता रहे हो, बट मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहती हूँ, ठीक है? तो आप डिसाइड कर लीजिएगा एक, हाँ जो भी है सही जवाब दीजिएगा एक ही, क्योंकि आप मुझे दो दो आंसर दे रहे हैं, इससे मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ और आप भी, है ना? तो आप एक ही डिसाइड करिएगा जो आपको बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ यही इसका आंसर है, तो पहुंचा दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आज की मॉर्निंग मैंने आपसे पूछा है, और ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। और मेरा सवाल वंस अगेन आप फिर से सुन लीजिएगा जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है। बता देते हैं आपको, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़े बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? इस पहली का आपको सही जवाब हमें पहुंचाना है, और एक ही आंसर आप मुझे पहुंचाएगा, क्योंकि आप डबल डबल आंसर पहुंचा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है ना, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ और थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं ना। तो कंफ्यूजन को मिटाते हैं, एक ही जो भी आपने डिसाइड किया है आंसर वही पहुंचाएगा। थोड़ा सा दिमाग घुमाइए, दौड़ाइए उसको, थोड़ी सी कसरत करवाइए, रील्स तो बहुत स्क्रॉल करते हैं, आज दिमाग को भी थोड़ा सा घुमाइएगा और बताइएगा सही जवाब इस पहले का। और कुछ अभी एड ब्रेक के टाइम हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद सुनेंगे, एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद लौट कर आएंगे और देखते हैं सबसे पहले इस पहली का खूबसूरत और सही जवाब हमारे कौन है, वो लकी विनर आज के सुबह के जान लेंगे, आपको भी बताएंगे, टेंशन ना लो आप। लेकिन अभी आपके पास भी टाइम है, आप भी मुझे बता सकते हैं इसका सही जवाब। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए
1: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए कांटा, तो आपकी बातें सुनकर ना सच में मेरे दिल में भी लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि खुशी ऐसा क्यों बोल रही है। भैया पहले हंस लो। आप बताते हैं, एक्चुअली हमने जो क्वेश्चन पूछा है ना और उसके जो जवाब आ रहे हैं, ओ हो हो हो, मैं अपनी हंसी ना कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। बट क्या करूँ, करनी पड़ रही है। मैंने आपसे बहुत सिंपल सा आज की सुबह क्वेश्चन पूछा था और उसके जो जवाब आ रहे हैं, भाई क्या ही कहने, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के, मतलब जो मैंने इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है उसके अतरंगी जवाब आएंगे।

आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था कौन सी ऐसी चीज है जिसे तोड़े बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और जवाब आपकी एक से बढ़कर एक आए। तो चलिए जो हमारे पास जवाब आए अतरंगी से उनको पहले शामिल कर लेते हैं ना, और फिर जो सही जवाब आए वो तो हम आपको बताएंगे। इस बात की आप टेंशन बिल्कुल ना लें। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है और कहते हैं कि आज का मैम सवाल का जवाब है बंदूक। हाय रबा, मैं क्या करूँ बताओ मुझे। और नेक्स्ट यहाँ पर आंसर दिया है मैम आपके क्वेश्चन का जवाब है रिश्ते नाते टूटे जाते हैं, टूट जाते हैं फिर तो फिर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अरे भैया, अगर रिश्ते टूटते हैं तो वो दोबारा बन भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस रिश्ते को कैसे यू नो आगे स्ट्रांगली चलाना चाहते हैं। और अगला यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है नारियल। ओके, बिना तोड़े नारियल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं, लेकिन इसका सही जवाब ये भी नहीं है सर। और हमारे पास सबसे पहले हमें सही जवाब आज की मॉर्निंग पहुंचाया है, बता दें आपको, चलिए बता देते हैं। एंड सबसे पहले हमें यहाँ पर सही जवाब दिया है, उनका नाम मैं अनाउंस करने जा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमें सही जवाब पहुँचाया है बबली अंजान जी, और साथ में गीता कश्यप जी हैं, लक्ष्मी कश्यप जी हैं। एग्जैक्टली सही जवाब है अंडा, उसको बिना तोड़े इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और इसी बात पर हम आपके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहते हैं, क्योंकि आपने दिया है सबसे पहले सही जवाब।

बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी एंड जितनी भी भाभियां आप हमें इस वक्त सुन रही हैं, मैसेज पहुंचाया है आपने एंड आपका सही जवाब है अंडा। एग्जैक्टली राइट आंसर यही है एंड आपके लिए बहुत बहुत बधाइयां जी। आज हमारी शो की आप बंधी लकी सुपरस्टार। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कोमल शर्मा जी का और ये भी सही जवाब के साथ जुड़ी है। एग्जैक्टली राइट आंसर यही है और आज सेलिब्रेट किया जाता है विश्व अंडा दिवस, तो मैंने कहा चलिए ये क्वेश्चन पूछा जाए। स्वस्थ रहने का है फंडा, रोज खाओ एक अंडा, लेकिन हम तो नहीं खाते हैं, जो खाते हैं उनके लिए अच्छी बात है। एंड एवरीवन, मैं आपको बताना चाहूंगी अंडे खाने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, अंडा प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है जो हमारी मसल्स को मजबूत बनाने, शरीर की ग्रोथ और एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन बी, विटामिन डी और कोलीन जैसी जरूरी न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं जो दिमाग और शरीर की सेहत के लिए फायदेमंद हैं। तो दोस्तों, अपनी डेली डाइट में पौष्टिक चीज़ों को जगह दीजिए और फिटनेस के साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। जो फिट है वो हिट है। जो अंडा खाते हैं उनके लिए विश्व अंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी डाइट में रेगुलर एक अंडा शामिल कर सकते हैं और स्वस्थ रहिएगा। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अंसार हुसैन जी का, दौलत बाग मुरादाबाद से, और इन्होंने गुड मॉर्निंग विश किया है इतनी खूबसूरती से। थैंक यू सो मच सर, आपने जो ये फ्लावर्स की पत्तियां भेजी है ना, बहुत प्यारी लग रही है। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? हम एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं। आपने इतना मैसेज तो इतना प्यारा से पहुंचा दिया है सर, लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है आपने। कहते हैं जिला रामपुरिया हूँ आपकी। आप कैसे हैं खुशी जी? मैं आपको प्यार भरा नमस्कार पहुंचाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि इंशाल्लाह दस से बारह। ओके, आप हमारा रेगुलर शो सुनते हैं, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो मैम कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। अर्जुन जी मैसेज हमें पहुंचाते हैं। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं तनवीर फ्रॉम कश्मीर से। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर सही जवाब के साथ जुड़े हैं आसिफ जी। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए खुशी दी, इसका जवाब है अंडा। एग्जैक्टली राइट, आपने सही जवाब हमें पहुंचाया है फातिमा जी, थैंक यू निखत फातिमा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रोटी। और थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज पहुंचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन वंस अगेन आप सभी को। और टेक्स्ट मैसेज भी यहाँ पर आए तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया, हेलो मैम कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। उन्होंने जवाब दिया है अंडा। ये नैना मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाती है आज की सुबह। नैना, हमें तुमसे ही कुछ कहना, आपने अपना आंसर इतनी देर से क्यों पहुंचाया डियर? बट कोई बात नहीं। अगला मैसेज हमारे पास आया, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, अंजलि सिंह जी का मैसेज हमारे पास आया है। साथ में आदिति है, स्वाति है, क्या बात है जी, सुबह सुबह इतनी सोनी सोनी कुड़िया मैंने मैसेज पहुंचाते हैं, बड़ा ही सोना लगता है, थैंक यू जी। चलिए एवरीवन, अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। पता है मैं बार बार क्यों बोलती हूँ आपको अपना ख्याल रखने के लिए? क्योंकि आप मेरे लिए बहुत मोस्ट हैं एवरीवन। और जब आप सब खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो खुशी को बहुत अच्छा लगता है।
और ये जिंदगी बहुत अनमोल है, बहुत खूबसूरत है। हमें नहीं पता है कि दोबारा हमें ये जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं पता होता है। तो इसीलिए अपने हर पल को, इस खूबसूरत जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करो, हर पल जियो, अच्छी कार्य करो एंड किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करो, क्योंकि ऊपर वाले ने इस काबिल हमें बनाया है एंड उनका हर पल शुक्रगुजार हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए हर उस पर्सन का भी जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं। किसी ना किसी जरिए से छोटी छोटी खुशियां आप भी बांटिए, क्योंकि जो हम देते हैं रिटर्न में वही हमें मिलता है। बाकी मैं अपनी बातों के साथ अब आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति, क्योंकि जब खुशी बोलती रहती है ना तो ये चुप नहीं होती है। अब मैं चुप हो जाती हूँ, ठीक है? आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटती रहिए और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाती रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। आई होप आपको शो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नई बातों के साथ, नई एनर्जी के साथ एंड नए लिसनर्स के साथ, क्योंकि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में नए नए लिसनर्स भी जुड़ते हैं, आप उनकी बातचीत सुनते हैं, अच्छा लगता है और गाने तो होते ही आपके पसंद के।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: इन दिनों आप हमारे रेडियो से लगातार सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती किसानी, और इसमें आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाया जा रहा है। तो आज हम सितंबर महीने की फसलों की देखभाल के संदर्भ में आपको बताने के लिए आए हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर एके सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंबल फर्टिलाइजर्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में सिंह साहब।
2: स्वागत के लिए आपका शुक्रिया संजय जी, और सभी श्रोता जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार।
1: तो सबसे पहले तो हम सिंह साहब ये जानना चाहेंगे कि भारत सरकार और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम के एस क्या योजना है, और इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देंगे?
2: जी, भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है, और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आप ऐसे समझे पीएम केएस के तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एनपीके है, और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं, और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें हैं या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो पीएम केएस के है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हरेक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है। ये सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है, और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्य वर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराए।
1: ये जो केंद्र है देश भर में कहाँ कहाँ पे हमारे किसानों को उपलब्ध होंगे, जैसे छत्तीसगढ़ की बात है या उत्तर प्रदेश की बात है, तो वो कहाँ पे वो केंद्र?
2: जी, इसमें जो भी खाद के बिक्री के केंद्र है वो सारे अब इसी नाम से जो जाने जाते हैं। अच्छा। तो उसके लिए कोई आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये कोई अलग से होगा। जहां से आप अब तक उर्वरक या खेती के आदान जो लेते आए हैं और जहां से आप ले रहे हैं वो सारे पीएम के स्कीम में शामिल है।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ये दुकानें खुली है, नहीं, इनको एक अलग से नाम दिया गया और इनके लिए कुछ जो कार्यशैली तैयार करी है उर्वरक मंत्रालय ने और भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से, कि आपको इस ढंग से अब अपने विक्रय का काम करना है और जो किसानों को सलाह देनी है उसके उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी उर्वरक या खेती के आदान जो हमारे किसान प्रयोग कर रहे हैं उसका समुचित लाभ उनको मिले और उनका संतुलित उपयोग हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि ठीक है कोई चीज इस्तेमाल करनी तो वो हम जो किए जा रहे हैं और उसका कोई तरीका नहीं है, कोई ढंग नहीं है। तो ये इसलिए है, तो मेरा अनुरोध है कि आप इन सेवाओं का लाभ उठाइए। तो भारत सरकार ने बहुत सोच के ये सेवाएं आरंभ करी हैं और इनके बड़े लाभ हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दुकान पे आ रहे हैं, आप अपनी बात समझा नहीं पाते, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो इसमें ऐसी भी व्यवस्था है कि उर्वरक की जो कंपनियां हैं वो और कृषि विज्ञान केंद्र वो आपके खेत पर जाके भी आपकी समस्या को देख के उसका समाधान आपको जो बताएंगे
1: जी।
2: तो एक बड़ा ही जो अच्छा ये कार्यक्रम है, महती कार्यक्रम है और मैं जो जो आपसे अनुरोध यही करता हूँ कि सारे किसान भाई इसमें शामिल हों और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें।
1: और जो लोग अभी तक शामिल हो चुके हैं वो लोग देख ही रहे होंगे कि उन लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है इसका।
2: बिल्कुल जरूर।
1: तो जो उर्वरक के उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक संबोधन भी दिया था
2: जी,
1: हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि उसका क्या उद्देश्य है?
2: जी बिल्कुल, असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है कि इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च ना हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमके जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है उनके कर में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ या उसने ये वाला खाद लिया तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं आपको कौन सा पोषक तत्व चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं, और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीदते, उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें, और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य खराब होगा तो हमें फिर आगे चल के अच्छी फसलें नहीं मिलेंगी,
1: और वो जो फसलें अच्छी नहीं मिलेंगी ज्यादा उर्वरक को नुकसान करने वाली, तो वो हम भारतवासियों को भी जो हम खाएंगे तो
2: हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल,
3: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार जगर करते रहेंगे तो ये धरती

0: अगली माह हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन के बाद हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके बीच कार्यक्रम खेती किसानी लेकर, और आज हमारे साथ डॉक्टर ए के सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंपल फर्टिलाइजर्स, साथ में बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में, जो अब हमको बताएंगे कि सितंबर माह की फसलों की देखभाल कैसे की जाए। तो सबसे पहले जो धान फसल की देखभाल, अभी अभी सब जगह पे बरसात हुई है, मानसून हुआ है, सब जगह पे थरहा लगा के और बुआई का काम हो चुका है, तो धान की फसल के अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं उसके पौधे जो हैं, तो उस फसल की देखभाल कैसे की जाए इसके बारे में सलाह दीजिए।
2: वैसे तो सभी किसान भाई इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी दो चीजें मुख्य है। एक तो उसका पोषण। अब पोषण से जब बात आ जाती है धान में, तो हम ये ना देखें कि जो स्थूल उर्वरक है, जैसे कि जो कट्टे में खाद आ रहा है, उससे ही संबंधित न रहे। अगर हमें कहीं कहीं जो लगता है कि उसमें पोषण की कमी है, तो आजकल ऐसे भी पोषक तत्व आ रहे हैं जिनका कि हम स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है जिंक की कमी है, तो आप जिंक का स्प्रे कर सकते हो, जिंक की मात्रा ले लें और उसका आप स्प्रे करें। जैसे कि 350 ग्राम जिंक है और करीब करीब आप 150 ग्राम चूना ले सकते हैं 100 लीटर पानी में घोल के। जब फसल आपकी 45 से 60 दिन के बीच की हो, उस समय तक अगर आप एक स्प्रे करेंगे तो जिंक की कमी पूरी हो जाती है। जिंक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और धान में खास तौर से इसका बड़ा लाभ मिलता है। अगर जिंक की कमी है तो फसल उत्पादन में कमी आती है और जो अनाज के अंदर पोषक तत्व होते हैं उनमें काफी कमी हो जाती है। तो आप ध्यान दें, अगर खैरा रोग से संबंधित कोई असर दिख रहा है, जैसे कि जो धान का पत्ता उस पर आपको जिंक जैसा लगता है, या मतलब ऐसी जो जंग जैसी हल्का सा उनकी नजर आता है, तो जिंक की कमी है, आप उस पर स्प्रे करें। इसके अलावा बहुत सारे और भी फर्टिलाइजर आते हैं जो स्प्रे किए जाते हैं, जिनको हम NPK बोल देते हैं। जैसे हमारा उत्तम रिचार्ज आता है, अलग अलग कैटेगरी 19-19-19 होता है, 0-32-0 होता है, ऐसे अलग अलग तरह के ग्रेड होते हैं, उनको भी आप पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं और उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये पोषक तत्व की बात रही। इसके अलावा कीटों से संबंधित है, तो कीटों में जैसे कि आपका जो तना छेदक है, पत्ती मोड़क है, तो उसके लिए हमारा एक तो उत्पाद आता है ऑनविक्स। ये आप 4 किलोग्राम और खेत की मिट्टी हो या कोई भी सूखा रहे तो उसमें इसको मिलाए और आप इसको खेत में फेंक सकते हैं। जहां पे पानी है तो आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है हमें स्प्रे करना है, तो एक दवा आती है प्रोटा के नाम से, 60 ml दवा है और करीबन 150 लीटर पानी में घोल के आपका आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें बात ये ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में जो जो, जो धान का पौधा है उसका आकार ज्यादा है, तो पानी की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, अगर छोटा है तो थोड़ी कम कर सकते हैं। दीमक वगैरह है तो एक उत्पाद आता है स्टेम्बो के नाम से, ये 8-10 किलो मात्रा है, रेत में इसको मिलाए और 1 एकड़ के हिसाब से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लीफ फोल्डर है, तो इसके लिए एक दवा आती है लेपीबीर, 100 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका जो है छिड़काव करें। और इसके अलावा संज्ञा जी, कुछ रोग होते हैं, रोग जैसे सीट ब्लाइट है, सहसा मारी ब्लास्ट है, ये बहुत सारे रोग हैं। तो रोग के बारे में ये कहा जाता है कि रोग से अगर पौधा खराब हो गया तो उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन रोग को वहां रोका जा सकता है। तो एक दवा है एजोल करके, ये 200 ml दवा है।
1: अच्छा।
2: जब आपको इसके दिखे लक्षण, इसमें क्या होता है अंगमारी, मतलब पौधा आपका सूखने सा लगता है, तो 200 ml दवा 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसका छिड़काव करें। इसके अलावा फुलकोट भी एक दवा है, ये भी 150। ये फफूंद नाशी, ये करीब करीब सारी फफूंद से संबंधित बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए ये काम आते हैं। इसके अलावा उत्तम लैक्सोन है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में दवा हो, एजोल है, लैक्सोन है, फुलकोट है, इन तीनों में से कोई भी एक दवा आप लेके छिड़काव करें, जिससे रोग की रोकथाम की जा सकती है।
1: तो ये तो धान की फसल के बारे में आपने जानकारी दी कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं पौधों को, पत्तों से जुड़ी हुई, तनों से जुड़ी हुई, या फफूंद लग गई है, या तो उसके लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए।
2: जी,
1: तो सितंबर महीने में अब हम अगले सोयाबीन की फसल के
2: जी
1: बारे में बात करते हैं। जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई है और उसमें कुछ बीमारियां नजर आ रही हैं, या उनकी उस फसल की देखभाल वो लोग कैसे कर सकते हैं?
2: हाँ, सोयाबीन में अगर जैसे कि कीड़े आते हैं खास तौर से, तो अगर कीड़ों में देखे सेमी लूपर होता है, ऐसे ये जो कैटरपिलर टाइप का होता है, जो धीरे धीरे चलता है, कभी ऊपर उठता है, नीचे जाता है, ऊपर जाते से उठता जाता है, तो इसको सेमी लूपर बोल देते हैं, जो तना मक्खी बोल देते हैं। इसके लिए भी एक उत्तम चोटा दवा है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। पीड़ा के नाम से एक दवा आती है, वह आप प्रयोग कर सकते हैं। वीर कोमली के नाम से, मतलब ये सारे कीटनाशक है, अब इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं, उनका प्रयोग करें। दूसरा, इसमें ध्यान ये रखें कि जब भी आप स्प्रे करें तो ऐसे समय पर करें कि जब आपको लग रहा हो कि खेत के जो हमारी फसल है उसकी पत्तियां सूखी हैं, और दोपहर के आसपास करें या सुबह के टाइम कर लें, और उसके बाद करीब करीब 8-10 घंटे बारिश ना हो, तो जो मतलब दवा है उसका असर रहेगा और वो कीड़े मरेंगे। तना मक्खी है, उसके लिए नेमडा स्ट्रॉन्ग के नाम से एक दवा आती है, 120 ml दवा है, 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा मक्खियां जैसी उड़ती रहती है, उसको तेला बोल देते हैं, सफेद रंग की भी होती है और काले रंग की भी होती है। ये जो एक तरह से मक्खी है, ये क्या करती है, ये रोग को फैलाती है एक खेत से दूसरे से, दूसरे से ऐसे करके। तो इसके लिए आईमैक्सो नाम से एक दवा आती है, 80 से 100 ग्राम दवा है, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव करें और इससे इसको रोकें। लेकिन साथियों, जैसे ये तो इस वर्ष की बात होगी, लेकिन आगे के समय के लिए मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर रोगों की रोकथाम या कीटों की रोकथाम के लिए आप चाहते हैं कोई सार्थक उपाय हो सके और उनकी संख्या कम रहे, तो उसके लिए आप जिस खेत में फसल लगा रहे हैं उसके चारों ओर कोई अन्य ऐसी फसल अवश्य लगाएं जो कि जिसकी लंबाई ज्यादा होती है। जैसे कि सोयाबीन लगा रहे हैं तो उसके आसपास की जो वो जो मेड़ है उस पर आप 4-5 कूड़ किसी और फसल के लगाएं जो इस समय लगती है, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट आपके खेत तक
1: नहीं
2: नहीं आ
1: पहुंच
2: पाते
1: पाते
2: हैं, और जब एक बार आपने उसका उपचार कर दिया तो वो फिर दोबारा नहीं आएंगे उस खेत के, खेत में ही वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन अगर खेत खुला एक्सपोज रहता है तो आपने अभी स्प्रे किया तो वो यहां से भाग के दूसरे खेत में चले जाएंगे, और जैसे ये असर कम होगा फिर
1: फिर वापस आ
2: वापस आ
1: जाएंगे।
2: जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखें कि जो भी आप स्प्रे करें उसके लिए टंकी वगैरह पूरी अच्छी तरह से साफ कर लें, पानी जो लें वो साफ पानी लें, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी होती है तो दवा का असर कम हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें। और कोई भी कीटनाशक या फफूंद नाशक आप प्रयोग जब करते हैं तो उसका कम से कम जो 15 दिन तक असर रहता है, तो इंतजार करें कीड़ों का जो खत्म होने का। हड़बड़ी में 5 दिन बाद ही आपको लगा और आपने फिर दोबारा इसे ऐसा न करें, उससे क्या होता है कि जो कीटे हैं, जो कीड़े हैं, उनके ऊपर जो दवा का असर फिर आने वाले समय में कम होता है, उनमें उसको रोकने की क्षमता आ जाती है, तो ये ध्यान रखें। और जहां तक रोग की बात है तो जैसे मोजेक रोग है, रतुआ रोग है, और फफूंदी से संबंधित और रोग हैं, तो इनके लिए एक उत्तम एजोल जो दवा है 200 ml है प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा हमारा जो फफूंद नाशी आता है इसको मैंजिम बोलते हैं, 400-500 ग्राम लें, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका स्प्रे करिए, तो इससे बहुत सारे रोगों का नियंत्रण किया जा सके। आपको लग रहा है कि किसी दूसरे और के खेत में अगर कोई रोग है तो आप सुरक्षात्मक भी एक स्प्रे कर सकते हैं।
1: जी श्रोता साथियों, खेती किसानी कार्यक्रम में आप इस समय हमारे कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं सितंबर माह की फसलों की देखभाल के बारे में जानकारी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर एके सिंह, जो चंबल फर्टिलाइजर्स में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर हैं। तो इन्होंने धान की फसल और सोयाबीन की फसल के बारे में, तो कैसे देखभाल की जाए इसके बारे में सलाह दी। अब हम आपसे चाहेंगे डॉक्टर साहब की मूंगफली की फसल
2: जी,
1: जिन किसानों ने लगाई
2: बिल्कुल
1: है तो वो लोग उसकी देखभाल कैसे
2: हाँ
1: करें इसके
2: बिल्कुल।
1: बारे में बताएं।
2: मूंगफली की फसल हमारी एक तरह से खाद्य फसल है, और इसमें प्रोटीन की काफी मात्रा पाई जाती है, और सभी क्षेत्रों में लगभग जहां भी उपयुक्तता होती है, थोड़ी हल्की जमीन होती है वहां पर हम इसको उगाते हैं। पोषण के रूप में अगर हम ऐसा कह लें तो इसमें एक हमारा जो है उत्पाद आता है आरिस गोल्ड के नाम से, ये जैव उत्पाद है, ये 500 ml है, और इसको पानी में घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। इसके अलावा हमारा एक जो फैटलेस के नाम से भी आता है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, ये करीब करीब 1 लीटर पानी में 5 ml के आसपास आप घोल लें और फिर इसका आप स्प्रे करें, 100 लीटर पानी क्षेत्र के लिए आवश्यक होता है। इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि फसल को मिलते हैं। अब बात आती है कीड़ों के बारे में, तो ऊपर से ये पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं, तो वो जो पत्तियों को खाते हैं और उनको खत्म करते हैं। अब बात ये आती है कि भाई मूंगफली तो नीचे लगती है तो ऊपर क्या, फिर कोई टेंशन की बात तो है,
1: पत्ते खा रहे हैं तो खाते रहे,
2: लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पत्ते होते हैं इनसे भोजन बनता है फसल का, ये धूप से भोजन बनाते हैं। और वैज्ञानिक तथ्य तो ये कहा जाता है कि 80 से 90% जो भोजन है वो पौधे अपने ऊपरी भाग से बनाते हैं
1: जी, प्रकाश संश्लेषण,
2: प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो आप इनकी रोकथाम करें इसके लिए प्योटा नाम से दवा आती है, कीटनाशक है, 200 लीटर पानी में घोल के 60 ml आप छिड़काव कीजिए। और एक इल्ली आती है तंबाकू की इल्ली बोलते हैं, इसके लिए प्योटा से भी ये कंट्रोल हो जाएगा, और अगर प्योटा नहीं है योटा है तो योटा से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कीटों का कंट्रोल बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और धीरे धीरे अगर उनको मौका मिल गया तो वो नीचे भी घुस के जो फलियां हैं उन पर भी वो आक्रमण कर सकते हैं। फिर जहां तक रोग की बात आती है तो मैं यही कहूंगा कि इसके लिए एक बड़ी सीधी सादी दवा है जिसको हम मैंजिम बोल देते हैं। और मैंजिम लगभग कोई भी, जैसे आपका लग रहा हो टिक्का रोग हो, धब्बा रोग हो, रोली गेरुआ रोग हो, इनमें सब में ये करीब करीब काम आ जाता है। 200 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव करें। छिड़काव के समय सावधानी में खासतौर से देखने वाली बात यही है कि उससे पहले कोई बारिश नहीं हुई हो, क्योंकि अगर जो पौधे में पानी ऑलरेडी उसकी पत्तियों में अच्छा है तो वो जो दवा आप स्प्रे करें उसको अच्छे से सूखेगी नहीं, क्योंकि उसकी पूर्ति हो चुकी है तो उसके अंदर थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए सूखने की, तो वो सूखेगी, पानी सूखेगी तो उसके साथ उसकी दवा भी जाएगी। और उसके 8-9 घंटे तक मौसम खुला रहे तो बहुत उपयोगी रहता है। तो ये मूंगफली के बारे में जानकारी रही।
1: देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के किसान इस समय सितंबर महीने में जिन फसलों को लगाते हैं उनमें धान, सोयाबीन और मूंगफली के बारे में जानकारी डॉक्टर एके सिंह दे चुके हैं कि कैसे उसकी देखभाल की जाए हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि मक्का की फसल की देखभाल कैसे करें वो किसान जिन्होंने इस समय मक्का की खेती की।
2: मक्का की फसल अब अगर देखें सरिया जी तो जो है जायद में भी होने लगी है। जायद मतलब रवि की फसल कटी उसके एकदम बाद।
1: अच्छा।
2: और काफी लाभकारी जो खेती होती जा रही है और काफी लोग करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, उसके बाद फिर धान लगा लेते हैं या कोई और फसल लगा लेते हैं खरीफ में। तो पोषण के लिए तो यह है कि अभी ये जो कटाव के आसपास आ गई है तो अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ इसमें खुराक की जरूरत है या हमें जो देना चाहिए, तो इसमें आप हैरिस गोल्ड के नाम से जो जो हमारा एक उत्पाद आता है 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से घोले, और 1 एकड़ में 100 से 200 लीटर आप जो पानी का इस्तेमाल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई जैसे सोल्यूबल या जो NPK मिलते हैं, ये 1 किलो की पैकिंग में भी मिलते हैं, अधिक में भी मिलते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। जैसे 1919 है, पोटास से संबंधित कुछ होते हैं तो उनका भी आप स्प्रे आराम से कर सकते हैं। इस समय पर कोई अन्य स्थूल उर्वरक न डालें क्योंकि उसका उतना लाभ नहीं होगा, और आपको ठीक है खर्च जरूर कर देंगे तो लेकिन उसका कोई लाभ आपको ज्यादा नहीं मिलता। कीटों से संबंधित बात है तो करीब करीब कीटों एक जो इस समय पे एक जैसे ही होते हैं। एक जैसे इसलिए होते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, उन्हें हरी फसल चाहिए कोई भी, तो हरी फसल सॉफ्ट होती है, उसको खाने में उन्हें आसानी होती है। तो एक तना छेदक है, उसके लिए उत्तम प्योटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रस चूसने वाले जो कीड़े जैसे चैपा तेला, वैसे आमतौर पर ज्यादा नहीं देखा जाता मक्का में, लेकिन अगर वो वहां पर आ गया है तो उसको अपना जीवन काल पूरा करना है तो कहीं ना कहीं जाके वो अपना कुछ भोजन ढूंढता ही है। तो रस चूसक है जैसे कि चैपा तेला है, आईमैक्स उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। सफेद लट है तो उसके लिए भी आप कोई इस तरह की दवा ले सकते हैं। स्टेमो है 8 किलोग्राम है, उसको भी आप 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ कीड़ों के बारे में जानकारी रहेगी। कीड़े को होता क्या है, इस समय पे जो आपका भुट्टा लग रहा है उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या अगर पौधे के अंदर जो आ गए तो वो पूरे उसको पौधे को खराब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसमें आप अपनी निगाह रखिए, अगर कीड़े हैं तो स्प्रे करिए, और अगर कीड़े नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और जहां तक रोगों की बात है तो एक लीफ ब्लाइट रोग होता है, एक रतुआ रोग होता है, एक चारकोल रोग होता है। इसके लिए फफूंदनाशी आप सीधा सा ले लीजिए, एक फफूंदनाशी मैंजिम है या VM-45 है, जिनकी 400 ग्राम जो मात्रा है 200 लीटर पानी में घोले और स्प्रे करें। अब घोल के स्प्रे करने वाली जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मक्का की फसल इतनी बड़ी होगी कैसे स्प्रे करें। तो उसके लिए साथियों मैं यही कहूंगा कि आजकल स्प्रे के बहुत अलग अलग औजार आ रहे हैं, मतलब जो है आपके तेल से भी चलते हैं, बैटरी से भी चलते हैं, काफी दूर तक उनकी मार
1: अच्छा।
2: होती है। तो जैसे मक्का के खेत में रखाने के लिए कहीं कहीं मचान होते हैं, उनके खड़े होकर उनके ऊपर खड़े होकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयोग करें तो आपको लाभ मिलेगा।
1: मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और धान, ये तो बड़े खेतों की बातें हो गई जहां पर किसानों ने फसल लगाई है, वो लोग कैसे देखभाल करें उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। लेकिन जब बात सब्जियों की आती है तो कुछ बड़े किसान भी होते हैं, कुछ घरों में किचन गार्डन
2: जी
1: लगाने
2: जी
1: वाले लोग भी होते हैं जो छोटी छोटी जगहों पर सब्जियां लगाते हैं।
2: जी
1: तो जिन लोगों ने भी किसी भी तरह की सब्जी इन दिनों लगाई है सितंबर
2: जी
1: महीने के हिसाब से, तो उनकी फसल की देखभाल कैसे की जाए, अब हम आपसे अंत में ये
2: हाँ,
1: जानना चाहेंगे।
2: सब्जियों में अगर हम देखें तो इस समय पर दो स्थितियां हैं। एक तो क्या है, जो हमने पहले लगाई थी उस समय फल मिल गए। दूसरी यह है कि हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, उसकी पौध लगा रहे हैं, या कहीं कहीं पौध तैयार हो गई तो हम खेतों में उसका रोपण कर रहे हैं, या अपने छोटा सा कोई बगीचा है उसमें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय पर जैसा कि अन्य फसलों में कीड़े बहुत आते हैं, कीड़ों की रोकथाम के लिए आप जरूर प्रयास करें। और उसका यह है कि अगर बहुत छोटा रकबा है, जैसे कहीं पर आप अपने मकान नहीं लगा रहे हैं जो कि आप अपने इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तेज स्प्रे का अगर पानी भी कर देंगे तो कीड़े नीचे गिर जाते हैं। अगर कोई खेत है तो उसमें कीटनाशक जो दवा है, लेकिन कीटनाशक में आजकल अलग अलग श्रेणियां आती है। कुछ कीटनाशक होते हैं जिन पर लाल रंग होता है, और कुछ होते हैं जिसमें पीला होता है, कुछ होते हैं जिसमें हरा होता है। तो कोशिश करें हरा या ज्यादा से ज्यादा पीला, क्योंकि सब्जियों को हम हरी अवस्था में ही प्रयोग करते हैं, तो कीटनाशक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो ऐसा हम अपनी ओर से प्रयास करें। उसमें कीटनाशक जो है या तो हरे वाला हम ले लें या पीले वाला, ज्यादा से ज्यादा हरे वाला मिल रहा है तो वो हमारे लिए ज्यादा ठीक है, या तो हम उसका उपयोग करेंगे या कोई ना कोई और उसका उपयोग करेगा। और कभी कभी शायद पुराने समय में लोगों ने देखा होगा, और हमने तो देखा है कि राख जो होती थी, राख को जो पौधे ऊपर जो डाल दिया करते थे, उससे कीड़े उसको खाते नहीं थे, क्योंकि राख अगर उसको खाएंगे तो राख भी उसके मुंह में जाती थी और वो उससे हट जाता था। तो और उसमें पोटाश की भी मात्रा होती है, पौधे को पोषण भी कभी कभी मिल जाता है। तो
1: उसका उपयोग करना चाहिए।
2: हाँ, उसका किया जा सकता है, उसका कुछ अनुभव भी लिया जा सकता है। पहले लोग करते थे उसको, पहले कोई कीटनाशक नहीं थे, लेकिन फिर भी सब्जियां होती थी और भरपूर मात्रा में होती थी। इस समय पर तोरई, लौकी, टिंडा, ऐसी ऐसी सब्जियां, और जो आपका करेला, इतनी अत्यधिक मात्रा में होती थी कि आराम से लोग खाते थे, सस्ती भी बहुत हो जाती। तो आम जन भी जिनके यहाँ वो उपलब्ध नहीं है वो भी उसका प्रयोग कर लेते थे। तो ये तो अभी खड़ी फसलों के बारे में हुआ। बाकी जो पौधे हैं, जो पौध आप लगा रहे हैं, अगर पौध की तैयारी कर रहे हैं तो उसका थोड़ा आसपास का पर्यावरण सुरक्षित रखिए, जिससे कि कीड़े वगैरह उस पर वहां ज्यादा असर न करें। शुरुआत में ये इस तरह की सुरक्षा रखें, जैसे कि होता है ना कि कोई चीज हम रख रहे हैं तो उसकी बाड़ बना देते हैं, लाइक दैट, उस तरह से हम उसको करें। और पौध आजकल तो जो थैली में भी तैयार हो जाती है, उसकी प्लास्टिक की थैली होती है, मिट्टी होती है, बीज लगा देते हैं, तो जब तक वो आपकी जो 25-1 दिन की होती है तब तक हम उसको सुरक्षित रखते हैं, और फिर जब समय आ जाता है तो हम खेत को उसकी रोपाई कर देते हैं। मेरा अनुरोध ये है कि जो अन्य फसलें उनके साथ साथ सब्जियों की अवश्य लगाएं, थोड़ी लगाएं खेत के आसपास, अगर आपको बेचना नहीं है तो भी आप लगाएं, होगी तो आप अपने इस्तेमाल में जो कर सकते हैं, ज्यादा होगी तो आप अपने आस पड़ोस में भी दे सकते हैं, आपके अभी नाते रिश्तेदार आए उसको दे सकते
1: जी
2: हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
2: अच्छा लगता है आदमी को कि हम वहां गए थे और वहां से ये
1: उनको ताजी सब्जियां मिली,
2: ताजी सब्जियां मिली।
1: तो चलिए, बहुत सारी बहुत अच्छी जानकारी हमको आज के इस खेती किसानी कार्यक्रम में डॉक्टर AK सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंबल फर्टिलाइजर्स के हैं, जो है इन्होंने हमको दी, और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सितंबर माह की फसलों की देखभाल के बारे में इस जानकारी के साथ। और आप सभी श्रोताओं से अब हम विदा चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से, और फिर आते हैं हम अगले अंक के साथ कुछ और जानकारियां लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।

EMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा

0: एनएम या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: यूविन का नाम तो सुना है पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
0: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल इंटरनेट ओटीपी ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए छाटने के लिए नहीं।
2: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
0: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
2: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है, तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी एएनएम बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
0: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
2: और यही एक भी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के लिए।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
2: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
0: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
2: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें?
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
0: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
0: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
2: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते हैं।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
0: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
0: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता, कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए, कहना अधिकार है।
2: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
0: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
2: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
0: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
2: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो यू विन पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
0: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
2: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है, लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
0: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपने पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली, ये उपदेश नई अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जाँच के बारे में पूछे, वे हमेशा कहती हैं हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
0: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
2: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
0: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें, डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
2: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ करी, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो यूविन पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
0: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है, क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से तो फर्क साफ दिखेगा।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
2: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
0: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
2: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
2: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाल जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
4: हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं सोच बदलो, जो कि अक्सर आप आनंद को और प्राची को ही सुनते थे, लेकिन आज रीना, खुशी और प्राची भी आप सभी के साथ है। हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सोच बदलो शो में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोच बदलो, और आज का सवाल है क्या आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या फिर उन बचपन बदल गया है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले, यानी कि देखिए अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो हमारा बचपन था और आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है। उनको अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई, इनको साफ करो जल्दी जल्दी, कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी अरे और खेलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची मैं तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी।
5: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे मिस कर रहे हैं। पेड़ों पर चढ़ना, और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में, और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि इसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी हमारी मम्मी कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें, नेचर के साथ जो हमारा लगाव था वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया और भी बहुत सारी ऐसी पैंडमिक होती ही रहती है। अब तो एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और नेचर से बच्चों का ही नहीं, हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय है। खुशी आपको क्या लगता है?
6: थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया। एंड आज के बच्चे, उनके पास तकनीक है, जानकारियां हैं, लेकिन क्या कहीं बचपन की वो सादगी, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है? दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी लाइक सोशल मीडिया, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए, हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं। लेकिन पहले के टाइम में प्राची, हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें, तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे, सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना, एक्टिविटीज। बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम

0: प्राची से भी जानते हैं। प्राची आप क्या कहना चाहिए?
1: बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बस आजकल फोन चाहिए, और फोन ने जो उनके अंदर एक चीज उनके अंदर ये इवॉल्व हो गई है नई कि उन्हें हर चीज एकदम चाहिए एकदम क्विकली। उनके अंदर वेट और पेशेंस जैसी चीजें बहुत कम हो रही है। आप देख सकते हो जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जब से आ गई है, होम डिलीवरी सर्विसेज, तो बच्चों को क्या है कि अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अभी 2 मिनट में पिज्जा चाहिए, मुझे 2 मिनट में ये सामान चाहिए, ये ब्रिंकेट से। तो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया है, इवन यंगस्टर्स में भी। और ये वो चीज है लाइफ में पेशेंस, जो एक हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं, और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकल्केट करने की जरूरत है।
2: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे, लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे। और पता है, जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे, तो उससे खेलते थे, और उसमें ना एक अपनापन होता था। हम जैसे सारे बच्चे, मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे, और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए।
1: आजकल तो आपको पता है, बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं, कुछ नहीं पता है हमें। बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हमको।
2: तो क्या होता था, वो सूखने के बाद ना हम उस पर कलर करते थे बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
1: चीजें हमें इतनी अच्छी लगती थी।
2: और हम बच्चे खुद का मतलब, अब क्या है, इतना उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है पहली बात तो। और फिर हम पहले मतलब खुद का घर बनाते, ये इसका घर है, वो उसका घर है, फिर हम सब छोटी मोटी कीर्तन करते थे।
0: मैं कहना चाहती हूँ रीना, जैसे प्राची भी बता रही थी कि पहले हम ईंट से हम घर बनाया करते थे, और उस पर हम फिर हम उसे सजाया करते थे पत्तों से एंड फूलों से, तो कितना वो हैप्पीनेस वाला टाइम था ना। आगे आप प्राची क्या कहना चाहते हो,
2: तुम बताओ पहले, तुम क्या बचपन में कैसे खेलती थी? मैं तो सच बताऊं, मिट्टी के बर्तन बना के गली मोहल्ले में हम सब बहुत खेलते थे, और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं, दिवाली वगैरह, तो हम वैसे बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के मिठाइयां बनाते थे, फिर उनको बांटते थे, घर घर में जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली, हैप्पी दिवाली, मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे।
0: अमेजिंग टाइम था। आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं।
2: हाँ, और जो साइकिल की जो टायर होती थी ना, उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी।
0: हाँ, वो
2: हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा।
0: चलाया प्राची ऐसा वाला?
2: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम। आजकल के बच्चों की हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
0: नहीं बढ़ती, और प्रॉब्लम्स कितनी है, छोटे-छोटे बच्चों के अंदर नई नई बीमारियां आ रही हैं।
2: वो एक्टिविटी नहीं करते ना, एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेकर जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं। अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी। मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं।
1: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया है। तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरमेंट, चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं। अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं, पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी अब अब ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं, तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम बिताए,
0: जुड़े नेचर से जुड़े।
3: दोस्तों, एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं।

दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ना उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, ना ही पेड़ों की ठंडी छाँव का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज उस समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें, उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपनी प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, ग्रीन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं सिखाती बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और जीवन का असली संतुलन भी सिखाती है। याद रखिए श्रोताओं, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से जितना बाहर निकालोगे, वे प्रकृति की दुनिया से उतने ही जुड़ेंगे। और जो बच्चा प्रकृति के करीब होता है, वही मानसिक रूप से अधिक खुश, स्वस्थ और रचनात्मक बनता है। तो दोस्तों, अभी हम आपसे करेंगे और भी बातें, आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी हम मिलते हैं आपको कुछ और म्यूजिकल

0: हाँ जी, वेलकम बैक है। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। और देखिए, जैसे कि खुशी ने बताया है कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, फोन से दूर रखिए। जितना आप उनको प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, उतनी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो और भी सुखमय रहेगी और प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेगी। सोचिए, अब क्या है, बच्चों को ना सुबह सुबह उठते ही उनको फोन पकड़ा देते, या फिर बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि हमें फोन चाहिए, हमें गेम खेलना है। अगर वो खाना भी खाते तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून देखकर ही खाना खाते। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पूरी फैमिली वाली एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कब टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब हर किसी के पास फोन है, अलग बैठा है, कोई इधर कोने में बैठा है, और टाइम का तो मतलब पता ही नहीं चलता। इसीलिए आजकल के बच्चों को भी चश्मे बहुत जल्दी जड़ रहे हैं। एक तो खान पीन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, सो चश्मे भी चढ़ने शुरू हो गए। क्योंकि स्क्रीन जो टाइम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो पढ़ रहा है। जब वो खेलेगा तभी तो उसका माइंड है वो रिफ्रेश होगा, फिर वो कुछ नई चीजों को सोचेगा। और प्रकृति के बारे में अगर उनको कनेक्ट करते हैं तो वो हर चीज के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चों से पूछ लो कि ये किस चीज का पौधा है तो वो बता नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ये तोरी का बेल है या फिर किसी और फल का पेड़ है, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके पेड़ों के बारे में नॉलेज बढ़ाए, उनको बताए किस चीज का पेड़ है, ताकि उनको भी पता रहे। अदरवाइज आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता। खुशी,
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बच्चे आजकल प्रकृति में समय कहाँ बिता, उनको क्या पता, बस उनको सोशल मीडिया से मतलब होता है एंड कार्टून से मतलब होता है कि कौन सा कार्टून कब आने वाला है, कौन सा गेम है। एक्चुअली इस तरह के गेम्स आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि बच्चे जब गेम्स खेलते हैं ना तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमें खाना खाना है या नहीं खाना है। जैसे
0: कोई आवाज लगा रहा है कोई आवाज नहीं लगा रहा, बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जाते हैं।
1: हाँ, तो बस यही है, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में कि अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा बाहर लेकर जाएं, प्रकृति से कनेक्ट करें, उनको पार्क में लेकर जाएं इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, उनके साथ आप भी समय बिताएं। एंड जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घुलता मिलता है, बातचीत करता है, तो उनका मानसिक संतुलन भी स्ट्रांग होता है, वो हैप्पी फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है, हमें समझता है।
0: और दूसरी बात ये कि बच्चों को जब तक वो 12th पास आउट ना कर ले आप उनको फोन मत दीजिए। एक बार आपने उनको फोन की लत लगा दी तो फिर आप उनसे छुटा नहीं सकते हैं। इसीलिए 12th के बाद फोन दीजिए, क्योंकि पहले के बच्चे भी तो हम सब ने भी तो पढ़े हैं। यानी कि हम सच बताऊं, मुझे भी जब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में जाने के बाद मुझे फोन मिला, ये देखो तुम।
1: अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन किया है तब मुझे मोबाइल मिला है,
0: तो हमने भी तो पढ़े हैं बिना फोन के, बिना ना, हमें भी तो नॉलेज है।
1: और वो विदाउट फोन वाली दुनिया बहुत खूबसूरत है,
0: बहुत। एक तो सच बताऊं, मैं अभी भी जैसे फोन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ तो आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है,
1: सुकून मिलता है।
0: और जब भी मैं फोन चलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से पेन शुरू हो जाता है।
1: हाँ, इसीलिए
0: तो इसीलिए श्रोताओं, बच्चों को फोन मत दीजिए और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अभी हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे।
1: आज से एक छोटी सी शुरुआत करें और अपने बच्चों को फिर से पेड़ों, फूलों, तितलियों और खुले आसमान के करीब लेकर जाएं। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं सोच बदलो। सोच बदलिए, क्योंकि छोटी सी सोच का बदलाव ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01। श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060002430।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ खुशी और मेरे साथ
3: आरजे रीना,
2: जो कि ले रही थी अभी उबासी। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कहते हैं आपके अपने फेवरेट कार्यक्रम में, जिसमें बात होती है एक से बढ़कर एक। और आज हम बात करने वाले हैं उस लड़की की, जिसने छोटे शहर से निकलकर क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। नाम है हरमनप्रीत कौर। 8 मार्च 1989 को पंजाब के मोंगा में जन्मी हरमनप्रीत के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि बचपन का सपना था। उनके पिता हरमिंदर सिंह भुल्लर खुद खिलाड़ी थे और उन्होंने बेटी को क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। सोचिए उस समय जब लड़कियों के लिए क्रिकेट खेलना आज जितना सामान्य नहीं था, तब एक पिता अपनी बेटी को मैदान तक लेकर गए। यही समर्थन आगे चलकर हरमनप्रीत की ताकत बन गया। एक छोटी शहर की लड़की ने सिर्फ ऐसा खेल दिखाया कि पूरा देश उसका नाम याद रखने लगा।
3: और अब बात करते हैं जब लड़कों के साथ खेलती थी। हरमनप्रीत कौर की कहानी में एक बात बहुत खास है। उन्होंने शुरुआत में क्रिकेट सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं खेला, बल्कि छोटे शहर के माहौल और सोच की परवाह किए बिना वह लड़कों के साथ भी क्रिकेट खेलती थी। यानी मैदान पर उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि सामने लड़का है या लड़की, मायने रखता था तो सिर्फ खेल। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। आज हम महिला क्रिकेट को बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, लेकिन उस दौर में रास्ता इतना आसान नहीं था। हरमनप्रीत ने सिर्फ गेंद और बल्ले से मुकाबला नहीं किया, उन्होंने उन सोच से भी मुकाबला किया जो कहती थी कि क्रिकेट लड़कियों का खेल नहीं है। और शायद इसी वजह से उनकी कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, सोच बदलने की कहानी भी है। जो लड़कियों को अक्सर ये उस टाइम तो बहुत मुश्किल था, घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे, तब इन्होंने संघर्ष किया।
2: और किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो उस पर सबसे पहले विश्वास करता है। हरमनप्रीत कौर की जिंदगी में वह इंसान उनके पिता थे। उनके पिता खुद खिलाड़ी रहे और उन्होंने बेटी के क्रिकेट के सपने को समझा। जब बाकी लोग शायद ये सोचते होंगे कि लड़कियां हैं, पढ़ाई करो, घर संभालो, तब उनके पिताजी ने मैदान की तरफ रास्ता दिखाया। यही छोटी सी बात बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि प्रतिभा हर किसी के अंदर हो सकती है, लेकिन उसे पहचान कर आगे बढ़ने वाला कोई मिल जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। हरमनप्रीत का सफर हमें ये बताता है कि कभी कभी बच्चों को सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है और उस मौके के पीछे परिवार का भरोसा सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
3: अब कहानी पहुंचती है उस दिन पर जिसका सपना हर क्रिकेटर देखता है। इंडिया की जर्सी साल 1909 में और उम्र थी करीब 20 साल। हरमनप्रीत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत के साथ उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन दिया। सोचिए, जिस लड़की ने कभी छोटे शहर के मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था, वही अब देश के लिए खेल रही थी। इंडिया की जर्सी पहनना सिर्फ एक मैच नहीं होता, उसके पीछे वर्षों की मेहनत, परिवार का भरोसा और खुद पर विश्वास होता है। हरमनप्रीत के लिए भी यही एक शुरुआत थी, लेकिन आने वाले वर्षों में यही शुरुआत भारतीय महिला क्रिकेट के कई बड़े पलों की गवाह बनने वाली थी।
2: हरमनप्रीत कौर को जब आप मैदान पर देखते हैं तो बल्ला जरूर नजर आता है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं रही, वह ऑलराउंडर के रूप में भी भारतीय टीम का हिस्सा रही है। यानी जरूरत पड़े तो बल्ले से रन, जरूरत पड़ी तो गेंद से योगदान। क्रिकेट में ऑलराउंडर होना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको दो अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए लगातार तैयार रहना पड़ता है। हरमनप्रीत ने अपने करियर में यही बहुमुखी प्रतिभा दिखाई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी बल्लेबाजी, खासकर बड़े मुकाबलों में बड़े शॉट लगाने की क्षमता। और फिर आया साल 2017, जब उनका बल्ला ऐसा चला कि क्रिकेट की दुनिया ने उस पारी को लंबे समय तक याद रखा। अब बात करते हैं हरमनप्रीत कौर के करियर की उस पारी पर जिसने उनका नाम दुनिया के सामने और बड़ा कर दिया। 2017 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में सामने थी ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम, और हरमनप्रीत ने खेली नाबाद 171 रन की तूफानी पारी, वो भी सिर्फ 115 गेंदों पर। छक्की चौकी लग रहे थे और सामने वाली टीम के गेंदबाज परेशान थे। ये सिर्फ रन बनाने वाली पारी नहीं थी, ये ऐसा प्रदर्शन था जिसने लोगों को महिला क्रिकेट को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। उस दिन हरमनप्रीत ने बता दिया कि जब बल्ला आत्मविश्वास के साथ चलता है ना, तो सामने कौन है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
3: कभी कभी एक खिलाड़ी की एक पारी सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं बदलती, पूरा माहौल बदल देती है। हरमनप्रीत कौर की 2017 की 171 रन वाली पारी भी कुछ ऐसी ही थी। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेला जा रहा था और हरमनप्रीत ने अकेले मोर्चा संभालते हुए नाबाद 171 रन बना डाले। इस पारी के बाद खुद हरमनप्रीत ने माना कि इसके बाद उनके लिए और महिला क्रिकेट के लिए बहुत कुछ बदलना है। लोगों ने महिला क्रिकेट को ज्यादा गंभीरता से देखना शुरू किया, खिलाड़ियों की चर्चा बढ़ी और हरमनप्रीत एक स्टार बन गई। यही तो खेल की खूबसूरती है, एक सही समय पर खेली गई पारी कई लोगों के सपनों को रास्ता दिखाती है। हर कहानी में सिर्फ जीत नहीं होती, कुछ हार भी होते हैं जो इंसान को मजबूत बनाती हैं। 2017 का विश्व कप हरमनप्रीत कौर और भारतीय टीम के लिए कुछ ऐसा ही था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार सेमीफाइनल जीतने के बाद भारत फाइनल में पहुंचा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ खिताब से चूक गया। इतनी बड़ी उम्मीद के बाद हार का दर्द आसान नहीं होता, लेकिन शायद यही हार आगे की जीत की नींव बनी, क्योंकि 2025 में जब भारत ने आखिरकार महिला विश्व कप जीता। कभी कभी मंजिल देर से मिलती है, लेकिन रास्ते की मुश्किलें उसी मंजिल की कीमत समझाती हैं।
2: क्रिकेट खेलना एक बात है और पूरी टीम की जिम्मेदारी संभालना दूसरी। हरमनप्रीत कौर ने धीरे धीरे खिलाड़ी से लीडर बनने का सफर तय किया। उन्होंने भारतीय महिला टीम की कप्तानी संभाली और आगे चलकर तीनों फॉर्मेट में टीम का नेतृत्व किया। कप्तान को सिर्फ खुद रन नहीं बनाने होते हैं, उसे पूरी टीम का मनोबल भी संभालना पड़ता है। कौन सा गेंदबाज कब आएगा, कौन बल्लेबाज किस स्थिति में खेलेगा और दबाव के समय टीम को कैसे शांत रखना है, ये सब कप्तान के फैसले होते हैं। हरमनप्रीत के करियर में कप्तानी के साथ दबाव भी आया, आलोचना भी आई और बड़ी जिम्मेदारी भी, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक टीम की कमान संभाल कर रखी।
3: मैदान पर जब बाकी खिलाड़ी आपकी तरफ देखते हैं और जवाब चाहते हैं, तब कप्तान होना कितना मुश्किल होता होगा। हरमनप्रीत कौर ने वर्षों तक यही जिम्मेदारी निभाई। एक खिलाड़ी के तौर पर आप अपनी पारी पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन कप्तान के तौर पर आपको पूरी टीम के बारे में सोचना पड़ जाता है। जीत मिली तो तारीफ सिर्फ कप्तान की नहीं होती, पूरी टीम की होती है, लेकिन हार हो तो सवाल कप्तान से भी पूछे जाते हैं। हरमनप्रीत के सफर में दोनों चीज आई, फिर भी उन्होंने टीम की कमान संभाली और बड़े टूर्नामेंटों में भारत का नेतृत्व किया। यही लंबे करियर की खासियत है, हर मैच जीतना नहीं है बल्कि हर उतार चढ़ाव के बाद सिर्फ मैदान पर उतरना ही काफी है। और श्रोताओं देखिए, बातों के साथ साथ हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। एक बहुत शानदार गाने के बाद लौट कर आते हैं।

0: हरमनप्रीत कौर के रिकॉर्ड्स की बात हो और उनका T20 शतक याद ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। साल 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 103 रन की शानदार पारी खेली। खास बात यह थी कि वह भारत की महिला क्रिकेट टीम की पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाया। T20 क्रिकेट यानी कम गेंदों में ज्यादा रन और हर गेंद पर तेजी की जरूरत, ऐसे फॉर्मेट में शतक लगाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और हरमनप्रीत ने उस दिन सिर्फ शतक नहीं बनाया बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम सबसे ऊपर लिख दिया। दोस्तों, हरमनप्रीत कौर की करियर का एक बड़ा मोड़ आया 2016 में। वह विदेशी T20 फ्रेंचाइजी में शाइन होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी। ICC के रिकॉर्ड के अनुसार सिडनी थिंडर ने उन्हें 2016 से 2017 सीजन के लिए शाइन किया गया था। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि हरमनप्रीत विदेशों में क्रिकेट खेल रही थी, इसका मतलब था कि भारतीय महिला क्रिकेट की प्रतिभा को दुनिया की बड़ी लीग भी पहचानने लगी थी। आज महिला क्रिकेट में विदेशी लीग खेलना ज्यादा सामान्य दिखाई देता है, लेकिन शुरुआत के दौर में हरमनप्रीत जैसी खिलाड़ियों ने ये रास्ता खोला। मैदान बदल गया, देश बदल गया, लेकिन उनका खेल और आत्मविश्वास वही रहा।
1: अब आता है WPL और मुंबई इंडियंस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ हरमनप्रीत कौर ने घरेलू महिला T20 क्रिकेट में भी अपनी पहचान बनाई। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में वह मुंबई इंडियंस की कप्तानी बनी। कप्तानी का मतलब यह भी वही टीम को संभालना, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाना और दबाव में सही फैसले लेना। मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत को अपनी पहली बड़ी पसंद बनाया और उन्होंने कप्तानी की जिम्मेदारी दी। ICC ने भी उन्हें मुंबई इंडियंस की कप्तानी के रूप में दर्ज करता है। यानी भारत की राष्ट्रीय टीम हो या फ्रेंचाइजी क्रिकेट, हरमनप्रीत का नाम लीडरशिप के साथ जोड़ा गया था। उसके बाद आया जब किसी लड़की की मेहनत और प्रदर्शन को देश सम्मान देता है तो वह पल बेहद खास होता है। हरमनप्रीत कौर को 2017 में क्रिकेट के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यही वो साल था जब उन्होंने विश्व कप में 171 रन की ऐतिहासिक पारी भी खेली थी। यानी एक ही दौर में उनका क्रिकेट करियर की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था और देश भी उनके योगदान को पहचान रहा था। पुरस्कार सिर्फ एक ट्रॉफी या मेडल नहीं होता, उसके पीछे वर्षों की मेहनत छिपी होती है। हरमनप्रीत के लिए अर्जुन अवार्ड भी उतनी ही मेहनत की एक बड़ी पहचान।

0: पहचान थी।
1: कल्पना कीजिए, कोई खिलाड़ी अपनी करियर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 महिला वनडे विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करे। हरमनप्रीत कौर 2025 5 विश्व कप में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ियों में शामिल थी। इसका मतलब है लगातार कई साल तक फिटनेस बनाए रखना, टीम में अपनी जगह बनाए रखना और हर नए विश्व कप में नई उम्मीद के साथ उतरना। और खास बात ये कि पहले के अनुभवों में हार भी थी, फाइनल का दर्द भी था, लेकिन 2025 में वही अनुभव काम आया। इसीलिए हरमनप्रीत की विश्व कप की कहानी सिर्फ 2025 की जीत नहीं, बल्कि वर्षों की कोशिश, इंतजार और अनुभव की कहानी है। अब बात करते हैं 2025 में महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा सपना भारत में पूरा हुआ। हरमनप्रीत कौर पहली बार वनडे विश्व कप में भारत की कप्तान के रूप में उतरी। सोचिए, जिस खिलाड़ी ने 2009 में भारत के लिए अपना पहला विश्व कप खेला था, वही कई साल बाद अपने देश में कप्तान बनकर विश्व कप ट्रॉफी के लिए लड़ रही थी। बीच में कितने मैच आए, कितनी जीत हार आई, कितनी निराशाएं आई, लेकिन सपना वही रहा। घर में होने वाला विश्व कप इसलिए भी खास था क्योंकि मैदान के बाहर करोड़ों भारतीयों की उम्मीद थी और मैदान पर एक अनुभवी कप्तानी। इस बार कहानी अधूरी नहीं रहनी थी।
0: 2 नवंबर 2025 भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाने वाला दिन। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता और इस ऐतिहासिक टीम की कप्तानी थी हरमनप्रीत कौर। वर्षों से जिस ट्रॉफी का सपना भारतीय महिला टीम देख रही थी, आखिर वह ट्रॉफी भारत के हाथ में थी। हरमनप्रीत के लिए यह जीत और भी खास थी क्योंकि वह 2009 से विश्व कप का खिताब देख रही थी। एक सपना, फाइनल की हार का दर्द और अब उसी करियर में विश्व चैंपियन बनने की खुशी। यही तो खेल है, कहानी बदलने में एक जीत कभी कभी पूरी जिंदगी लगा देती है। अब आता है वो दौर, फाइनल का आखिरी मैच। 2025 विश्व कप फाइनल का आखिरी पल याद कीजिए। दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य का पीछा कर रही थी और भारत को बस एक विकेट की जरूरत थी। गेंद हवा में गई और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दौड़कर कैच पकड़ लिया। उसी कैच के साथ भारत विश्व चैंपियन बन गया और उसके बाद आईसीसी के अनुसार आखिरी विकेट नदीम दे क्लर्क का था और कैच हरमनप्रीत ने पकड़ा, जो कि नदीम दे क्लर्क की साउथ क्रिकेटर है ये। और कितना खूबसूरत संयोग था ना, जिस कप्तान ने वर्षों तक विश्व कप जीतने का सपना देखा, उसी की हाथों में ट्रॉफी पहुंचने वाला आखिरी कैच भी आया। कभी कभी क्रिकेट में एक गेंद पूरी कहानी का आखिरी शब्द लिख देती है।
1: अब बात करते हैं 2017 से 2025 तक का इंतजार। दोस्तों, 2017 में भारत विश्व कप के फाइनल तक पहुंचा था लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाया। फिर आया 2025 और भारत ने आखिरकार विश्व कप उठा ही लिया। इन दोनों पड़ाव के बीच 8 साल का लंबा अंतरा था। हरमनप्रीत उन दोनों कहानियों का हिस्सा थी। 2017 में उन्होंने 171 रन की पारी से भारत को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन फाइनल की हार सामने थी। 2025 में वही हरमनप्रीत कप्तान थी और इस बार भारत के हाथ में ट्रॉफी थी। आईसीसी ने भी 2025 की जीत को उनके लिए लंबे इंतजार के बाद मिली सफलता बताया। यही वजह है कि यह जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट की जीत नहीं थी, ये पुराने दर्द का जवाब भी था। तो दोस्तों देखिए, हमारी ये खूबसूरत सी स्टोरी तो चलती रहेगी, लेकिन बीच में एक म्यूजिकल ब्रेक भी लेना बहुत जरूरी है ना। जैसे दाल में देसी घी का तड़का लगाए बिना दाल अधूरी रहती है ना, वैसे ही हमारे शो में एक म्यूजिक का तड़का लगाना भी बहुत जरूरी है। तो बस लौटकर आप ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने सुना ये अमेजिंग बैक। अब बात करते हैं, हर खिलाड़ी के लिए विश्व कप जीतना बड़ी बात है, लेकिन जब वही पल आपके मम्मा पापा आपकी आंखों के सामने देखते हैं तो खुशी शायद दोगुना हो जाती है। 2025 विश्व कप जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर ने बताया कि उनकी मम्मी और पापा जी वहाँ मौजूद थे और उनके साथ विश्व कप ट्रॉफी उठाने उनके लिए बहुत खास था। याद कीजिए, शुरुआत में पिता ने ही उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया था। बचपन में बीटी का मैदान पर जाना और सालों बाद उस बीटी का देश के लिए विश्व कप ट्रॉफी उठाना, इससे खूबसूरत सफर शायद ही कोई हो सकता है। ये जीत सिर्फ हरमनप्रीत की नहीं, उनके परिवार के उस भरोसे की थी जो बचपन से उनके साथ खड़े रहे।
1: अब आता है नॉकआउट मैच की महारानी। कुछ खिलाड़ी लीग मैच में अच्छा खेलते हैं, लेकिन असली पहचान बड़े मुकाबले में बनती है। हरमनप्रीत कौर के करियर में बड़े मैचों की कई यादगार पारियां हैं। 2017 में सेमीफाइनल में 171 नाबाद रन और 2025 विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में भी उनका योगदान देखने को मिला। 2025 के बाद ICC के रिकॉर्ड के अनुसार हरमनप्रीत कौर महिला वनडे विश्व कप के नॉकआउट चरण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। सेमीफाइनल और फाइनल मिलकर 331 रन, यानी दबाव जितना बड़ा जिम्मेदारी उतनी बड़ी और हरमनप्रीत का नाम उतना ही मजबूत। सिर्फ पावर हिटर नहीं, समझदार खिलाड़ी भी है। हरमनप्रीत कौर को अक्सर बड़े बड़े छक्कों और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए याद किया जाता है, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान सिर्फ ताकत से नहीं होती। सही गेंद का इंतजार करना, परिस्थिति को समझना और टीम के हिसाब से खेलना भी उतना ही जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने लंबे समय तक भारतीय टीम के मध्य क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ICC के प्रोफाइल में भी उनका प्रमुख रोल बल्लेबाजी के रूप में दर्ज है, यानी मैदान पर उनका खेल सिर्फ बल्ला घुमाने का खेल नहीं था, बल्कि परिस्थिति पढ़कर पारी बनाने वाली खिलाड़ी भी रही। उन्होंने यही गुण एक खिलाड़ी को लंबे समय तक टीम में बनाए रखता है।
0: तो दोस्तों, अब बात करते हैं 2009 से 2026 तक लंबा सफर। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत और 2026 तक मैदान पर लगातार मौजूदगी। हरमनप्रीत कौर का अंतर्राष्ट्रीय सफर करीब 17 साल तक चला। ICC के रिकॉर्ड के अनुसार उनका डेब्यू 2009 में हुआ और 2026 तक उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर जारी रहा। इस दौरान क्रिकेट कितना बदल गया, महिला क्रिकेट की लोकप्रियताएं बढ़ी, T20 लीग आई, WPL आया और महिला खिलाड़ियों की पहचान पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। हरमनप्रीत इस बदलाव की यात्रा का हिस्सा रही। एक युवा खिलाड़ी से कप्तान और फिर विश्व कप जेता कप्तान बनने तक ये सफर, ये सिर्फ क्रिकेट करियर नहीं, एक पूरी दौर की कहानी है। और दोस्तों, अब बात करते हैं हरमनप्रीत कौर के करियर में एक ऐसा और बेहद खास रिकॉर्ड 2026 में आया। जून 2026 में वह 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी। ICC ने इसे उनके करियर का ऐतिहासिक मुकाबला बताया। सोचिए, 200 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच, इतने लंबे समय तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने रहना और अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे सिर्फ प्रतिभा नहीं, फिटनेस, अनुशासन, मेहनत और लगातार खुद को बदलते खेल के साथ ढालना भी जरूरी है। हरमनप्रीत का ये रिकॉर्ड बताता है कि उनका करियर सिर्फ कुछ यादगार पारियों तक सीमित नहीं, बल्कि उन्होंने लंबे समय तक क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह बनाए रखी।
1: और अब हरमनप्रीत कौर की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। 6 अक्टूबर 2026 को ICC ने बताया कि हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला टीम की सभी फॉर्मेट की कप्तानी से संन्यास प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सोचिए, इस सफर में उन्होंने क्या क्या देखा। 2009 में इंडिया जर्सी, 2017 की 171 रन की ऐतिहासिक पारी, लंबे समय की कप्तानी, विदेशी लीग पर सफर, 200 T20 आई का रिकॉर्ड और फिर 2025 में भारत को पहली बार विश्व कप जीतने वाली कप्तान बनने का गौरव। कप्तानी आज खत्म हुई है, लेकिन हरमनप्रीत कौर की कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाते, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। और उन्होंने सिर्फ कप्तानी से संन्यास लिया है, मैच से संन्यास नहीं लिया है, वो मैच खेलेंगी लेकिन अब वो चाहती हैं कि जो जिम्मेदारी है वो किसी और को सौंपा जाए, क्योंकि किसी और का भी नंबर आना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि हरमनप्रीत जैसा दिल भैया हर किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मैं कप्तानी एंड तक बनी रहूं, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जिम्मेदारी अब किसी और को सौंपा जाए और मैं भी आम टीम की तरह मैं भी अब मैच खेलूंगी। तो इसी के साथ हम लेते हैं यहां से जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्टे ट्यून रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष और
5: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
4: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको। लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
5: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
4: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
5: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
4: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
6: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
7: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है।
6: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
7: भाई और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
5: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है?
4: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
5: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है

0: पढ़ेंगी बेटियाँ तो आगे बढ़ेंगी बेटियाँ।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नु रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है, गोल्ड मेडल। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
0: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों, जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं, उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
2: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना भी बेटियों और माताओं को मजबूती प्रदान कर रही है।
0: तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और साथ ही साथ उन बेटियों की जिनको कहीं ना कहीं गर्भपात का शिकार होना पड़ता है, जिनका भविष्य गर्भ में ही खत्म हो जाता है। ऐसी बेटियां जो अपना जीवन देख ही नहीं पाती, और अगर देख भी पाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भविष्य में इतनी अड़चने आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है, और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं, और आप एक समाज सेवी के तौर पर भी काम करती रही हैं, और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को, जो बेटियां हैं, उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
2: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था, तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी, बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे तो कहीं कहां तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
0: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
2: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
0: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
2: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम, जिसे कहते हैं, अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
0: बिल्कुल जरूरी है, और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है, ये पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी, बेटी है तो कल है।
0: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारी तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने। तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दें। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
0: बिल्कुल, और याद रखिए जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
2: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को, इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं, और इसीलिए भावना कहते हैं हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
0: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
2: कल है।
0: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद।
5: 9 PM today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat.
3: 22 कैरेट सोना 99% with making charges पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: Underway. Ministry of External Affairs clarifies U.S. suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
7: दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
8: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
7: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में IIT जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
7: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
10: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रूपये से घटकर 8 रूपये से भी कम रह गई है।
11: भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
7: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
12: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
7: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची एच, HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
13: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही हैं। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं, बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने

0: को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 96% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्र, कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इसमें कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
5: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
6: अरे नहीं,
7: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
6: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
5: अच्छा।
7: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
8: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसे हैं आप मेरे प्यारे श्रोताओं? उम्मीद है बारिश की इन खूबसूरत बूंदों के बीच आप भी बिल्कुल मस्त होंगे। बारिश का मौसम है दोस्तों, कहीं खिड़की के पास बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ ली जा रही है, कहीं अदरक वाली चाय के साथ पकौड़ों की प्लेट सज चुकी है, तो कहीं बच्चे बारिश देखकर बस यही सोच रहे हैं आज स्कूल जाना ना पड़े या बस आज तो छुट्टी मिल जाए। लेकिन इस सुहाने मौसम के साथ एक छोटी सी जिम्मेदारी भी आती है अपना ख्याल रखने की, क्योंकि मानसून जितना रोमांटिक लगता है ना, उतना ही थोड़ा सावधान रहने वाला मौसम भी है। कभी अचानक बारिश, कभी जल भराव, कभी उमस और फिर मच्छरों की अपनी अलग ही मेहमान नवाजी होती है। तो आज की महिला मंच में हम बात करेंगे बिल्कुल आपकी और आपके परिवार की। बात होगी बारिश के मौसम में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से थोड़ा परहेज करना चाहिए, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, हमारे घर के सीनियर सिटीजन का कैसे ख्याल रखें और महिलाएं खुद को सबसे आखिर में रखने की आदत को थोड़ा बदल कर अपने लिए भी वक्त कैसे निकालें, क्योंकि अक्सर घर की महिलाएं सबकी चिंता करती हैं, बच्चों ने खाना खाया या नहीं, पति ने छाता लिया या नहीं, सास ससुर ने दवा ली या नहीं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो कहती है अरे मेरा क्या है, मैं तो ठीक हूँ। बस अब महिला मंच में इतना ही कहना है, आप भी इम्पोर्टेंट हैं, आपका स्वास्थ्य भी जरूरी है। और हाँ, मानसून में सिर्फ अपने घर का ही नहीं अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं पानी जमा ना हो, घर के आसपास साफ सफाई रखें और मच्छरों को अपना परमानेंट एड्रेस बनाने का मौका बिल्कुल भी ना दें। और इस बारिश में प्रकृति के लिए भी एक छोटा सा काम कीजिए, अगर जगह है तो एक पौधा जरूर लगाइए, लेकिन सिर्फ फोटो खिंचवाकर छोड़ मत दीजिए, उसे पानी दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए और उसे बड़ा होते हुए देखिए। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खास महिला मंच, क्या और इसमें इंटरेस्टिंग होने वाला है उसे सुनने के लिए आप बने रहिए खुशी के साथ। एंड मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी है, जो कि करने वाले हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें, कुछ मजेदार, बस आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
9: हां जी, की हाल चाल है? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और महिला मंच शो में कनेक्ट हो गए हैं आप सभी के बीच। और मेरा नाम आप सभी को पता ही है कि मैं आरजे रीना हूँ खुशी के साथ। मतलब हम दोनों आज आते हैं महिला मंच शो में आप सभी के लिए कुछ अटपटे चटपटे लेकर, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मानसून के बारे में। मानसून के फुहारे भला किसको अच्छी नहीं लगती, आसमान में बादल, मिट्टी की सौंधी खुशबू, खिड़की से आती ठंडी हवा और बाहर गिरती बारिश, मौसम अपने आप में खूबसूरत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बारिश के इस सुहाने मौसम के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, खासकर अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर। मानसून में मौसम बदलता रहता है, कभी तेज बारिश, कभी उमस और कभी अचानक धूप। ऐसे में हमें अपनी दिनचर्या और खान पान का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आज महिला मंच में हम इसी खूबसूरत मौसम की बात करेंगे, कैसे मौसम का पूरा मजा ले, कैसे मौसम का पूरा मजा ले, लेकिन अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे, क्योंकि खुशहाल परिवार की शुरुआत होती है एक स्वस्थ इंसान से, और अक्सर उस स्वस्थ परिवार की जिम्मेदारी घर की महिला अपने कंधों पर उठाती है। इसीलिए आज सबसे पहले खुद का ख्याल रखना, कैसे हम खुद का ख्याल रख सकते हैं बात करेंगे।
8: हाँ रीना, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। एक्चुअली मैं बात करने वाली हूँ, पता है आपको, साफ और सुरक्षित पानी की, क्योंकि मानसून में ना पानी का बहुत ज्यादा रोल होता है और बारिश के मौसम सबसे जरूरी चीजों में बारिश के मौसम में सबसे जरूरी चीजों में से एक है पानी। पानी जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका साफ और सुरक्षित होना। मानसून में पानी दूषित होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, इसीलिए पीने के पानी को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। कोशिश करें कि घर में साफ फिल्टर किया हुआ पानी या जरूरत के अनुसार उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल हो। बाहर कहीं जा रहे हों तो अपनी पानी की बॉटल साथ रखें। और एक छोटी सी बात, सिर्फ पीने का पानी ही नहीं बल्कि पानी से जुड़े बर्तनों की साफ सफाई भी ध्यान रखें। पानी की बोतल, गिलास और फिल्टर को समय समय पर साफ करना जरूरी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए पानी की स्वच्छता पर ध्यान दें। तो बारिश कितनी भी हो, बादल कितने भी घने हों, पानी के मामले में हमारी सावधानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
9: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि पानी से ही जीवन है, जल है तभी जीवन है, और जल को हम साफ सफाई रखेंगे, बल्कि बहुत से ये कहते हैं कि फिल्टर का पानी जो आरओ का पानी है वो पी नहीं पाते, तो आप अपने घर पानी बॉईल करके रख सकते हैं, वो ठंडा होने के बाद पी सकते हो, तो फिल्टर से भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसी के साथ साथ हम खाने का भी ध्यान रखेंगे, बाहर के खाने से थोड़ी दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। आज बात आती है उस चीज की जिसे देखकर मानसून में दिल कहता है बस आज तो खा ही लेता हूँ, गर्मा गर्म समोसा पकौड़े चाट गोलगप्पे। बारिश और स्ट्रीट फूड की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन दोस्तों इस मौसम में बाहर का खुला और लंबे समय तक रखा हुआ खाना खाने से बचना बेहतर है। खासकर कटा हुआ फल, खुले में रखी चटनी या ऐसी चीजें जिनकी साफ सफाई को लेकर हमें भरोसा ना हो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बारिश में स्वादिष्ट खाना बंद कर दीजिए। घर पर ही गर्मा गर्म पकौड़े बना लीजिए, साथ में अदरक वाली चाय और परिवार के साथ बैठकर बारिश का आनंद लीजिए। स्वाद भी रहेगा और हाइजीन भी। तो अगली बार बारिश देखकर स्ट्रीट फूड खाने का मन करे तो खुद से पूछिए मजा 2 घंटे का है या मौसम पूरे मौसम की। फैसला अब आपके हाथ में है कि आप कैसे मैनेज करते हैं।
5: रीना पकौड़े की बात की है तो यार मेरा भी बहुत मन कर रहा है क्योंकि देखो ना बाहर का मौसम कितना सुहाना है और इस सुहाने से मौसम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकौड़े, आए हाय हाय मुझे तो मतलब मेरा दिन तो बन जाएगा भाई। पर ये पकौड़े हमें खिलाएगा कौन लेकर आएगा ये बताओ आप। आप तो बनाने जाओगी? नहीं मैं भी नहीं जा सकती हूँ।
9: नहीं एक्चुअली मैंने बहुत अवॉइड किया है मतलब तली हुई चीजें खाने को।
5: अच्छा ऑयली
9: मैं हाँ रक्षाबंधन पे भी घर गई थी तो हमारे घर में भैया पकौड़े सकौड़े बनने थे लेकिन मैंने अपने आत्मा के ऊपर कंट्रोल कराया है।
5: दिल को संभाले इन्होंने, दिल संभल जा जरा।
9: और मतलब अब तक के सफर में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मैं घर गई हूँ और घर से आई हूँ बाहर का मैंने कुछ भी नहीं।
5: अरे वाह ये तो बहुत अच्छा काम किया है रीना। इसके लिए हम आपको एक चॉकलेट देते हैं, ये लीजिए।
9: जल्दी दे दो।
5: तो देखिए लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है, ये ट्रैवल करती है एंड इन्होंने कहा है कि इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने इतना लंबा सफर तय किया है मुरादाबाद टू हरियाणा लेकिन मैंने बाहर की एक भी चीज नहीं खाई है, मैं अपने घर से ही बनाकर लेके गई थी अपने लिए फूड।
9: इनफैक्ट मैंने पानी तक नहीं पिया है बाहर का।
5: अरे वाह कमाल कर दिया लड़की ने, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। चलो दोस्तों अब हम करते हैं मानसून का पौष्टिक खान पान। ठीक है बारिश के मौसम में हमारा खान पान थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। घर के खाने में दाल हरी सब्जियां मौसमी फल और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से वॉश करें उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा ऑयली और हैवी खाना रोज रोज खाने से बचें। कोशिश करें कि ताजा और अच्छी तरह पका हुआ खाना ही खाएं। अगर सुबह जल्दी आपको काम पर जाना है तो रात में थोड़ा प्लानिंग कर लें। सुबह का नाश्ता स्किप ना करें, पोहा उपमा दलिया बेसन का चीला या घर का साधारण पौष्टिक नाश्ता लीजिए। और हाँ बारिश के मौसम में पानी पीना कम मत कीजिएगा, कई बार ठंडे मौसम में प्यास कम लगती है लेकिन शरीर को पानी की उतनी ही जरूरत होती है, इसीलिए अपनी वाटर बॉटल को अपने साथ रखना ना भूलिए, उसको अपने साथ हमेशा रखिएगा।
9: एक अपने साथी बनाकर
5: हाँ वो बहुत जरूरी, जैसे हमारी साथी हमारे साथ रहती है, देखो कितनी क्यूट बॉटल है हमारी हमारी तरह। चलो अभी गाना सुन लेते हैं यार, इतनी सारी हमने बारिश की बातें की हैं, बारिश का गाना भी तो हो जाए।
9: अच्छा कौन सा गाना सुनोगी तुम?
5: ओ गाने तो बहुत सारे हैं, एक बारिश का गाना है बहुत ही प्यारा सा, मैं नाचूं आज छम छम छम।
9: ओ चलो अच्छी बात है ये गाना
5: थोड़ा सा
9: अच्छा
5: इस बहाने थोड़ा डांस भी कर लेंगे और हमारे श्रोताओं को भी डांस करने का मौका मिल जाएगा।
9: अरे वो तो ऑलरेडी डांस कर रहे होंगे।
5: नहीं वो डांस करने के लिए तैयारी रहते हैं कि खुशी जी बस एक बार गाना चला दो। तो चलो अभी लौट कर आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के इस पर।

0: श्रोता, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय है कि नाचू मैं आज छम छम छम। देखिए, छम छम नाचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बरसात के मौसम में ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि ईचिंग शुरू हो जाती है। फिर कुछ नहीं पता, हम बाहर जाते हैं तो पानी इकट्ठा तो हो ही जाता है, तो हमें नहीं पता वो पानी कितना साफ है कितना साफ नहीं है। उससे हमें कीटाणु भी लग जाते हैं हमारे अंदर, और फंगल्स फिर शुरू वहीं से होता है। इसीलिए ज्यादा देर तक गीले कपड़े में, गीले जूतों में बिल्कुल ना रहे। कोशिश करें कि आप घर पहुंचते हैं तो जल्दी से जल्दी जो भी आपने पहन रखा है उसको चेंज करें। बारिश में सबसे आम परेशानी होती है गीले कपड़े और गीले जूते। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ी देर तो पहन ही लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसीलिए जैसे ही घर पहुंचे गीले कपड़े बदले और पैरों को अच्छी तरह सुखाए। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी यही आदत अपनानी चाहिए। जूते को भी पूरी तरह सुखा दे। अगर घर में कई लोग बाहर से भी कराते हैं तो एंट्री के पास एक छोटा सा स्पेस रखें, जहां अम्ब्रेला, रेनकोट और वेट वाटर फूड व्यवस्थित तरीके से रखे जा सके। इससे घर भी साफ रहेगा और फर्श पर पानी फैलने से फिसलने का खतरा भी कम रहेगा। ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट
1: है। हाँ यार, कई बार होते हैं ना कि हम जल्दी जल्दी आते हैं गीले कपड़ों में, गीले शूज पहनकर, और फिर हमारा पैर भी स्लिप हो जाता है।
0: और वैसे भी पहले के टाइम में मतलब घरों में इतना फर्श नहीं होता था, मिट्टी का होता था, थोड़ा बहुत सूख भी जाता थोड़ी देर में। लेकिन जब फर्श पे अगर पानी गिर जाए तो एक तो वो दिखता कम है, और उस पे जिसकी पैर पड़ गई भैया वो गिर ही जाता है। तो इसीलिए ये पैर जो था ये पैतरा अपनाना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चों का भी खास ख्याल रखें इस बारिश के मौसम में। बारिश शुरू होते ही ना बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है दोस्तों। पानी देख कर मन करता है

0: है कि बस छपाछप उसमें कूद जाएं, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सुरक्षित रखें। कोशिश करें कि बच्चे गंदे या जमे हुए पानी में ना खेलें। बाहर से घर लौटने के बाद उनके हाथ पैर अच्छी तरह धुलवाएं। गीले कपड़े और जूते ज्यादा देर तक पहने ना रहने। स्कूल जाने वाले बच्चों के बैग में जरूरत के अनुसार एक्स्ट्रा कपड़े या छोटा टॉवल रखना भी उपयोगी हो सकता है। और बच्चों को प्यार से समझाइए कि बारिश का मजा लेना है, लेकिन सेफ्टी के साथ। उन्हें ये भी सिखाइए कि सड़क पर जमा पानी में उतरना या खुले बिजली के तारों के आसपास जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्यों रीना, कई बार छोटे बच्चे इस तरह की गलतियां कर देते हैं ना।
1: खुशी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन सा तार मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। और बारिश के मौसम में वैसे भी चाहे घर में भी कोई प्लग हो, बच्चे बड़े मतलब मासूम होते हैं, उनको नहीं पता, वो बार बार फिंगर भी डालते बोर्ड के अंदर, तो उनसे
0: कभी वो वायर छू रहे हैं, कभी वो स्विच को ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं गीले हाथों से,
1: और उनको नहीं पता होता है। कुछ तारे भी घर में होते हैं जिसको लापरवाही की वजह से हम छोड़ देते हैं
0: जी,
1: तो उसका भी ध्यान रखें। और बच्चे छत पर जाते हैं, छत पर भी बिजली के तारे होती हैं, तो वो भी मतलब मोस्टली ये है कि बच्चों की देखरेख बहुत जरूरी है बरसात के मौसम में। साथ ही साथ बुजुर्गों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: बुजुर्गों का ध्यान बिल्कुल। अब आपने सीनियर सिटीजन की बात ही की है, तो अब बात हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की। बारिश के मौसम में सीनियर सिटीजन का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। फर्श गीले होने पर फिसलने का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए घर का फ्लोर जितना हो सके सूखा रखें। एंड बाथरूम में भी विशेष सावधानी रखें। और अगर घर में बुजुर्ग अकेले चलते हैं तो रास्ते में सामान या पानी जमा ना रहने दें। उनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें ऐसी जगह रखें जहां उन्हें बार बार झुकना या ऊंचाई पर हाथ ना लगाना पड़े। मौसम के अनुसार हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन दें और पानी पीने की याद दिलाते रहें। और सबसे जरूरी, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। कभी उनके पास बैठकर चाय पी लीजिए, पुरानी बातें सुन लीजिए। बुजुर्गों को दवा जितनी जरूरत होती है ना, उतना ही अपनापन भी जरूरी होता है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अच्छा लगता है ना जब हम अपने सीनियर सिटीजन के पास बैठते हैं, उनसे उनकी पुरानी बातें सुनते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिलती है। क्यों रीना, देखो अब आप भी मुझे बता रही थी अपनी दादी जी के बारे में कि मैं जब घर जाती हूँ तो दादी जी के पास ही सोती हूँ।
1: हाँ, ये तो है।
0: और उनकी वो चुलबुली सी बातें, वो बड़ी खूबसूरत सी
1: पता है, मैं बताती हूँ। वहाँ पर ना जीरो नेटवर्क होता है,
0: हाँ,
1: फोन से दूर,
0: हाँ,
1: और उनकी जर्नी, उनकी कहानियाँ सुनना कि हमारे जमाने में ऐसे होता था,
0: और हमें और इंटरेस्ट आता है कि और बताओ ना दादी जी, है ना।
1: हम पूछते रहते हैं, मतलब हमें ना मतलब दिलचस्पी हो जाती है कि हाँ, भाई इस चीज के बारे में जानना है, क्योंकि जो वो चीज हमने नहीं देखी
0: है
1: तो हम उस चीज को बारीकी से सुनना पसंद करते हैं।
0: हाँ, हमें अनुभव मिलता है उन चीजों का कि अच्छा पहले ऐसे भी हुआ करता था। और पहले की लाइफ बहुत सिंपल सिटी थी पहले।
1: हाँ,
0: की लाइफ,
1: अरे अब पता है क्या है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोन।
0: फोन भी है रीना, और आजकल के टाइम में ना लोग दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं।
1: ये बिल्कुल सही कहा
0: है ना, तो इस चीज में ना इंसान की जो रियल खुशी है ना वो भी गायब हो जाती है।
1: और जो इंसान परेशान रहते हैं ना, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के उनसे बात करिए। जब आप उनसे बात करेंगे ना, बात कहाँ से निकलती निकलती भैया कहाँ पहुंच जाएगी पटरी, ना आपको भी नहीं पता चलेगा
0: और टेंशन और दूर हो जाएगी।
1: बिल्कुल माइंड ऐसा होता है यार, रिलैक्स, मतलब एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है।
0: हाँ,
1: ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स कर रहा हूँ। तो आप में से बहुत से ऐसे होंगे कि परेशान भी रहते हैं, डिप्रेस भी रहते हैं, तो ये वाला जो पैतरा है बड़े बुजुर्गों के पास बैठने का, वो जरूर अपनाइए।
0: कभी उनकी गोद
1: फिर देखिएगा, आपको आप खुद अनुभव करिएगा।
0: हाँ,
1: कि मुझे कैसा फील हो रहा है।
0: और कभी उनकी गोद में सर रख कर देखना, जब वो प्यार से आपके बालों को सहलाएंगे, है ना, आपके सर दबाएंगे, तो आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आपको किसी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: हाँ,
1: और देखिए बरसात के मौसम है ना, हमें साफ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ हम अपने घरों में गमले भी बहुत रखते हैं।
0: हाँ, पेड़ पौधे लगाते हैं,
1: तो उनकी इस बरसात के मौसम में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। आपके घर में आप कूलर यूज करते हैं तो उसका पानी कोशिश करें कि डेली चेंज करें। और बरसात के मौसम में मुझे नहीं लगता कि पानी पर एसी चलाना जरूरी है, जब बिना पानी के भी आप चला सकते हैं।
0: चला सकते हैं, एग्जैक्टली राइट। और हाँ रीना, ऐसा भी होता है ना कि मैंने बहुत सारे मतलब ऐसा काफी जगह देखा है कि टेरेस पे छत पर ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन चीजों में क्या होता है ना, पुराना जो कबाड़ होता है उसमें पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, मच्छर पनप पनप जाते हैं।
1: और इस मौसम में ना डेंगू मलेरिया है जा वॉमिटिंग का जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मच्छरों से बचकर रहिए, क्योंकि मच्छरों की जो बारात है ना वो बरसात आते ही शुरू हो जाती है। तो इसमें भैया जितना हो सके आप बच कर रहेंगे उतने आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बारिश के साथ साथ एक और मेहमान घर में आने की कोशिश करता है, जैसे कि मैंने बताई दी आपको मच्छर, और इसे दोस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो आपके पास आते हैं बिनर बिनर करके कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत प्यारा दोस्त हूँ, अगर तुम्हारी मतलब अगर तुम नहीं उठ पाते हो जल्दी तो मैं हूँ ना उठाने के लिए तुम्हें, ये ऐसा वाला दोस्त होता है, लेकिन ये अस्पताल पहुंचा देता है।
0: बाकी दोस्तों होटल लेकर जाते हैं, रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं, पर ये मच्छर है जो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
1: हाँ ये बिल्कुल सही कहा तुमने। घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, कूलर गमले बाल्टी छत और ऐसी जगहों को चेक करते रहे जहाँ बारिश का पानी जमा हो सकता है। अगर घर के किसी कोने में पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटाइए, खिड़की दरवाजे पर जाली का इस्तेमाल करें और सुरक्षित और बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से बचाकर रखें। याद रखिए मच्छरों से बचाव सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि घर के आसपास की साफ सफाई भी जरूरी होता है, इससे आप सुरक्षित रह पाएंगे। अदरवाइज तो भैया आपको पता है ये ऐसा इंजेक्शन लगाकर जाते हैं ना जिसका असर 15 दिन तक रहता है,
0: 15 दिन तक रहता है। और मैं कहना चाहती हूँ
1: धीरे धीरे होता है इसका असर।
0: हाँ, मैं कहना चाहती हूँ जी जब रात को सोते हैं तो उस समय ना फुल स्लीव के कपड़े,
1: हाँ, बाहर निकले मतलब शाम होते फुल स्लीव का कपड़े पहन लीजिए
0: और सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें। एंड
1: घर के बाहर कूड़ा ना इकट्ठा होने दे, क्योंकि भैया आज के टाइम में ना बहुत होता है कि मैं इसके घर के तरफ सफाई नहीं करूंगी, बस इधर उधर झाड़ू लगाया वो उसके कोने में, वो उसके कोने में ऐसे ही इकट्ठा कर देते हैं
0: घर की।
1: तो देखिए आप तो झाड़ू लगा के इधर उधर कर देते हैं लेकिन बीमारियां भी तो आप सभी के पास आती है ना। तो इसीलिए ऐसा ना करे कि ये पड़ोसन है वही साफ करेगी, ये पड़ोसन है वही साफ करेगी, अरे 2 मिनट लगता है आप ही हटा दीजिए इस कूड़े को।
0: हाँ, अब आपने घर की साफ सफाई की बात छेड़ी है तो मैं बता ही देती हूँ कि घर में मानसून में घर की साफ सफाई का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है। नमी ज्यादा होने के कारण कपड़े देर से सूखते हैं और कई जगह डीपनेस हो सकती है, इसीलिए घर को जितना संभव हो वेंटिलेशन रखें। गीले कपड़ों को लंबे समय तक कमरे में ना टांगें, कचरा समय पर बाहर करें और किचन में पानी जमा ना रहने दें। खाना बनाने की जगह साफ सफाई रखें और खाने की चीजों को हमेशा ढककर रखें। अगर कहीं सीलन या फंगस दिखाई दे तो
1: इनफैक्ट फ्रिज में भी जब खाना रखते हैं ना उसको भी ढककर रखना चाहिए।
0: ओके, फ्रिज में ऐसे ही खाना रख देते हैं?
1: हाँ, बहुत रख देते हैं ना यार, यहाँ कौन मच्छर क्या जाएगा, धूल क्या ही जाएगा, ऐसे ही रख देते हैं। तो फ्रिज में कभी भी ऐसे खुली खाना नहीं रखना,
0: चीजें ना रखें,
1: मतलब जो भी आप जिस कटोरी में आप सब्जी रखते हैं चावल रखते हैं उसके ऊपर प्लेटें मतलब ढककर रखें।
0: ओके, कहने का यही है कि कुल मिलाकर उसको खुला ना छोड़ें, ढककर रखें और खाना बनाने की जगह साफ सफाई रखें और खाने की चीजों को ढककर रखें। जैसे रीना जी ने भी कहा ही है दोस्तों, चाहे फ्रिज हो या किचन हो, अगर कहीं सीलन या फंगस दिखाई दें तो उसकी सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर साफ रहेगा तो वातावरण भी बेहतर रहेगा और बारिश का मौसम ज्यादा आराम से एंजॉय किया जा सकेगा। तो चलो दोस्तों, अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं, अब एक छोटा सा एड ब्रेक भी लेते हैं क्योंकि म्यूजिकल ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। कभी लाइफ हो या फिर शो हो, इंटरेस्ट तभी आता है जब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।
1: और गाना मैं ऐसे सुनाने वाली हूँ आपको ना, मतलब बरसात के मौसम में आपने ये वाला गाना नहीं सुना तो मतलब कुछ भी नहीं सुना आपने,
0: मतलब बारिश अधूरी है। हाँ, कहीं ना कहीं
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मौसम का मजा नहीं ले पाएंगे। सही बात है।
0: चलो ठीक है, हम भी सुनते हैं। कौन सा गाना आज रीना जी सुनाने वाली है?
1: बिल्कुल, लेकिन सुनाने से पहले देखिए मौसम, मतलब मुझे लगता है कि इस टाइम बारिश इतनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो खेतों में फसलें हैं धान है उसपे जो दाने हैं ना वो आने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब धान आना स्टार्ट हो गया।
0: अच्छा।
1: खेतों में, हाँ, तो इस टाइम जैसे बारिश होगी तो वो फसल खराब हो जाएगा, क्योंकि हम तो घर में बैठे बैठे के सोच रहे हैं कि भैया मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा वेदर है, लेकिन उस किसान की मेहनत को भी सोचिए जो इतनी मेहनत में भी अपने खेतों में जाता है फसल उगाता है, और बारिश भी ऐसे टाइम पर होती है ना जो फसलों को खराब कर देती है।
0: और इन्हें ऐसा भी होता है कि जहाँ बारिश की नींद नहीं होती ना वहाँ बारिश होती है, और जहाँ बारिश की नीड होती है वहाँ बारिश आती ही नहीं
1: आती है, क्योंकि इस टाइम फसलें भी उगने शुरू हो गए हैं, धान उगना शुरू हो गया है, और जब बारिश ज्यादा रहेगी तो जो फसल है वो एकदम अजीब तरीके से हो जाते हैं जिनसे उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी हम इस गाने के बाद मिलते हैं आप सभी को।

0: श्रोताओं, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है और फिर से मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। देखिए, मॉनसून में सुकून भी जरूरी है। बारिश का मौसम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। कभी लगातार बारिश के कारण घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, रूटीन बदल जाता है। ऐसे में अपने दिन में छोटी छोटी खुशियां शामिल करें, पसंदीदा संगीत सुनिए, किताबें पढ़िए, परिवार के साथ बैठिए या बालकनी में बारिश का आनंद लीजिए। महिलाओं के लिए ये खास तौर पर जरूरी है कि वे सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल वेल बिगनिंग का भी ध्यान रखें। हर दिन कुछ समय ऐसा जरूर रखें जिसमें आपको किसी काम की जल्दबाजी ना हो, बस आप हो और आपकी पसंद की कोई छोटी सी एक्टिविटी, ताकि देखिए आप का भी मन खुश होना चाहिए, क्योंकि बरसात में हर किसी का ध्यान रखते हैं। ऊपर से आप सभी की जो काम है वो दुगना बढ़ जाता है। अभी झाड़ू लगा के निकले थे, अभी पोछा लगाया था, बारिश आ गई तो फिर वाइपर लेके भाग लेते हैं।
1: यार,
0: अभी
1: ये तो सही कह रही
0: हूं। से उन्हें कपड़े धो के छत पर सुखा के है, फिर भाग
1: के जाओ, ऊपर लेकर उतार के लेकर आओ।
0: तो बारिश जितना हमें सुकून देता है उतना काम बढ़ा भी देता है, क्योंकि जो काम हम कर हटते हैं वो दोबारा कहते हैं भाई करो इस काम को तुम। और इस टाइम में ना कपड़े सुखाने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है बरसात के मौसम में। और साथ ही साथ जो अनाज धोकर खाते हैं, गेहूं धोकर खाते हैं, जिनके घर में अनाज खत्म हो गया उनका क्या हाल होता है?
1: वो एडवांस में रहते हैं, एडवांस चलते हैं रीना, वॉश करके पहले सुखा के रख लेते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत जरूरी है, बारिश के मौसम में अगर किसी को लगातार तेज बुखार, उल्टी, दस्त, बहुत कमजोरी या कोई गंभीर परेशानी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। हर बीमारी का इलाज घरेलू नुस्खों से करना सही नहीं होता। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें और खुद से दवाई लेने से बचें। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों के मामले में विशेष सावधानी रखें। सबसे जरूरी बात, लक्षण ज्यादा हो या हालात बिगड़ने लगे तो मेडिकल हेल्प लेने में जरा भी देरी ना करें। ठीक है श्रोताओं, तो इन्हीं बातों के साथ अब हम चलते हैं, आपसे जाने की अनुमति लेते हैं। आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
4: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
5: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
5: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
6: अरे नहीं,
7: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
6: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
5: अच्छा?
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस मुरादाबाद।
8: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
9: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां
10: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
9: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
11: कौन है ये?
9: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, 3 से 5 मंडे टू सैटरडे, करती है आपसे दिल की बात।
12: अभी बजा आएगा ना भिड़ो।
9: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका दिन भी बहुत खूबसूरती से गुजर रहा होगा। और अगर आज का दिन थोड़ा सा बिजी भी हो सकता है ना बहुत सारे श्रोताओं के लिए, तो कोई बात नहीं, आप बिजी वक्त में भी हमें सुन सकते हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड आपको रेडियो सुनने का बहुत सारा बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट का डोज मिलता है, अपने फेवरेट गाने सुनने का मौका भी मिलता है और अपने काम को भी आप इजीली कर

0: आते हैं। और दोस्तों देखिए, अभी तो बाहर धूप भी है, बादल भी हैं एंड बारिश भी हुई है। तो देखिए जो परिवर्तन हो रहा है ना मौसम में, अब लगता है इस बारिश ने ना एहसास करा दिया है कि सर्दी अब आने वाली है। हल्की हल्की सी सर्दी भी लग रही थी जब बारिश हो रही थी, बट अभी तो बारिश बंद हो गई है। और बात करेंगे समय की, तो वक्त हुआ है 3:07 और मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। शो का नाम है हेलो फरमाइश। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, कैसे हैं आप बताइएगा।
1: अच्छा, पहले मैं अपना ताल्लुक।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कराइएगा।
1: मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी, बताइएगा सर, खैरियत से हैं आप।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आपके परिवार में क्या हाल है।
0: जी सब बहुत ही अच्छे हैं सर, ऊपर वाले की कृपा है। आप बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा है।
1: मौसम तो बहुत ही बादल छाए हुए हैं और सुबह बूंदाबांदी भी हुई थी।
0: अच्छा, तो अभी बादल हो रहे हैं।
1: जी बहुत बादल हो रहे हैं, बारिश होने के आसार हैं।
0: अच्छा, बारिश होने के आसार हैं। तो आप मुझे बताइएगा सर, आप काफी समय के बाद शो में जुड़े हैं, क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म का नाम है आप आए बाहर आई, और गाने के बोले मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: जी जी जी बिल्कुल, बताइएगा।
1: राजिया खान है, सिमरन खान है, शबनम अब्बासी, शानूर अंसारी, जीना तमान, मकसूद हुसैन, इरशाद अली, शारिक अली, शहनाज बाबू अंसारी, मिराज अंसारी, अयूब खान, जिशान मारती, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। आपने हमें कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर जी और साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं यहाँ पर। अभी मैं आपको टाइम बता देती हूँ, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:15 और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, लता जी और साथ में रफी साहब जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: आपको भी नमस्ते, क्या नाम है आपका सर?
1: मैम मेरा नाम राजू है।
0: राजू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर? हाँ जी,
1: से बात कर रहे
0: हैं। अच्छा, वहीं से बात कर रहे हैं। बताइएगा सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, प्रभु की कृपा है। और आप मुझे बताइएगा, आज जो मौसम इतना खूबसूरत सा हुआ है, बारिश हो गई है, सडनली हल्की सी ठंड भी लगी और अभी धूप फिर से निकल गई है, तो कैसा लग रहा है आपको बताइएगा? बाहर का वेदर अभी कैसा है करंटली सर?
1: मैम अभी बारिश पड़ के अभी रुकी है यहाँ पर, ठंड आने वाली है।
0: हाँ जी बिल्कुल, सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और सुबह शाम में तो अभी हल्की हल्की ठंड लगने लगी है सर।
1: छोटे बच्चों के लिए तो मैम आई चुकी है।
0: हाँ जी हाँ जी, छोटी बेबी के लिए तो आई चुकी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताइएगा, आज आपने हमें कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम क्या मौसम आया है?
0: क्या मौसम आया है? ओके, मौसम बहुत खूबसूरत आया है और अभी जो विंटर्स आने वाले हैं, इसमें ग्रीन ग्रीन सब्जियों का आनंद लीजिएगा, सरसों का साग, मक्के की रोटी। हाँ जी, चलिए हमें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप सर?
1: यही जैसे चलेंगे अभी का टाइम।
0: हाँ जी, विंटर्स में ग्रीन सब्जियां, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा और बहुत सारी डिश होती हैं जो यू नो विंटर्स में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो चलो एवरीवन, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ, मुस्कुराते भी रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। मैं आपके साथ आपकी होस्ट कृषि, और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है एवरीवन। और ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी अनारी से, जो 1993 में आई थी, और इस खूबसूरत गीत को गाया था साधना सरगम और साथ में उदित नारायण जी ने। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, आप बताइए।
0: जी मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइएगा।
1: मैम नैना बोल रहा हूँ।
0: नैना कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मंजोली।
0: जी जी जी बताइएगा नैना जी, अभी सो के उठे हो क्या?
1: मैम हाँ, सो रहे थे, 3 बज गए तो रेडियो चला लिया।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा किया आपने। बताइएगा कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो आज नैना?
1: मैम सॉन्ग सुनना चाहते तेरी यादों की।
0: ओके चलिए सुनवाते हैं ट्रैक आपको। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए नैना की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत तेरी यादों की चादर ओढ़े, और बहुत सारे श्रोताओं की पसंद भी है इस गाने की। तो आज देखिएगा आपकी फरमाइश भी प्ले हो रही है यहाँ पर, एंजॉय कीजिएगा।

0: स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा ट्रैक दिल ने तेरा नाम लिया। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपको भी सर, बताइएगा अपना नाम।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आप बताओ आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं सर, आप बताइएगा। आज आप घर पर हैं?

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: बिल्कुल दोस्तों, देखिए जलवा तो आपका है नो डाउट। एक्चुअली आपके इतने सारे कॉल्स यहाँ पर आते हैं और इतना प्यार आप एफएम मुरादाबाद को करते हो, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए समय की अगर बात करें ना तो एवरीवन, वक्त हुआ है 3:46 और अभी आपने सुना ये दमदार ट्रैक। और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम कुछ का था, बड़ी मस्जिद के पास का राजा हुसैन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: हम ठीक है मैम, आप सही, आप कैसी हो?
0: जी हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: गाने के बोल रहे हैं, देखे कई चेहरे।
0: हाँ जी,
1: बोला
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गाना आपको, आपके

0: इनका
1: थैंक यू
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए विवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। और आपका चेहरा भी सच में बहुत ही प्यारा है, बस आप इस चेहरे पर ना स्माइल रखा करो, इसके बिना ना आपका चेहरा थोड़ा सा उदास उदास सा लगता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी उदासी आए, आप मुस्कुराते हैं तो चार चांद लग जाते हैं आपके चेहरे पर। अब इस बात पर मुस्कुरा भी दो।

0: बिल्कुल दोस्तों, देखिए प्यार तो आपको आया है फिर मुरादाबाद 89.6 पर, तभी तो इतने दूर दूर से हमारे लिसनर्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, फोन कॉल के जरिए हमसे बातचीत करते हैं, अपने हाल चाल बताते हैं और बताते हैं वो गाना जो उनके दिल के बहुत करीब होता है। तो दोस्तों, आप भी इस वक्त कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, और उसके लिए हमारा ऑफिशियल नंबर है जो आपको डायल करना है, एंड हमारा मोबाइल नंबर है 9837896 8968 93 96 98। ये हमारा वही मैजिकल नंबर है जिस पर आप कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश जी, वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? जी जी जी, बताइएगा पिंटू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? आपके स्टाफ में कैसे हैं सब?
0: ऑल गुड, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, मजे में हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और बाकी आप बताइएगा, बारिश का आनंद लिया आपने?
1: बारिश में भीग गया था मैम मैं थोड़ा सा।
0: ओहो, क्यों भीग गए थे आप? थोड़ा सा पूरा भीगना चाहिए था ना आपको?
1: नहीं नहीं,
0: हाँ वही ना, मजाक कर रहे हैं, फिर डोंट माइंड। आनंद सर बहुत अच्छे हैं सब, आप बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: आवाज में
0: जी बिल्कुल, गुनगुनाइएगा, हम सुनने के लिए तैयार हैं।

0: अच्छा गुनगुनाया है आपने, तो सुनवाते हैं गाना।
1: मैं ऐसा करता हूँ मैम, जो जो
0: जी
1: मेरे जीवन में दिल करता है ना, मैं वो काम उसको टाल कर उसको कर लेता हूँ। मुझे गाने का शौक होता है, मैं गा लेता हूँ उसको,
0: हाँ,
1: मार अपने मन को मारता नहीं हूँ मैं।
0: अच्छी बात है। एंड अगर कोई भी शौक हमारा है वो अच्छा है तो मुझे लगता है करना चाहिए, पर उसमें हमें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, दिल से जीना चाहिए, जिंदगी बहुत प्यारी है यार।
1: थैंक
0: जी, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: यू वेरी मच मैम, आपका भी।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये ट्रैक एंड मोस्ट वेलकम पिंटू। तो ये पिंटू जी की पसंद पर सुनते हैं अमेजिंग ट्रैक केके की आवाज में। लौट कर मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
2: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ, और अभी वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 4:01। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार। अच्छा सर, ये कोई रूल है आपके यहाँ पर 3 बार नमस्कार करने का?
1: ये अपनी एक पहचान है।
0: अच्छा, ये आपकी पहचान है? अरे वाह, क्या बात है, आप 2 बार एक्स्ट्रा और नमस्कार करते हैं, अच्छा लगा हमें भी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं हूँ दसपुर रेडियो श्रोता संघ शामगढ़ से राजस्थान केदर बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, राजस्थान से बात कर रहे हैं, शामगढ़ राजस्थान?
1: राजस्थान नहीं, शामगढ़ से राजस्थान केदर बात कर रहा हूँ।
0: राधे श्याम टेलर जी बात कर रहे हैं शामगढ़ से, राइट?
1: जी जी
0: ओके।
1: मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, एमपी से बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश?
1: और रहा सवाल हमारा शामगढ़ का, तो पूरे भारत में शामगढ़ एक ही मिलेगा और वो सिर्फ हमारा ही शहर मिलेगा।
0: अच्छा, अरे वाह, नाम बहुत ही खूबसूरत है शामगढ़, और आपका नाम भी राधे श्याम है।
1: जी
0: बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। और बताइएगा अपने शामगढ़ के बारे में, कुछ खास चीजें बताइए, कुछ खास बातें बताइएगा जो हमारी ऑडियंस को नहीं मालूम है।
1: जी हाँ, शामगढ़ में तो करीबन यहाँ के जो व्यवहार है लोगों का, है ना?
0: जी जी।
1: और शामगढ़ में क्या है कि पोरवाल बस्ती है, तो कभी यहाँ पर झगड़े भी नहीं होते हैं, सभी इंसान भाईचारे के साथ में यहाँ पर रहते हैं। और हाँ, एक दूसरे से व्यवहार बनता है और एक दूसरे को चाय भी पिलाते हैं।
0: अच्छी बात है, चाय भी पिलाते हैं। और देखिए अभी ये शाम भी हो गई है, 4 बज चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप चाय को बहुत मिस कर रहे हैं, तो एक कप गर्मा गर्म चाय बनाइएगा और उसका आनंद लीजिएगा। और बताइए कौन से गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: ये और साथ ही आपको भी आना पड़ेगा चाय पीने हमारे साथ।
0: ठीक है सर, डेफिनेटली कभी मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। अभी आप बताइएगा कौन से गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मुझे सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है सोतन।
0: हाँ जी।
1: और गीत है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, है ना?
0: हाँ जी, तभी हम समझ गए थे आप चाय का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब चाय पीने का बहुत मन है आपका। देखिए गाना भी आपने वही सुना है जिसमें चाय का नाम आ रहा है।
1: जी जी। और साथ ही एफएम बैंड जो है मुरादाबाद, ये तो वास्तव मजे की बात ही कुछ और है, और साथ ही आपकी आवाज तो एकदम दिल को छू लेने वाली है।
0: थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: जी
0: जी, नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक राधे श्याम जी की रिक्वेस्ट पर। शामगढ़ से सर ने कॉल किया था, बड़ा ही खूबसूरत सा इनके सिटी का नाम है शामगढ़। एंड चलिए प्यारा से गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। अगर आपका भी चाय पीने का दिल है तो गर्मा गर्म चाय बनाइए और खुद भी पीजिए, अपनी फैमिली को भी पिलाइए।

0: हाय माय डियर लिसनर्स, वेलकम यू आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सूदन, जो 1983 में आई थी। और इस खूबसूरत गीत को गाया था किशोर कुमार जी और साथ में लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी आदाब। क्या नाम है आपका? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: हम सब बढ़िया हैं। आपके फिल्म में बाहर से लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी सर, सभी बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, शुक्रिया आपके सर। बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज? हाँ जी,
1: गाने के बोल है, मैं तो हूँ सबका, न मेरा कोई, इस तरह से गाने के गाने है।
0: अच्छा, इस तरह से गाने के लिरिक्स हैं। आप बताइएगा और कौन आपके साथ में सुनना चाहते हैं ये ट्रैक?
1: हमारी फैमिली में बेटी माइनूर है, अलीजा है।
0: हाँ जी, ओके।
1: और डॉक्टर सैयद सर भी कल ऐसे चलो खाने से हिसाब से नंचारी है, अदालत प्रथम रवासी परिसंचारी है, हाजी का पासवाद रामपुर से दूसरा रवासी सत्य मदनचारी गई।
0: अच्छा ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ फैमिली के साथ सुनवाते हैं गाना। आपने हमें कॉल किया, उसके लिए शुक्रिया। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं गीत, लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, आपका कॉल भी डेफिनेटली लगेगा।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए अभी समय हुआ है 4:18। हमारे साथ हमारे कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो खुशी जी, मेरा प्यार भरा आदाब।
0: आपको भी आदाब सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम तौफीक हुसैन
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर?
1: लाइन पर ढक्का से बोल रहा
0: हूँ जी। बताइएगा आप कैसे हैं
1: जी? बढ़िया मैडम, आप सुनाइए, आप तो ठीक?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ सर। बताइएगा आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: गाना तो सुन लेंगे मैडम, अभी आपसे एक मिनट की बात करनी थी।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बताइएगा।
1: ये आंखें जो बनाई हैं,
0: हाँ जी,
1: ऊपर वाला कह लीजिए, अल्लाह ताला कह लीजिए, भगवान कह लीजिए,
0: जी जी
1: मानस है सब एक ही।
0: हाँ
1: तो आंखें भी बड़ी अजीब चीज बनाई है।
0: हाँ जी,
1: क्योंकि ये आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं।
0: हाँ राइट।
1: और अल्लाह ने वो ये नेमत आपको तो कुछ ज्यादा ही दिए। आप अच्छा बुरा लेडीज जितनी है इस दुनिया की, मेरे घर में भी है, वो सभी
0: जी
1: आंखों से बहुत जल्दी, ऊपर वाले ने वो दिया है कि आंखों से बहुत जल्दी इंसान को
0: पहचान लेती है। हाँ जी ये तो है।
1: इसी के ऊपर मैं एक शेयर कहना चाहूंगा थोड़ा सा
0: जी। इरशाद
1: कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता मेरी जान, यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा होता मेरी जान, कुछ तो बेवफाई रही होगी। बस मैडम इतना ही था।
0: अच्छा, मुझे लगा आगे और था इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। बट बहुत खूबसूरत लाइन ही थी आपकी सर। और आज कौन सा ट्रैक सुनना चाहते हैं? आपने आंखों की बातें की है तो जरूर कोई प्यारा सा खूबसूरत सा गाना होगा।
1: जी मैं सुनना चाहूंगा आंखें ठग, नैना ठग लेंगे।
0: नैना ठग लेंगे, अरे वाह, राहत फतेह अली खान जी की आवाज में ट्रैक है।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत प्यारा सॉन्ग है,
0: खूबसूरत ट्रैक है। हाँ जी सर, तो सुनवाते हैं ये गाना आपको।
1: खुशी जी लोगों मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम सर। इंजॉय कीजिएगा आप ये ब्यूटीफुल ट्रैक नैना ठग लेंगे। और सच बात कही है सर ने कि कुछ बातें होती हैं जो हम बोल नहीं सकते हैं, बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन आंखें वो बिना कुछ बोले ना आंखें सब बयां कर देती हैं, अल्फाजों की नीड नहीं होती है वहाँ पर। तो चलिए ये खूबसूरत सा गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं हम। आप कहीं मत जाइए, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइए और मुझे कॉल लगाइएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430।
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: hey, 89.6 FM।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आप कैफे मुरादाबाद 89.6 पर। आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश शो बदार्जी खुशी। और एवरीवन, अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी ओमकारा से, जो 2006 में आई थी, और इस खूबसूरत गीत को गाया था राहत फतेह अली खान जी ने। म्यूजिक डायरेक्टर थे विशाल भारद्वाज जी और लिरिक्स थे गुलजार जी की। नैना ठग लेंगे, खूबसूरत गाना। और नैनों के ऊपर मुझे भी एक शायरी याद आई है, बड़ी प्यारी सी है, कि इन आँखों का एतबार मत करना, इन आँखों का एतबार मत करना, ये उठे तो पतले आम करती हैं, कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारो, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं, ये निगाहें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, बट बहुत प्यारी शायरी है, मैं फिर से सुनाती हूँ। कि इन आँखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं, कोई इनके निगाहों पे पहरा लगाओ यारो, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। चलिए, वैसे मुझे शायरी वगैरह आती नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी हमारे इतने सारे प्यारे प्यारे श्रोता हैं जो कि शायरियाँ करते हैं, तो उन्हें देखकर हमें भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ, करना चाहिए थोड़ा बहुत शायरी वगैरह। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्ते,
0: नाम बताइएगा आपने।
1: दर्पण कुमार सैनी रामपुर से बोल रहा हूँ।
0: दर्पण कुमार सैनी जी रामपुर से बात कर रहे हैं, बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम, आप स्वागत कैसे
0: हैं? हाँ जी, हम लोग भी सब बहुत ही अच्छे हैं। आप अपना बताइएगा कि प्रॉपर रामपुर से ही बात कर रहे हैं या रामपुर के आसपास से बात कर रहे हैं?
1: जी, रामपुर शहर से बात कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, ओके, बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: मैम फिल्म का नाम है लैला मजनू।
0: हाँ जी
1: मैम। गाने का नाम है इस रेशमी पाजे की जानकार के साथ।
0: ओके, ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं। दर्पण जी, आपने हमें कॉल किया, उसके लिए शुक्रिया। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं मोहम्मद रफी साहब जी और साथ में लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज़, लता जी की आवाज़ में प्यारा सा गाना, इस रेशमी पाजीब की झनकार के सदके।

गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए अभी वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 4:37 और अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना लैला मजनू जो 1976 में आई थी। मोहम्मद रफी साहब और साथ में लता मंगेशकर जी की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं दोस्तों। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत मैं आप सभी के लिए यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा, और गाना भी बहुत ही खूबसूरत है।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
1: कौन है ये?
0: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
0: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: गुनगुनाने का मौका तो आपको मिलता ही है और साथ में अपने फेवरेट ट्रैक सुनने का भी आपको यहाँ पर मौका मिलता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप पीछे क्यों हैं, आइए बात कर लेते हैं अपनी अगली कॉलर से। कौन हमारे साथ जुड़े हैं? हेलो फरमाइश। जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
4: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी से घर आया हूँ और आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ।
3: जी,
4: और आज मैं अपने पसंद गीत बताता हूँ। कल हमारे बीच में फिल्मी अभिनेता क्या बोलते हैं नाना पाटेकर हमारे बीच में नहीं रहे।
3: हाँ जी हाँ जी।
4: उन्हीं का फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है कोहराम, उसमें अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर दोनों मिलकर गाते हैं। हम है बनारसी भैया, गायक सुदेश भोसले और शायद उदित नारायण है। और सबसे पहले गीत आपको के निर्देशक साहब को पूरे भारत तक श्रोताओं को जो मुरादाबाद में सभी लोगों को आपकी कुर्वाजन के सूत्रधारों को अपनी शैली को सभी उद्योग भाई बहनों को स्टाफ कर्मचारियों को हर प्यारे श्रोताओं को पूरे भारत का श्रोताओं को और उत्तर प्रदेश के श्रोताओं को सभी को डिरेक्ट रहेगा इस गीत को। बहुत अच्छा गीत है मैडम, सुनिएगा दिल खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा गीत है। धन्यवाद।
3: मोस्ट वेलकम सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आप पूरा गीत इंजॉय कीजिएगा ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी कोहराम से जो 1999 में आई थी, और इस खूबसूरत गीत को गाया था अमित कुमार साथ में सुदेश भोसले जी ने। हम हैं बनारस की भैया, बहुत ही खूबसूरत से गाना अभी आपने एंजॉय किया। और साथियों, अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे संडे मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। देखिए साथियों, कल है अमावस और संडे के दिन नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी मुझे पता है कि कामों में व्यस्त हैं, कल की पूजा में भी, क्योंकि कल पूजा भी होने वाली है, पितृपक्ष चल रहे थे, फाइनली कल कंप्लीट हो जाएंगे, तो अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए, अपने परिवार के साथ मिलकर फेस्टिवल सीजन का आनंद उठाइए। और हाँ, घर में भी हेल्प कराइएगा, क्योंकि अकेली जो फीमेल्स होती हैं वो इतने सारे काम संभालती हैं, घर भी, ऑफिस भी, बच्चों को भी, तो थोड़ा सा हेल्प आप भी करवाएंगी तो ज़्यादा इजीली चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। और मुझे दीजिएगा अनुमति, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जुरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 5:07 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। सच बताऊं, शाम होते और वैसे ये गाने सुनने को मिल जाने ऐसे वाले तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया दोपहर में यानी कि झमाझम वाली बारिश, ओ माय गॉड, मतलब उम्मीद से परे हो जाते हैं ना कभी कभी काम जब आप नहीं सोचते हो और बारिश हो जाती है एक दिन एकदम, तो कैसा लगता है। यानी कि बात की जाए मेले की तो भैया वहाँ पर पानी और ऊपर से व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है, सूखा मिट्टी डाला जा रहा है ताकि सभी जो

मेला देखने जाएंगे उन्हें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, कीचड़ को अच्छे ही उसके ऊपर सूखा मिट्टी डाला जा रहा है ताकि जो पानी है जो उसको सोख ले, और फिर सभी जो श्रद्धालु वहाँ पे जाएंगे रामलीला देखने के लिए उन्हें उनके पैर ना फिसले और उन्हें प्रॉब्लम ना हो। और इसी के साथ अगर आप आ रहे आज मेला देखने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज सीता स्वयंवर होएगा तो आप आ सकते हैं रामलीला ग्राउंड में। और साथ ही साथ ढेर सारी हम बातें करेंगे, यानी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, साथ ही साथ आज स्पेशल डेज क्या मनाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आप सभी के साथ, ढेर सारी बातें करेंगे। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के

0: तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:17 हो चुके हैं और आज की तारीख 9 अगस्त अपने आप में बहुत ज्यादा खास, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कल बारिश बताई गई है भैया, और वैसे ही आज दोपहर में झमाझम वाली जो बारिश हुई है ना भाई, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ऊपर से यानी कि सुबह ही इस वेदर के बारे में पता चल गया था, जब आपने सुबह देखा होगा उठ को तो एकदम थोड़ी देर के लिए तो मौसम सही था, लेकिन उसके बाद जो ठंड वाला बिल्कुल जो माहौल होता है ना, फॉग वाला, उस तरीके से दिखने लग गया था। इसी से अंदाजा लगा लिया था भैया सबने कि बारिश आएगी, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद धूप निकली। धूप के बाद कहते ना लुक्का छुपी का गेम खेला जाता है, तो ये मौसम जो है ना हमारे साथ लुक्का छुपी वाला ही गेम खेलते हैं। और कब बारिश हो जाए, कब मौसम बदल जाए, बिल्कुल भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। लेकिन एक चीज का आपने अंदाजा पूरी पूरी लगानी है आपने, वो ये है कि जब भी आप ऑफिस से निकलते हैं, देखिए ये समय बिल्कुल ऑफिस से निकलने वाला है, और अभी शरद नवरात्रि कल परसों से शुरू हो जाएंगे, लेकिन कल शाम को मार्केट में बहुत ज्यादा आपको क्राउड दिखेगा, क्योंकि सब नवरात्रि के लिए फेस्टिवल के लिए माता रानी के लिए उनके वस्त्र और सामान खरीदेंगे, जो कि पूजा की सामग्री होती है, जो जो जो प्रोडक्ट है वो लगते हैं, वो हर चीज कोई सब कोई खरीदने वाले, तो कल आपको बहुत ज्यादा रस दिखेगा मार्केट में। साथ ही साथ आज की अगर मैं बात करूँ तो आप ऑफिस से निकल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वेल, आपने क्या करना है जी, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाना है। मैं हर बार आपको बोलती हूँ, हर बार याद दिलाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं हूँ याद दिलाने के लिए, मैं याद दिला दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन याद दिलाने के बाद आपने हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना जरूर है। और साथ ही साथ जो ट्रैफिक के नियम है, रूल है, उसको फॉलो भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हमें अलग अलग चौराहे पर पुलिस वाले नहीं दिखते हैं, तो हम वो सोचते हैं कि यार कौन ही देख रहा है हमें, नवाबों की तरह चढ़ते चौर में, लेकिन आप सच बताऊं तो कैमरे की निगरानी में होते हैं, और फिर ये चीज हमें पता नहीं चलती कि कब हमारा चलान कट गया है, और उस चीज को हम चलान को पे नहीं कर पाते, भर नहीं पाते हैं। इसीलिए सरकार ने भी बड़ा ऐलान ले लिया है कि अब बिजली बिल के साथ ही तुम्हें देना पड़ेगा चलान भैया। ये देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि थोड़े जो आपको मतलब कहते हैं ना, थोड़ी जो चीजें आपको जब 200-500 रुपए पेमेंट करनी तो कर दीजिए, अदरवाइज 2000-3000 करने में थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है, तो इसीलिए टाइम टू टाइम अपना जो भी आपका चलान लगता है उसको पे करते रहिए। और साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि त्योहारों पर, फेस्टिवल पर एक चीज बोली जा रही है कि वो फ्री कर दी जाएगी, लेकिन वो चीज क्या है जो फ्री कर दी जाएगी, और मुझे लगता है कि ये बातें सुनकर ना आप सभी के चेहरे पर भैया ब्लश और एक मुस्कान बहुत ही तगड़े वाला आने वाला है, लेकिन वो क्या है क्या नहीं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या, अरे गाना सुनाएंगे आपको, पहले गाना सुनिए और एक मैसेज। ये हमारे साथ कनेक्ट होती है। हाय रीना दी, कैसी हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अफरोज फातिमा, आज आपका प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो रूपाली जी हमारे साथ कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि हम आपकी रेडियो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सीमा जी का कहना है कि बिल्कुल रीना जी, आपने कल ही बोला था कि बारिश आएगी भैया, और आपने अलग अलग 22 राज्यों में बारिश आने वाली थी, जो कि आपने नाम भी मेंशन किया था, तो इसीलिए मैं समझ गई थी भैया आज बारिश आने वाली, तो कपड़े तो बिल्कुल नहीं धोए मैंने, कपड़े मैं सीधा कल या संडे को धोएंगे, क्योंकि संडे को ऐसे भी फ्री रहते हैं। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, संडे को सब फ्री रहते हैं, सो संडे को अपने घर के कपड़े धोइए और आराम से उसको सुखाइए, और संडे से माता रानी हर किसी के घर में विराजमान हो जाएंगी, तो माता रानी की खातिरदारी के लिए और घरों की सफाई, मंदिर की सफाई कीजिए, और ये गाना इंजॉय करते रहिए, गाने सुनते सुनते आप अपना काम करते रहिए, चाय पीते रहिए, किचन में अगर आप खाना बनाने के लिए चले गए तो वेल, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और इसी के साथ साथ गाने का आनंद लेना भी बहुत जरूरी है।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 5:34 हो चुके हैं और समय 5:34 और आज की तारीख 9 अक्टूबर। और 9 अक्टूबर अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है और फेस्टिवल सीजन यानी कि परसों से शुरू हो जाएंगे यानी कि शरद नवरात्रि। उसके बाद 8 तारीख को दीपावली है और 6 तारीख को धनतेरस। और इसके बाद जितने भी फिर भैया दूज बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाएंगे। और मतलब यही है ना कि फेस्टिवल की हम जो तैयारियां हैं काफ़ी टाइम पहले से ही कर देते हैं, लेकिन कब फेस्टिवल एक दिन के अंदर ही 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, अंदाज़ा भी नहीं लगता हमें उसका। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि यूपी में फेस्टिवल के सीजन पर जो सिलेंडर है वो फ्री दिया जाएगा। कितनी खुशी की बात है ना कि फेस्टिवल के सीजन पर बस सिलेंडर खाली बिना पे किए आपको मुफ्त में मिल जाए तो भले ही भले ही है। क्योंकि भैया अगले अगर बात की जाए तो काफ़ी टाइम से सिलेंडर इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है ना, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना कि क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ जाकर अगर ब्लैक से भी आप उठाते हैं तो आपको 2,000 से कम ही पे करने पड़ते हैं, लेकिन पहले तो 3,000-3,000 पे करना पड़ रहा था। लेकिन अब राहत मिल चुकी है और इसी राहत के साथ ये कहा जा रहा है कि फेस्टिवल पर जो सिलेंडर है वो मुफ्त मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब ये देखते हैं, वो तो तभी पता चलेगा जब आप बुकिंग करेंगे और आपको फ्री में मिलेगा, तब एक्चुअल में ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ अब तो फ्री सिलेंडर मिल पा रही है। मैसेज की बात करूँ तो गुड इवनिंग रीना जी, आप आशा है आप बिल्कुल अच्छी होंगी। रीना जी क्या बात है, कल रात मेला कैसा रहा आपका? कल रात मेला मैं गई नहीं क्योंकि मैं जहाँ पर रूम है वहीं से मुझे आवाज़ आती रहती है, तो मैं यहीं से आनंद लेती रहती हूँ, उनकी आवाज़ें सुनती रहती हूँ, गाना सुनती रहती हूँ, तो मुझे यहीं से बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि जाए, और आज मैंने सोचा भी था जाने के लिए, लेकिन बारिश भैया पहले कह रही कि नहीं नहीं नहीं तुम घर में रहो, तुम्हें नहीं जाना है कहीं भी। कोशिश करेंगे कि जाए देख

कराएं वहाँ भी। और इनका कहना है कि मुरादाबाद की कोई नई जानकारी हो। बिल्कुल जी, अरे बरसात हो गई है, मेले में आइए, घूम के जाइए, इंजॉय करिए, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है ये बताइए। क्योंकि मेले का शौक तो हर किसी को रहता है ना। बच्चों की अगर बात की जाए तो जैसे उन्होंने पता चल गया, कानों में उनकी आवाज़ गई कि मेला लगा हुआ है अपने मुरादाबाद में, तो उनके दिमाग में सबसे पहले एक ही ख्याल आता है कि झूला है ना भैया, हम तो झूला झूलने जाएंगे। लेकिन सच बताऊँ, अपना झूले से कोई नाता नहीं है भैया। मुझे बहुत डर लगता है झूले से, मैं कोसों दूर रहती हूँ झूले झाले से। बाकी आपको पसंद है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896। और इनका कहना है कि मैडम जी आज तो बारिश हुई है, आपने गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का आनंद लीजिए। बिल्कुल जी ले लेंगे हम आनंद, आप भिजवा दीजिए बस ऑफिस में तभी ले पाएंगे ना हम आनंद। तो बाकी आप अपने घर पर है, गर्मा गर्म पकौड़ी चाय बनवाइए और खाइए। मतलब बारिश आते ही दिमाग में भी एक ही ख्याल आता है कि चाय पकौड़े हो जाए, है ना। लेकिन चाय पकौड़े से भी आगे कुछ सोचिए, आगे बहुत कुछ है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, और नेहा कक्कर की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना। और इस गाने के बाद हम लौटेंगे आप सभी के बीच और करेंगे ढेर सारी बातें।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

गुड वाली इवनिंग है आर जोरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए और बहुत ही शानदार वाला आप गाना एंजॉय करें टच बटना। और सच बताऊं ये वाला गाना ना बहुतों का बहुत वाला फेवरेट होगा, क्योंकि ये गाना मेरा भी फेवरेट है ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं आपको। और साथ ही साथ समय की बात करूँ तो 5:49 हो चुके हैं, और अगर मैं बात करूँ हरिद्वार में तो भैया इतनी तेज बारिश आई और बारिश के साथ साथ जो ओले पत्थर गिरे हैं ना, यानी कि जो गाड़ी के शीशे हैं ना वो भी तोड़ दिया गया है, तोड़ दिए हैं उस पत्थर ने। अब सोचिए वहां पर ओले भी गिरे हैं और इतनी तेज आंधी तूफान के साथ तहस नहस बवंडर वाला ये जो बारिश आई है, आंधी तूफान आई है ना, इसके वजह से हर चीज तहस नहस हो गई है हरिद्वार में। गाड़ियों से लेकर पेड़ पौधे घर तक हर चीज को नुकसान पहुंचा है वहां पर। तो बस आप जहां से भी हैं और कहीं भी देखिए, मौसम का अगर आपको पता चलता है कि भैया मौसम इस तरीके से खराब होने वाली है, तो आप पुराने घर में रहते हैं तो उसको आपने क्या करना है, चेंज करना है और कोशिश करना है कि आप पुराने घर में ना रहे, क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है और ये जो मौसम खराब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए इस टाइम, तो क्योंकि फसलें बहुत कट चुकी हैं और बहुत ही फसलें भी कटी नहीं है, तो हर चीज़ को नुकसान ही नुकसान पहुंच रहा है। बाकी और भी ढेर सारी बातें करते रहें, एक और गाना सुनते हैं नेहा कक्कर की आवाज़ में, और आप कहीं नहीं जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं कड़क सवाल। और साथ ही साथ अगर आप डांडिया में एंजॉय करना चाहते हैं, डांडिया में जाना चाहते भैया, तो उसके लिए आपने विनर बनना पड़ेगा, तभी आप हमारे पास से पासेज ले पाएंगे और उसके लिए आपको देना पड़ेगा हमें राइट आंसर। तो चलिए हम लेकर आएंगे कड़क सवाल, फिलहाल ये गाना सुनते हैं।

baby. हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है. आज जरीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं. और समय की बात करूँ तो समय हो चुका है 5:57 और आज की तारीख 9 अक्टूबर. और साथ ही साथ देखिए, कुछ चीज़ें हम जो खाते हैं लेकिन उस चीज़ के बारे में हमें एक्चुअल में नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे खाना चाहिए. अगर मैं बात करूँ मेडिसिन, दवाई के बारे में, तो अक्सर एक तो देखिए मरीज होता है ना, जो दवाई को देखते ही ठीक हो जाता है. और बहुत से होते हैं कि भैया दवाई खाने के बड़े धुरंधर होते हैं, उनको कैसी कड़वी भैया दवाई दे दो तब भी वो निगल लेते हैं. भाई निगल लो. और हमें एक्चुअल में नहीं पता होता है कि हमें दवाई कैसे लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए. क्योंकि जब भी आप दवाई लेते हैं ना, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि कौन सी दवाई आपने कैसे लेनी चाहिए, कैसे नहीं लेनी चाहिए, कि पानी में घोलना चाहिए या फिर जीभ पर रखने के बाद वो खुद घुल जाती है, या फिर आपने अगर आप उसको पी रहे तो पानी के साथ सीधा डायरेक्ट सटकना होता है. तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे आपके पास मेडिसिन आता है. तो आप उस पर देख सकते हैं, अगर ये चीज़ें लिखी होती है तो आप उस चीज़ को कैसे टेक ओवर करते हैं और कैसे उस मेडिसिन को आपने लेना है उसके बारे में हम बताएंगे. लेकिन उससे पहले एक गाना.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: Cortiscope.
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
5: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
4: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

ਚੱਲੇ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਨੋ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਭਈਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਖੀਏ, ਕੱਲ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੋਂ ਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਝੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥੀ। ਔਰ ਮੁਝੇ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਬ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਥੀ, ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਂ ਥੀ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਮੁਝੇ ਲਗਾ ਕਿ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰ। ਤਬ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਵੋ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮੋਂ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਫਿਲਮੋਂ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਰੌਕ ਨਹੀਂ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੋ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਭੀ ਥੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ, ਫਿਲਮੋਂ ਮੇਂ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਥੇ। उन्होंने आर्मी की शुरुआत यानी कि 1991 में की थी, और साथ ही साथ उन्होंने आर्मी में जो फौजी का रोल होता है उन्होंने उसको बड़े ही शिद्दत से निभाया। और जब बात की जाए 1999 में, जब 1999 में लड़ाई यानी कि कारगिल युद्ध हुआ था, तब यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध छिड़ा, तो देश के लिए मोर्चे पर जाने को बेताब थे। नाना पाटेकर जी ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही रोक नहीं मचाया है, बल्कि उन्होंने फौजी का जो एक किरदार होता है उसको भी बखूबी निभाया है। अपने देश के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। और एक मूवी है जो कि मतलब अगर 30% देखा जाए तो थोड़ा अलग है, अदरवाइज 80% पूरा रियल दिखाया गया है। और वो मूवी है प्रहार। अगर ये आपने मूवी नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा प्रहार मूवी, जो कि युद्ध के बारे में उसमें पूरा दिखाया गया है, रियल वाला स्टोरी है। जो 30% है उसको आप अलग कर सकते हैं, लेकिन 80% पूरा जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर ही प्रहार मूवी में है। तो आप ये प्रहार मूवी अगर अभी तक नहीं देखी तो नाना पाटेकर जी की मूवी है, ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। और वो फिल्म अभिनेता के साथ फेक एक्टर के साथ साथ अपनी बातों को और दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने, कहते हैं ना, सिर्फ एक फौजी फौजी नहीं होता है, उसके अंदर बहुत हुनर होते हैं। वो गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। उन फौजियों के में भी भैया फंक्शन होते हैं, सिंगिंग होते हैं, डांसिंग वाला होता है, शेर और शायरी वाला होता है। जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, वहाँ पर ऐसा रोक टोक नहीं होता है कि नहीं भाई तुम आर्मी में रहोगे तो सिर्फ आर्मी में रहोगे, आर्मी में ऐसा नहीं होता है। वहाँ अपने काम किया, रिटायरमेंट लिया और आप आगे जो काम करना चाहते हो कर सकते हो। तो वैसे नाना पाटेकर जी थे, जो कि एक बहुत प्यारे फौजी भी रहे हैं। चलिए इसी के साथ एक और गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच और करेंगे ढेर सारी बात। बातों को नहीं पता था कि नाना पाटेकर जी एक आर्मी ऑफिसर भी थे, तो आज आपको पता लग गया होगा। सर्च करके ज़रूर देखिएगा। और प्रहार मूवी मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर देखना चाहिए आप सभी को, लेकिन पहले ये गाना सुनते हैं उसके बाद।

0: तभी तो मुझे बुला था।
1: नहीं नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है, मैंने कब बुलाया आपको?
0: यही कुछ 9-10 साल पहले, बड़ी जल्दी भूल गए।
1: 9-10 साल पहले
0: तब मैंने कहा।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
6: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, अर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट है। श्रोताओं, समय की बात करूं तो 6:31 हो चुके हैं और इसी बीच लेकर आने वाली हूं आप सभी के लिए कड़क सवाल। अब कड़क सवाल क्या रहने वाला है वो तो पता चलेगा बाद में, बस आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि रेडियो का वॉल्यूम है ना वो बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए लेकर आने वाले कड़क सवाल बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। अगर आप देते हैं राइट आंसर तो आपको डांडिया नाइट एंजॉय करने का मौका मिल सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा संभल के पेशेंस के साथ जल्दी मैसेज करना है, अदरवाइज आप रह जाएंगे बीच में। चलिए फिलहाल

तेरे झूमे। अलका याग्निक और सानू निगम की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया भैया। सोनू निगम जी की आवाज में हूँ, माय गॉड, झूमे रे झूमे। लेकिन फिलहाल अब आप सभी की बारी आ गई भैया, आपने क्या करना है, हमें राइट आंसर पहुंचाना पड़ेगा और हमारा नंबर है 9837896896 पर आपने हमें मैसेज करके पहुंचाना है। फिलहाल समय की बात करूं तो 6:33 हो चुके हैं। बाहर का वेदर आपको थोड़ा धुंधला आज दिख सकता है, सुबह भी ऐसा ही वेदर रहने वाला है, यानी कि फॉग वाला, हल्का हल्का फॉग वाला आपको वेदर सुबह दिख सकता है। साथ ही साथ आज का हमारा कड़क सवाल ये है, अगर देखिए अगर आप पढ़ने पहुंचाया सबसे पहले राइट आंसर, तो डांडिया नाइट का जो पासिस है आपके पास, आप जीत सकते हैं और उस जीतने के बाद आपको हमारे रेडियो की तरफ से कॉल आएगा और आप पासिस लेने के लिए आ सकते हैं। तो हमारा आज का देखिए बहुत और बेहद सिंपल वाला क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप आसानी से आंसर बता सके और जो पासिस है आप कलेक्ट कर सके, आप जीत सके। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बताना है आपने, बस इतना ही काम है, कुछ और ज्यादा काम नहीं बताया मैंने आपको, इतना ही दिमाग पर जोर डालना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बताना है हमें। हमारा नंबर है 9837896896 पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। सोचिए, फिलहाल आपके लिए खर गाना हम लेकर आ गए भैया, गाना ही गाना ही गाना। और ये बताएंगे कि भैया देखिए, अगर हमारी तरफ बात करें तो शादी होने के बाद लड़कियां अपने पति के घर चली जाती है, लेकिन एक ऐसा जगह है जहां शादी होने के बाद लड़का यानी कि लड़की के घर आ जाता है, कौन सी जगह है वो बताएंगे बताएंगे। फिलहाल आप ये सोचिए कि आखिरकार हमें राइट आंसर क्या देना है, तभी आपके पास वाउचर आएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का अपने नाम बताएंगे।

गुड वाली इवनिंग है आर्जुरीना के साथ, आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। गुड वाली इवनिंग है, समय की बात करूं तो 6:43 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया अगर इधर शादी होती है तो लड़कियां अपने ससुराल जाती है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर शादी होने के बाद लड़कियां नहीं बल्कि लड़के यानी कि लड़की घर आती है। तो बात करती है पीढ़ियों से चलती आ रही है ये सिलसिला। मध्य प्रदेश में ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़की नहीं जाती बल्कि लड़का घर आता है, ये परंपरा उनकी सदियों से चलती आ रही है। और इसी के साथ आज का हमारा कड़क सवाल आपसे बहुत ही आसान वाला था कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बताना है, जल्दी जल्दी सोचिए और हमें मैसेज करिए, नंबर है 9।

क्या ही शानदार गाना है डोला रे डोला। हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:50 हो चुके हैं और आज बेहद खास डे मनाया जाता है, जो कि अब उसकी जो मतलब कम हो गई है क्वांटिटी, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब होती है ना भैया, तो वो सिर्फ सामान पार्सल करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि सोचिए, आज के इस मोबाइल और व्हाट्सएप के जमाने में अगर किसी अपने के हाथ से लिखा हुआ खत मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है कि वाह, हाथ से लिखा हुआ खत आया, मेरे पास चिट्ठी आई है। और इस चिट्ठी को हम कितना संभाल कर रखते हैं, है ना। तो इसीलिए आज मनाया जाता है विश्व डाक दिवस, जो कि हर साल 9 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। क्योंकि इसे अगर साल की बात करूं तो 1874 में यूनिवर्स पोर्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ यही है, दुनिया भर के डाक सेवाओं की अहमियत बताना। चिट्ठी हो, जरूरी कागज हो, या फिर घर से आया कोई पार्सल, डाक सेवा आज भी लोगों को जोड़ने का काम करती है। और हम देखिए, हर कोई ना कोई, देखिए अगर आप अब जो चिट्ठी तो बहुत कम लिखा जाता है, चिट्ठी तो लिखते ही नहीं है, लेकिन सामान हमें पार्सल जरूर करते हैं। चाहे आप कहीं भी पार्सल करें, आप घर से दूर रहते हैं और आप चाहते हैं कि घर पर मुझे ये चीज़ पहुंचानी है, तो आपके आसपास में पोस्ट ऑफिस होते हैं, आप जाकर वहां पोस्ट कर सकते हैं। अगर मुरादाबाद की बात करूँ तो जो हमारा रेलवे स्टेशन है वहीं पर पोस्ट ऑफिस है, आप जाकर वहां से कुछ भी पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट कर सकते हैं। बस अपना नाम और जहाँ भेज रहे हैं उसका एड्रेस जरूर डालना पड़ता है, इस चीज़ का पक्का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और लास्ट अब आपने कब पोस्ट किया था आपको याद ही आ जाएगा, क्योंकि जब मैंने बता दिया पोस्ट डे यानी कि डाक दिवस डे मनाया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा कड़क क्वेश्चन था, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का आपने नाम बताना था। सोचिए, लौट कर आते हैं क्योंकि भैया अब आप सभी की बारी है, मैसेज शामिल करने की बारी है। और जिसको चाहिए डांडिया नाइट का पास तो लग जाइए, और एक ही बोली लगा रे दिल लगा रे। जल्दी जल्दी बताइए भैया, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन।

0: रोग, फिलहाल प्रेम लोग तो, रोग तो नहीं लगा भैया, बस सोचना पड़ रहा है, दिमाग पर जोर डालना पड़ रहा है कि आखिरकार इसका राइट आंसर होगा तो होगा क्या। कड़क क्वेश्चन था आज का हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का आपने नाम बताना था। अगर आप राइट आंसर के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं तो आपको डांडिया नाइट में एंजॉय करने का मौका मिल सकता है, जिसमें भजन से लेकर हर चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगा, एंजॉय करने का मौका। और साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारा अपडेट मेरे पास, जिसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, रील वायरल हो रहे हैं भैया। तो आखिरकार क्या है जो भैया जमकर वायरल हो रहे हैं भैया, चलिए देखते हैं एक बार क्या है क्या नहीं है। दोस्तों जरा सोचिए, जब पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ जाए, चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगे और नजारा ऐसा हो कि नजारे यानी कि अपनी नजरे हटाने का मन ही ना करे, बस दिल से एक ही आवाज आए कि इनको निहारते रहो जितना हो सके। जी हाँ, उत्तराखंड से बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप इंस्टाग्राम अगर खोलेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है, यानी कि पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं और ठंड भी बढ़ गई है वहां पर। लेकिन दोस्तों हेमकुंड साहिब की कपट यानी कि जो गेट है वो 10 अक्टूबर यानी कि कल से बंद हो जाएगा और सर्दियों के लिए बंद होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ श्रद्धालु दर्शन के लिए जाना अगर चाहते हैं तो एक बार जाने से पहले मौसम प्रशासन से सलाह जरूर ले ले, तभी आप जाए। पता चले आप गए और कपट बंद मिला तो भैया बिना दर्शन करे ही आना पड़ेगा आपको, ये देख लीजिए। क्योंकि जब भी बर्फबारी और मौसम खराब होता है तो कपट बंद कर दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और बाद में आप दर्शन करने जा सकते हैं। फिलहाल हम सब पता क्या करते हैं कि हम ना बर्फ देखने के तो बड़े शौकीन हैं, लेकिन बहुत से होते हैं कि पहाड़ों में ही जाते हैं, वहां जाकर एंजॉय करते हैं, और बहुत से होते हैं कि रजाई में बैठकर गर्मा गर्म चाय के चुस्कियों के साथ बस रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं कि वाओ काश मैं भी इस पहाड़ों में जा पाता, मैं भी जाती, लेकिन क्या करूं ठंड बहुत ज्यादा है। देखिए अगर आप पहाड़ों में घूमना चाहते तो भैया देखिए ठंड क्या, आप इंजॉय कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं जाइएगा। आप दर्शन करना चाहते बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब तो मत जाइएगा क्योंकि कपट बंद होने वाले कल से। चलिए अब आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है, और सबसे पहले हमारे पास किन का मैसेज आता है। नमस्कार रीना जी, राधे राधे राधे राधे सर, बहुत प्यारी लाइनें भी लिखते हैं। ये लिखते हैं सलाह के 100 शब्द से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है, कुछ बातें समझने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ में आती है। बिल्कुल जी सही कहा आपने, कुछ बातें जब खुद के इंसान पर बीतती है ना तभी पता चलता है कि अपना और पराया कौन है, और कुछ चीज की अहमियत भी तभी पता चलती है, क्योंकि हम जिस चीज को आसानी से पा लेते हैं ना उसकी अहमियत नहीं होती है, जिस चीज को पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं ना उसकी अहमियत हमें पता होती है। संध्या की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये कनेक्ट होते हैं हमारे साथ भूपेश शर्मा जी नगर पंचायत पागबड़ा से, और ये हमारे साथ राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। इनका कहना है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल जी आप होते हैं हमारे शो के विनर, तो सर अगर आप डांडिया नाइट में जाना चाहते हैं, म्यूजिक और भी हर चीज का आप आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप स्टूडियो आकर अपना जो डांडिया नाइट का पास है आप वो लेकर जा सकते हैं। 13 और 14 अक्टूबर को ये चलने वाला है डांडिया नाइट, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं और अपना पासेस आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं राइट आंसर के साथ। सनी मुंबई महाराष्ट्र से ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। हावड़ा जंक्शन है जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी हमारे साथ कनेक्ट होती है। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग, और ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती हैं हावड़ा जंक्शन। अगले मैसेज की बात करूं तो
1: है ये प्रेम आग तो।
0: दिवेश जी हमारे साथ कनेक्ट होती है हावड़ा जंक्शन है। अगले मैसेज की बात करूं तो रीना जी जय श्री राम गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। रीना जी वेरी गुड इवनिंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हैं आप, जानकारी भी बहुत और अमेजिंग लेकर आते
1: हैं। मुझे घर बाहर लगे।
0: और जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है उसका राइट आंसर होता है हावड़ा जंक्शन, जो कि पश्चिम बंगाल के में उपलब्ध है। ओके, बताने के लिए। अगले मैसेज की बात करूँ तो मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली जी, मेराज अंसारी जो कि इनके दोस्त है। रीना जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो हम सुन रहे हैं, इवनिंग मस्ती शो बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं आप, और ये भी राइट आंसर के साथ हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हावड़ा जंक्शन। अगले मैसेज की बात करूँ तो हो क्या बात है, हावड़ा जंक्शन है। विकी सागर जी ने भी राइट आंसर दे दिया है, पश्चिम बंगाल में है उपस्थित। अगले मैसेज की बात करूँ तो हावड़ा जंक्शन, कोमल शर्मा जी भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुई थी। क्वेश्चन आपके अंदर है, आपके जहन में, तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम।

0: जंक्शन है जी, जो कि कोलकाता। ओके, ये हमारे साथ नेहा शर्मा जी कनेक्ट होती हैं IFTM यूनिवर्सिटी से। ओके,
1: बीच बाजार दिल।
0: ओहो मैडम जी, आप थोड़ा ना मैसेज करने में लेट हो गई, अदरवाइज आप डांडिया के पासेस जीत सकती थी। कोई बात नहीं, कल फिर से हम पूछने वाले क्वेश्चन, अगर आप देते हैं राइट आंसर तो बन जाते हैं विनर और आपको डांडिया नाइट एंजॉय करने का मौका मिलेगा। चलिए अभी के साथ बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए और साथ ही साथ रामलीला ग्राउंड में आते रहिए मेला देखने के लिए विद फैमिली के साथ। बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम एंड सेम जगह।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
5: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विशेष रेडियो कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आज की हमारी यात्रा हमें लेकर आई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जिले में जहाँ इतिहास भी है, संस्कृति भी है और बदलते समय के साथ विकास की एक नई तस्वीर भी है।
1: जी हाँ, आज बात हो रही है बिजनौर की, एक ऐसा जिला जिसकी पहचान उसके ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ गाँव, खेतों, मेहनतकश परिवारों और अपने जीवन सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से भी है।
0: बिजनौर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। लगभग 4,049 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले में 2,500 से अधिक गांव हैं। यहां की ग्रामीण आबादी की जिंदगी खेती, छोटे व्यवसाय और स्थानीय अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई है।
1: और बिजनौर की बात हो तो इतिहास का जिक्र कैसे ना हो। विदुर कुटी, नजीबुद्दौला का किला और यहां के दूसरे ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थल इस जिले की पहचान को और भी खास बनाते हैं।
0: लेकिन आज की हमारी कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं,
1: आज की कहानी है उस बदलाव की जो सरकारी योजना के माध्यम से आम परिवारों के जीवन तक पहुंच रहा है।
0: और इस बदलाव की एक महत्वपूर्ण कहानी है निरक्षित महिला पेंशन योजना की।
1: क्योंकि जब परिवार की जिम्मेदारी अकेले किसी महिला के कंधे पर आ जाती है तब छोटी सी आर्थिक सहायता भी उसके लिए बड़ा सहारा बन सकती है।
0: यही वजह है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं
1: बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति को यह भरोसा देना भी है कि मुश्किल समय में व्यवस्था उसके साथ खड़ी है।
0: बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के संचालन और उनके लाभ को पात्र लोगों तक पहुंचाने पर लगातार काम किया गया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिनका उद्देश्य पात्र नागरिकों तक सरकारी सहायता और सुविधा पहुंचाना है।
0: लेकिन किसी योजना की सफलता केवल योजना बनाने से नहीं होती, उसके लिए जरूरी है सही योजना, सही प्रक्रिया और उसका जमीन पर प्रभावी क्रियान्वयन।
1: और यही जिम्मेदारी प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी तक ही होती है।
0: बिजनौर में भी समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन से जुड़े तंत्रों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी और प्रक्रिया को लाभार्थी तक पहुंचाने का काम किया जाता है।
1: यानी लखनऊ में बिना योजना जब बिजनौर के किसी गांव या मोहल्ले में रहने वाली महिला तक पहुंचती है तब वह योजना कागज से निकलकर उसके जीवन का हिस्सा बनती है।
0: और यही बदलाव की असली तस्वीर है जहां सरकारी व्यवस्था, प्रशासनिक प्रयास और लाभार्थी की जरूरत एक दूसरे से जुड़ते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल के माध्यम में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित विभिन्न सामाजिक पेंशन योजना की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
0: और बिजनौर में निरक्षित महिलाओं के लिए पेंशन वितरण योजना भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल है।
1: सबसे अहम बात, पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ लेने के लिए किसी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे देने की जरूरत नहीं।

0: सही जानकारी, सही प्रक्रिया और पात्रता के आधार पर मिलने वाली सहायता किसी महिला के जीवन में आत्मविश्वास का आधार बन सकती है।
1: आइए सुनते हैं एक ऐसे ही लाभार्थी की आवाज।
2: मैं रेडियो VKIT 90.4 FM आवाज बिजनौर की। आज हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थी से, जो इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में उनके विचार व उन्हें मिलने वाले लाभ। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आप सबसे पहले हमारी श्रोताओं को बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं।
3: मेरा नाम संजय रानी है, मंडावर बिजनौर से आवाज करके रहने वाली।
2: मैम, क्या आप निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ ले पा रही हैं?
3: जी मैडम।
2: मैम, आप मुझे बताइए कि इस योजना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला?
3: जी मैडम, ये हमारे समाज कल्याण ब्लॉक है, इसमें हमें पता चला तो हमने अपना फॉर्म आवेदन किया है सर, तो हमें यहाँ से लाभ मिला समाज कल्याण से।
2: क्या आपको इस योजना का लाभ समय से समय तक मिल रहा है?
3: जी मैडम, हाँ हमें समय पे मिलता है। तीन महीने में 3,000 रुपए, 1 महीना 1,000 रुपए आ जाते हैं।
2: मैम, आपसे कोई शुल्क लिया जाता है इस राशि के मिलने से या आवेदन प्रक्रिया में कभी किसी ने कोई शुल्क मांगा हो?
3: नहीं मैडम, हमसे कोई शुल्क नहीं लिया।
2: क्या मैम आप संतुष्ट हैं जो लाभ सरकार दे रही है आपको, उससे हो रहा है, आपका उपयोग हो रहा है ये लाभ?
3: जी हाँ मैडम, हम संतुष्ट हैं इस लाभ से। हम जो हमें पेंशन आती है तो हम क्या अपने बच्चों को मतलब पैसे निकाल के अपना खर्चा कर लेते हैं। सरकार हमारे लिए यही कर रही है, यही बहुत है। हम तो चाहते हैं कि और अच्छा हमें मतलब मान देनी है पेंशन।
2: जी मैम, अगर आपसे कोई और औरत है जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है, वो आपसे इस बारे में पूछे, तो आप उसको कैसे और क्या बताएंगे?
3: जी मैडम, मुझसे पूछती है, कई महिलाओं ने पूछा भी है मेरे से कि ये आपकी पेंशन कहाँ से आती है। मैंने काफ़ी महिलाओं को बताया कि ये वहाँ समाज कल्याण में जाओ, जनसेवा केंद्र से आवेदन कराओ, आवेदन करा के 3-4 महीने में आपकी पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी।
2: मैम, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, इसके आवेदन प्रक्रिया से लेकर इसके लाभ के पैसे मिलने तक क्या आपको कोई परेशानी हुई है?
3: नहीं मैडम, हमें कोई परेशानी नहीं हुई।
2: ठीक है, धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि योजना का लाभ मिल रहा है और सरकार आपके लिए ये लाभ वाली चीजें कर रही है। धन्यवाद। देखिए आप सभी कैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना जो सरकार के द्वारा संचालित की गई है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसका लाभ इन सभी महिलाओं को मिल रहा है जो इनके घर में उपयोग हो रहा है। धन्यवाद करना चाहेंगे हम सरकार का और
3: मैडम धन्यवाद सरकार का।
2: थैंक यू सो मच। रेडियो VKIT 90.4 FM आवाज बिजनौर की। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी में आपका स्वागत है। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थी से, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम व आप कहाँ से आई हैं यह बताएं।
4: जी मेरा नाम बाला देवी, गीता नगरी बिजनौर से आया हूँ।
2: आप बिजनौर की ही रहने वाली हैं। मैम, जो योजना है निराश्रित महिला पेंशन योजना, क्या आपको इसका लाभ मिल रहा है?
4: जी इसका लाभ मिल रहा है।
2: आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी कि आपको इस योजना के बारे में कब और कैसे पता चला?
4: जी हमें खुद ही पता चला था समाज कल्याण विभाग से।
2: मैम, आपने इसका आवेदन कैसे किया?
4: जी ऐसे किया था समाज कल्याण विभाग से,
2: विभाग से जो ये विभाग बता रही हैं आप, इसी से आपने आवेदन किया। क्या उस दौरान किसी भी व्यक्ति ने कोई परेशानी की इस बारे में कि ये ना हो, आवेदन प्रक्रिया ना हो पूरी, या कोई शुल्क लिया हो आपसे?
4: नहीं नहीं, हमसे कोई शुल्क लिया पता नहीं था, यहाँ यहाँ का पता चला था।
2: अच्छा, आपको जो ये लाभ मिल रहा है इसका आप उपयोग कैसे करते हैं अपने घर में?
4: मुझे खर्चे भी काम आ रहा है।
2: आप क्या करती हैं मैम? कोई और औरत अगर आपसे जानना चाहे इसके बारे में तो आप उसको क्या बताएंगे?
4: यही बताएंगे कि समाज कल्याण विभाग से पता कर हमारे सारा पता चलेंगे।
2: क्या आप इस मिलने वाले सरकार से लाभ, जो सरकार से लाभ मिल रहा है आपको, क्या आप इससे संतुष्ट हैं?
4: जी बहुत
2: धन्यवाद मैम, आपने जो हमें ये जानकारी दी। तो देखिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उससे लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, उनके घर तक पहुँच रहा है और वो संतुष्ट भी है। धन्यवाद।
1: आपने सुना, एक महिला के लिए पेंशन की राशि सिर्फ एक रकम नहीं होती।
0: कभी उससे घर की छोटी जरूरत पूरी होती है,
1: कभी दवा का खर्च निकलता है
0: और कभी अपने पैरों पर खड़े रहने का आत्मविश्वास मिलता है।
1: यही तो सामाजिक सुरक्षा का असली अर्थ है, सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर।
0: और जब सरकारी विभाग लाभार्थी तक योजना की जानकारी और प्रक्रिया पहुंचाते हैं तो सरकारी योजना और आम नागरिक के बीच की दूरी कम हो जाती है।
1: यही वजह है कि किसी भी जन कल्याणकारी योजना की सफलता में केवल नीति और बजट ही नहीं
0: बल्कि उसे जमीन पर लागू करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन की मेहनत भी महत्वपूर्ण होती है।
1: जब योजना की जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंचे, आवेदन की प्रक्रिया समझाई जाए और पात्र लाभार्थी को उसका लाभ मिले,
0: तब विकास का असर सरकारी कागजों से निकलकर सीधे परिवार की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिजनौर की इस विकास धारा में उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना भी अपनी भूमिका निभा रही है।
0: एक तरफ प्रदेश स्तर पर योजनाओं का संचालन,
1: दूसरी तरफ जिला स्तर पर उनका क्रियान्वयन
0: और तीसरी तरफ लाभार्थी तक पहुंचती सहायता,
1: यही तीनों मिलकर किसी योजना को वास्तविक बदलाव में बदलते हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी पहलों का वास्तविक मूल्यांकन भी इसी बात से होता है कि उनका लाभ पात्र परिवारों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।
1: और बिजनौर की ऐसी कहानी हमें बताती है कि जब प्रशासनिक व्यवस्था और लाभार्थी की जरूरत आपस में जुड़ती है तो बदलाव महसूस किया जा सकता है।
0: लेकिन बिजनौर की तस्वीर सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है,
1: यहाँ गाँव की सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा विकास के अलग अलग पहलुओं को जोड़ते हैं।
0: एक तरफ खेतों में मेहनत करता किसान,
1: दूसरी तरफ अपने परिवार को संभालती महिलाएं,
0: आगे बढ़ने का सपना देखते हुए
1: और बेहतर सुविधाओं की उम्मीद करते बुजुर्ग,
0: यही मिलकर बनते हैं बिजनौर की विकास गाथा।
1: और इस गाथा में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उन लोगों तक सहारा पहुंचाने का काम करती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
0: निराश्रित महिला पेंशन योजना की कहानी हमें यही बताती है कि विकास तभी सतर्क है
1: जब उसका लाभ समाज के जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे,
0: जब सहायता लेने के लिए किसी आर्थिक खर्च का बोझ ना हो
1: और जब लाभार्थी को सही जानकारी और सही मार्गदर्शन मिले।
0: बिजनौर की धरती पर बह रही विकास की धारा
1: इतिहास की विरासत को साथ लेकर वर्तमान की जरूरत को समझते हुए
0: और बेहतर भविष्य की उम्मीदों को आगे बढ़ा रही है,
1: यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: और यही थी बिजनौर में बहती विकास धारा की कहानी,
1: एक ऐसी कहानी जिसमें योजनाएं हैं,
0: लाभार्थी है
1: और सबसे बढ़कर बेहतर जीवन की उम्मीद है।
0: आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जीते। और झांसी में कल से शुरू होगी 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। 3 डिवीजन की 29 टीमें लेंगी हिस्सा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में विकास, औद्योगिक निवेश, कृषि, रोजगार, तकनीक और जन कल्याण से जुड़े 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की यात्रा सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना से संचालित रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नए आत्मविश्वास के साथ चतुर्मुखी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
1: कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नए आत्मविश्वास के साथ चतुर्मुखी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद इस बात के लिए सदैव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी रहेगी कि उन्होंने राज्य के विकास को निरंतर अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से आज उत्तर प्रदेश विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का नया मॉडल बनकर उभरा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश को मिली एक बड़ी सौगात है। ये एयरपोर्ट आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, पर्यटन और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। इसी भावना के साथ कैबिनेट ने एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है।
1: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी की आभारी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एवं भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। अतः यह मंत्रिपरिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास करती।
0: कैबिनेट बैठक में दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। बैठक में प्रदेश की नगरीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत लखनऊ, कानपुर सहित प्रदेश के 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
2: जनपद भदोही में भारतीय संत परंपरा के महत्वपूर्ण संत एवं समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के द्वारा किए गए सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान के दृष्टिगत उनकी स्मृति एवं सम्मान में जनपद भदोही का नाम परिवर्तित किए जाने पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि जनपद का नाम संत रविदास नगर भदोही रखा जाए। आखिर में उनकी देखिए विशेष बात यह है कि उनका नाम भी रहेगा संत रविदास जी का, भदोही भी रहेगा।
0: बैठक में ब्याज माफी योजना 2026 लागू करने और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान क्रय नीति को भी मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 10 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य शामिल हैं। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। राज्यसभा सदस्यों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना था। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सदस्यों में धर्मपाल सिंह, राम प्रकाश पाल, श्रुति गंगवार, विद्यासागर सोनकर, प्रियंका सिंह रावत, राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडे और राम प्रताप सिंह शामिल हैं। समाजवादी पार्टी

0: सदस्य रामगोपाल यादव और धनराज नाथवानी राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 अक्टूबर को होने वाले सीजेपी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाएं पूरी तरह बंद न की जाएं। ये निर्देश दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास बंद करने और रेलवे के कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द करने के फैसले के बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से जारी रहनी चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आप जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
1: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
2: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है।
3: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे।
1: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झांसी में कल से 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 शुरू होगी। इसमें 3 डिवीजन की कुल 29 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का समापन 21 अक्टूबर को होगा। उत्तर प्रदेश हॉकी के अध्यक्ष और खेल निदेशक डॉ आरपी सिंह ने आज लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश को इसकी मेजबानी मिलना गौरव की बात है।
4: उत्तर प्रदेश तो सदैव खेलों को दुनिया में विकास कर रहा है और उसी के सापेक्ष हमने वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप ले लिया जिसका कल उद्घाटन हो जाएगा 10 तारीख को और 21 अक्टूबर को उसका समापन किया जाएगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव समेत 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जीते। और झांसी में कल से शुरू होगी 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। 3 डिवीजन की 29 टीमें लेंगी हिस्सा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: दिस साइड आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
3: देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो सबसे बड़ी चीज है, ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
2: सही का।
3: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
2: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
3: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
3: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
2: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
3: देखिए, आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटम ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटम ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटम ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटम ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो बात, जो अदालत ने जो बात कह दी है, आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
2: शो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटम्प ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
3: देखिए, कंटम्प ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक सिविल कोर्ट का कंटम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कोर्ट, सिविल कंटम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है, तो उसको जो है सिविल कंटम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटम्प्ट है, तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
2: सुना सकती है। बिल्कुल।
3: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
2: अगर कोई व्यक्ति कंटम्प ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
3: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है, एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकते। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पे कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
2: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
3: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है ये। भारत में कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
2: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
3: हाँ, अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पर जो हैबियस कॉर्पस रेट होती है, ये रेट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको। थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके अगेंस्ट में विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है, ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये इस सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाईकोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पे बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है
2: या नहीं है।
3: हाँ, तो मुख्यतः ये 5 रेट होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते हैं।
2: अंत में सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
3: देखिए, कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है। हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ.
2: परफेक्ट हूँ बिल्कुल.
3: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं. तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन्स को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स
2: क्या है हमारे. बिल्कुल बिल्कुल सर. सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी. मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
3: मेरे को माना तो बाद ही एक यूनिवर्सिटी से मिली थी और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में माना तो बाद ही मिली हुई है.
4: वैसे
3: बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और एलएलबी मेरा है और आई एम परसुइंग एलएलएम.
2: तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
3: देखिए बाकी सब तो ठीक है. मेरा वो बेसिक जो है, मेरा खुद का ड्रीम था मुझे एमकॉम करना है, उसके बाद मेरे को एमबीए करना है. लेकिन एलएलबी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा.
2: हाँ सर वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
3: बड़ी इंटरेस्टिंग है. किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में, किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कंप्लेंट करी थी.
2: ओके.
3: और वो फेक कंप्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल एथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी. और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा. फिर जब मेरे को, मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं. मैं इसको
2: बिल्कुल, क्या बात,
3: क्योंकि
2: है?
3: इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो. तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं. आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने.
2: बिल्कुल.
3: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया. तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा और मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में.
2: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं.
3: बस एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी.
2: और कहते हैं ना सर, एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है.
3: मिलती है. और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, सही.
3: तो मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको मुझे करना भी चाहिए.
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में, आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में. तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी रद्द। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन अनिवार्य, सरकार की प्राथमिकता, सभी निर्माण परियोजनाओं में प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित उपाय प्रभावी ढंग से लागू हों। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी के डॉक्टर बीआर अंबेडकर सीएम श्री स्कूल में अत्याधुनिक स्टेम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित लैब का उद्घाटन किया। और दिल्ली यातायात पुलिस ने भाटी माइन स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर के आसपास यातायात प्रबंध लागू किए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह निर्णय दोनों रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन भी आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। निगम ने कहा कि इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर चलेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कल होने वाले सीजेपी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाएं पूरी तरह बंद न की जाएं। न्यायालय ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से जारी रहनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को मेट्रो रेल सेवाओं से जुड़े फैसलों की जानकारी सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर News on AIR Official को सब्सक्राइब करें।

0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। इसके अलावा निर्माण कार्य से फैलने वाले धूल प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन अनिवार्य है और सरकार की प्राथमिकता है कि सभी निर्माण परियोजनाओं में प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित उपाय प्रभावी ढंग से लागू हों। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की रणनीति रोकथाम, नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई पर आधारित है। उन्होंने कहा कि निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल को नियंत्रित करना इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: राजधानी में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए DPCC द्वारा निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नियमित और औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान परियोजना स्थलों पर निर्धारित धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन की जांच की जा रही है। नियमों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं 1 अक्टूबर से वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए NoPUCC नो फ्यूल पहल को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य निर्माण कार्यों को बाधित करना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्य और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चले। रिशु के साथ सौम्य शरण, प्रादेशिक समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली में आयोजित 57वीं GST परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने GST परिषद द्वारा प्रस्तावित विभिन्न सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य देश में ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जो पारदर्शी, कुशल और कारोबार के अनुकूल हो। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि बैठक में GST व्यवस्था को सरल और करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि रिफंड की प्रक्रिया स्वचालित होने से कारोबारियों को उनका पैसा समय पर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विश्व डाक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भारतीय डाक ने पीढ़ियों से देश के करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक लेख साझा किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सुशासन के लिए महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं। लेख में प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन का उल्लेख किया गया है, जो सेवा और भविष्य की आकांक्षाओं को साकार करने के संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी स्थित डॉ B.R. अंबेडकर CMC स्कूल में एक अत्याधुनिक स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित लैब का उद्घाटन किया। ये दिल्ली सरकार और शिखर धवन फाउंडेशन के सहयोग से संचालित स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित की गई दूसरी स्टेम लैब है। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि ये लैब सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए व्यवहारिक ज्ञान, तकनीकी कौशल और नवाचार की क्षमताएं विकसित करेगा। इसके अलावा श्री सूद ने दिल्ली सरकार की विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं की 32 छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरित की। उन्होंने कहा कि ये पहल विद्यार्थियों को आधुनिक और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ छात्राओं के सुरक्षित तथा सुविधाजनक आवागमन को सुनिश्चित करेगा। श्री सूद ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा को सिर्फ कक्षा और पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि वो सोचे समझे और सवाल करें।
2: हमारी सरकार दिल्ली के बच्चों की एजुकेशन को सिर्फ क्लासरूम और टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं रखना चाहती है। हम चाहते हैं बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं, सोचे, सवाल पूछे, एक्सपेरिमेंट करे, और कोई बुरी बात नहीं है फेल हो, फिर कोशिश करे और आखिर में डिस्कवर करे। आज अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, आज अपॉर्चुनिटीज को मेहनत के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
0: इस अवसर पर मौजूद पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री आशीष सूद ने आज राजधानी में कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत से भी मुलाकात की। श्री सूद ने कहा कि पवन सहरावत ने एशियन गेम्स के पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पवन सहरावत का नेतृत्व और दृढ़ संकल्प देश के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग ने आज प्रोफेसर अशोक प्रसाद मेमोरियल लेक्चर के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। इस अवसर पर डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि एक शिक्षक की असली विरासत वो विद्यार्थी होते हैं जिन्हें वे प्रेरित करते हैं, पढ़ाते हैं और जिनका मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में पर्यावरणीय नवाचार के महत्व पर भी बल दिया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आज डेंगू के बढ़ते मामलों पर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में डेंगू की रोकथाम, कीटनाशक दवाओं के भंडार, दवाओं की उपलब्धता तथा फॉगिंग व्यवस्था पर चर्चा हुई। समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम समयबद्ध तरीके से उठाए जाएं। श्रीमती शर्मा ने आगामी त्योहारों के दौरान मंदिरों तथा रामलीला स्थलों के आसपास विशेष स्वच्छता और मच्छर नियंत्रण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नवरात्र के दौरान मंदिरों के आसपास मांस की दुकानों को बंद रखने के निर्देशों का भी सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति यूनिसेफ के सहयोग से कल नई दिल्ली में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। एक रिपोर्ट।
4: दो दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी, कानून लागू करने में आ रही चुनौतियों की पहचान और अगले 10 वर्षों में किशोर न्याय तथा बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कानून से संघर्ष कर रहे बच्चों के अधिकारों, गंभीर अपराधों के मामलों में किशोर न्याय बोर्डों द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक आकलन, जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा, संस्थागत देखभाल तथा उनके पुनर्वास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय मजबूत करने, बच्चों के अनुकूल न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और बच्चों के प्रभावी पुनर्वास तथा उन्हें समाज में दोबारा शामिल करने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज अपने आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया। इस अवसर पर मंत्री ने क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं, शिकायतों और जनहित से जुड़े विषयों को सुना। श्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का त्वरित तथा प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। दिल्ली यातायात पुलिस ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास आयोजन कार्यक्रम के मद्देनजर भाटी माइन स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर के आसपास विशेष यातायात प्रबंध लागू किए हैं। आज से रविवार तक चलने वाले इस कार्यक्रम में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। पुलिस ने बताया कि इस दौरान भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। यातायात पुलिस ने लोगों से छतरपुर रोड से बचने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी रद्द। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन अनिवार्य। और दिल्ली यातायात पुलिस ने भाटी माइन स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर के आसपास यातायात प्रबंध लागू किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
4: लोग मुझसे कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, अच्छे लोगों से मिलोगे तो अच्छा ही लगेगा ना। हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। आनंद के साथ जुड़ चुके हैं एक और खूबसूरत से माहौल में, और ये माहौल आज का और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, और भी ज्यादा शायराना वाला जो ये माहौल है अब होने वाला है। और आज की जो ये अमेजिंग सी वाइब है, इसमें हम सिर्फ शायरी नहीं, बहुत सारी चीजें आज आपके लिए लेकर आए हैं। और एक बहुत ही कमाल के शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, गीत संगीत का सिलसिला भी चलेगा और प्रोग्राम जो है ये और खूबसूरत हो ही जाता है जब ये जनाब हमारे बीच में आते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ, जरूर मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको इनकी बात या मेरी बात कुछ भी पसंद आए तो आप इस बीच हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो आइए सर का स्वागत करते हैं। सर, FM मुरादाबाद के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप?
5: धन्यवाद अनंत, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसा कि यह माहौल भी है, मौसम भी है।
4: हाँ जी, हाँ जी,
5: तो इसमें आपने मुझे याद किया, आपने मुझे अपना समय दिया। श्रोताओं के लिए मैं उनसे रूबरू होने का मेरा सौभाग्य मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है।
4: क्या बात है, और आपने अपना नाम तो बता ही दिया होगा।
5: नाम तो कोई नया नहीं है,
4: लेकिन हमारे लिस्टनर को, हमारे जो लिस्टनर है ना, वो हर बार नए नए होते हैं।
5: जी, तो मेरा
4: पता तो होना चाहिए।
5: जी जी, मैं बता दूं, खाकसार को मनोज वर्मा मनु कहते हैं, आपके ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, और जैसा कि पहले भी ये बात हो चुकी है, शायरी में और कविता में दोनों में ही कुछ कहने की, कुछ सीखने रहना प्रयास रहता है।
4: बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है हर शायर के अंदर, हर कलाकार के अंदर ये खूबसूरत प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए, है ना?
5: जी,
4: हम जिस फील्ड में हैं, यहाँ पर हर दिन एक नई चीज, हर घंटे एक नई चीज जन्म लेती है।
5: नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये सृजन की बात है।
4: हाँ।
5: जैसे प्रकृति, जैसे नेचर अपने आप को क्षण क्षण चेंज करती है, वैसे ही जैसे जैसे प्लॉट मिलते हैं, वैसे वैसे एक कलाकार या एक लेखक या एक शायर या एक गीतकार वहां से उसे उस ऊपर वाले की नियामत से, जो माँ सरस्वती का वरद हस्त उसे प्राप्त होता है, उसके अनुकंपा जो उसे प्राप्त होती है, तो उससे वो बनाता है।
4: क्या बात है, इतनी शुद्ध हिंदी, ये अगर बोलेंगे तो आज मैं अच्छा अनाउंसर बन ही जाऊंगा। मतलब इतनी अच्छी हिंदी तो मैंने पढ़ी नहीं, जितनी आज मैं सीख रहा हूँ।
5: आप ऑलरेडी बहुत अच्छे अनाउंसर हैं।
4: आपसे बात करके मुझे एक चीज लगती है साहब, कि मतलब ऐसा लगता है मैं किसी प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ, साक्षात कोई मेरे साथ मेरा रेडियो साथी बैठा है, क्योंकि आप इतने अच्छे से शब्दों का उच्चारण करते हैं, इतनी बढ़िया वॉइस क्वालिटी है, तो वो थोड़ा सा एक फील हो जाता है मुझे। चलिए आज आपको बताइए,
5: आनंद जी आपकी ये जर्रा नवाजी है,
4: ये तो सर
5: वरना हम इस काबिल कहां।
4: सर ये तो आपका प्यार है,
5: लेकिन ये है कि चूंकि मामला चाहे आपका है या हमारा है,
4: जी जी,
5: उसमें शब्दों से जुड़ा है।
4: बिल्कुल,
5: तो अधिकतर ये कोशिश रहती है कि प्रोनाउंसिएशन उसका सही हो सके, जहां हम अपने उस शब्द को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो उस एनवायरमेंट में बैठने लायक हो, उस बात को अपनी अदा करने लायक हो, तो बस यही हमारी सफलता होती है।
4: यही चीजें सीखने सिखाने में बहुत आनंद आता है आनंद को, और जब ऐसे अच्छे लोग आते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। तो लिसनर, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुन के वापस आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए,

0: तो वेलकम बैक एक बार फिर से मनु जी, मैं आपकी तरफ सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब भी आप स्टूडियो में आते हैं तो आपको यहाँ का वातावरण कैसा लगता है? बाहर निकलने के बाद एक अलग माहौल होता है, स्टूडियो में आने के बाद, माइक के पास करीब आने के बाद आपको कैसा लगता है?
1: जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी एग्जाम हॉल में कोई विद्यार्थी परीक्षाएं देने जाता है।
0: अरे वाह, क्या बात है। लेकिन आपके दिल के करीब है ना, क्योंकि इन सब चीजों से तो आपका जुड़ाव पहले से ही रहा होगा, आई एम श्योर।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल क्या है कि यही तो हमारी जान भी होती है।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: ये जो माइक है, ये जो श्रोता है, तो इसके बिना तो कोई रचनाकार कुछ नहीं है, कोई कलाकार कुछ नहीं है।
0: क्या बात है,
1: उसकी जो जान बसती है वो उसके श्रोताओं में बसती है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो डर भी कि हम अपने श्रोताओं को अच्छे से अच्छा दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें, बस यही चीज है।
0: कई मर्तबा हमने इनसे बात करने का प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया कनेक्शन। फाइनली जैसे तैसे बातचीत करके आज हमने इनको बुला ही लिया। उपस्थिति तो कल ही थी लेकिन किसी कारणवश कल हो नहीं पाए, कल ये बारिश में कहीं भीग गए, क्योंकि आजकल मौसम भी सुहाना हो रहा है। मुरादाबाद की बारिश ऐसी है पता ही नहीं चलता है कब आ जाती है साहब।
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: सुबह में धूप है तो शाम में बारिश है।
1: आजकल मौसम इसीलिए इसी तरह से मेहरबान है।
0: मैंने आज आपको बुलाया, आप समझ रहे ना मेरा इशारा, आज हम अपने श्रोताओं को कुछ नया देने वाले। मौत ना खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है और मतलब बारिश की जो बूंदे है वो कहीं ना कहीं एक शायर के मन के हिसाब से देखा जाए तो कैसी होनी चाहिए, क्या कहता है एक शायर इस मौसम में, क्योंकि हर एक मौसम का अपना एक लहजा होता है सर, है ना, अपना एक मजा होता है हर एक मौसम का।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
0: देखते हैं मनु जी क्या इस पे आपको बताने वाले हैं आज।
1: नहीं बात सही है आपकी, देखिए बारिश का जो मौसम है ये अपने आप में क्या क्या समेटे हुए है, अब मैं क्या बताऊं। दरअसल क्या होता है कि बारिश के इस मौसम में जिसके साथ जो बीती होती है वो वही अनुभव करता है।
0: बिल्कुल सही बात,
1: अगर बात नायक और नायिका से कही जाए तो जिनको अपने साथी की कुर्बत, जिनको सानिध्य हासिल होता है, वो उसी तरह से यहाँ पर प्रफुल्लित होते हैं और जो जुदाई में होते हैं वो वैसे ही बेचैन हो जाते हैं। और अगर हम सोचें कि इसका जो वास्तविक मतलब है तो एक किसान आंख उठा के ऊपर देखता है कि कब ऊपर से बारिश बरसेगी और कब मेरी धरती सोना उगलेगी। तो ये मौसम हर किसी के लिए अपने अलग अलग मानी रखता है, हम शायरों के लिए भी, हम रचनाकारों के लिए भी ये उसी तरह से है।
0: क्या बात है, और उन्हीं में से एक रचनाकार मनु जी हैं, इनके जो शब्द हैं वैसे सर करके बाहर निकल रहे हैं मोतियों की माला की तरह, एकदम एकदम सही फ्लो में और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और यही खूबसूरती होनी भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, गाने का हो, सुनाने का हो, चाहे बोलने का हो, क्योंकि हर किसी में हर एक कला नहीं होती सर, राइट।
1: बिल्कुल,
0: हर किसी की कला बहुत अलग है, हम किसी को जज भी नहीं कर सकते हैं। हर किसी के बोलने का तरीका अलग है, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप पूरी एक पूरी डायरी लेकर आए हैं और बड़ी खूबसूरत लाइनों में आपने कुछ लिखे हुआ है, तो ये आप खुद हैं?
1: हाँ,
0: राइटिंग तो बड़ी प्यारी है सर आपकी, सर्दी में डायरी देख रहा हूँ, बड़ी सुंदर सी क्यूट सी लिख के लेकर आए हैं और काफी पुरानी भी लग रही है मुझे।
1: माँ सरस्वती की कृपा है जो शब्द उतरते हैं,
0: ये पुरानी डायरी है, जरा ये बताएं आप लिसनर को।
1: ये सिलसिला तो चलता रहता है असल से।
0: क्या, अरे क्या बात है दोस्तों, आपको हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन करा सकते हैं। आप महसूस कर पा रहे होंगे हमारी इन बातों से कि हम अभी डायरी खोल रहे हैं और डायरी में जो लिखावट है वो शायद आप महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि एक शायर की कलम से जब बातें निकलती है ना तो वो सिर्फ बातें नहीं होती है, उसमें एक जज्बात होते हैं, राइट, उसमें इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती है।
1: बेशक, अगर ये इमोशंस ना होते तो शायद शायर ना होते।
0: क्या बात, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं। और अभी तो सिर्फ हमारी बातें हुई, अब सिलसिला शुरू होगा, तो सिलसिले से पहले एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे और कुछ मनु जी से बेहतर सुनेंगे। आज मौसम इतना अच्छा है, मौका इतना बढ़िया है, सब कुछ तो हमारे आसपास है, तो इसको और ज्यादा इंजॉय करेंगे। आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही जुड़े रहिए, सुन रहिए FM मुरादाबाद 89.6 RJ आनंद के साथ।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो, आपका अपना फेवरेट देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद, और हमारे साथ मनु जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। ढेर सारी बातें कर रहे हैं। शायद मैं इनका नाम थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट नाम मुझे भी अच्छा लगता है। सर का भी शायद ये प्यारा सा शॉर्ट वाला नेम है, इसको हम ले सकते हैं ना? इजाजत?
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ये मेरा उपनाम है, इसी से मेरे रचनाकार होने का पता चलता है।
0: तो बहुत सारे ऐसे आपके श्रोता और साथी हैं जो आपकी आवाज सुनकर आपका चेहरा इमेजिन कर रहे होंगे, अच्छा ये वही मनु जी हैं जो हमेशा मुस्कान लिए घूमते रहते हैं। जब भी इन्हें मिलो मुस्कुराते हुए मिलते हैं,
1: आप कह सकते हैं।
0: तो अभी जो है हम चाहेंगे सर, अभी आप मुझे ऑफ एयर कोई गीत सुना रहे थे, उसकी दो लाइनें अगर हमारे श्रोताओं के लिए हो जाएं। मौसम इतना अच्छा है, मॉनसून भी कहीं ना कहीं दस्तक दे ही चुका है अब।
1: बिल्कुल, बल्कि अपने शबाब पर है इस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: आपने गीत की बात रखी है तो मौसम से ही मुतालिक मैं एक गीत रखता हूं आपके सामने।
0: जरूर,
1: और बल्कि उसे अपने श्रोताओं के लिए गुनगुनाने की भी कोशिश करता हूं। ये एक देखना है कि मैं कहां तक सफल हो सकता हूं।
0: अरे वाह।

0: खुश नसीब हूँ। मौसम बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ। अब गीत अपने अंतरों में चलता है।
1: जी
0: मैंने जिसे प्यार किया, प्यार का इजहार किया, उसने भी प्यार से मेरे प्यार का इकरार किया।
1: वाह।
0: मैंने जिसे प्यार किया, प्यार का इजहार किया, उसने भी प्यार से इस प्यार का इकरार किया।

0: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये स्त्राव छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
6: लोग मुझसे कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। अभी हम जो है जिक्र कर रहे थे, जैसे कि आपने कुछ अल्फाज सुनाए, कुछ बातें कही, मैं चाहूंगा कि उन्हीं को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
7: हाँ, सही कहा आनंद जी। दरअसल ये गीत का एक मुखड़ा चल रहा था।
6: जी जी।
7: और गीत का एक अपना जो मजा है वो ये है कि जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए
6: 100%
7: तब तक उसकी बात पहुंच नहीं पाती है। तो फिर हम इस बारिश के गीत में थे, इसे मैं कंटिन्यू करूंगा जैसा कि आपका आदेश है। और आप देखें कि किस किस तरह से, किस मोड़ से चीज कहाँ पहुँचती है,
6: क्या बात है।
7: और अपने श्रोताओं के लिए भी ये क्यूरियोसिटी हम बना के रखते हैं।
6: है, आपके पास सब कुछ होता है, यहाँ हर मर्ज की दवा है आपके पास।
7: अरे जरा नवाजी है सर,
6: ले आते हैं पकड़ के।
7: मैं कंटिन्यू करता हूँ
6: जी।
7: मौसम बरसात है वो भी मेरे

0: बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। देखें और एहसास करें
1: क्या
0: कि जब बारिश मसलसल पड़ जाती है
1: जी जी,
0: तो आपने देखा होगा कि बच्चों के भी होठ कांपने से लगते हैं। कोई भी बारिश में जब ज्यादा देर तक टिक जाता है तो होठ बस वो कैफियत आप नजर में रखें और ये संतरे का
1: आप लुत्फ उठाइएगा। आप सोचिए कि आप बारिश में है, इमेजिन करिए खुद को।
0: उसके कांपते लब पे मेरे दिलो जा कुर्बान, भीगती जुल्फ

0: खुश नसीब हूँ। और खुश नसीबी का क्या आलम है
1: जी,
0: देखें अगला अंतरा। वो संग मरमर है, कोहिनूर हीरा है,
1: वाह,
0: उसकी हुस्न अदा और दिल पे हक मेरा है।
1: क्या

0: मौसम बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुशनसीब हूँ।
1: क्या बात है, मजा आ गया सर। मतलब मुझे इतना मजा आया है तो सोचिए हमारे सुनने वालों को कितना मजा आएगा। ये तो आपने नो अपने टैलेंट को छुपा के रखा था ना गाने वाले को, अगली बार हम आपसे पहले गाना ही सुनेंगे। मतलब सच में अमेजिंग यार, इतना बढ़िया आपने गाया। पहले तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है,
2: इतना भी अच्छा थोड़ा सा
1: नहीं। सच में यार मेरे को सुनने में बहुत मजा आया, मुझे पता है हमारे लिसनर को भी बहुत आनंद आ रहा होगा। इतना अच्छा आपने गाया और इतनी गहराइयों से आपने सुनाया, हमें बिल्कुल हमारे सामने पिक्चर चल रही थी। आपने गाना कि वो इमेजिन करना है,
2: इस गीत की सफलता है
1: सच में, लेकिन बहुत
2: हमारे श्रोताओं तक आती है, पहुंच पाई है।
1: जी बिल्कुल।
2: दरअसल क्या है कि इसे तहत में भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन जो इसका रोमानी अंदाज है, जो फील है वो इन गुनगुनाहट के साथ है।
1: क्या बात है,
2: ये एक अलग बात है कि हम रफी साहब
1: लेकिन बट सर आपने जिस तरीके से अपने शब्दों को रखा ना गुनगुनाहट में भी, तो वो एक था उसके अंदर एक चाम किया है, मजा आ रहा है सुनने में। वो वाइब मिल रही थी आपके शब्दों की और आपके गाने की, जो सुर तालमेल थे एकदम बढ़िया वाले थे।
2: अच्छा,
1: तो वो अच्छा लगा मुझे।
2: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया
1: सर, आपका भी शुक्रिया। आप इतनी बार आए लेकिन आपने कभी हमें सुनाया नहीं, ये बड़ी गलत बात है, लेकिन आज लगे हाथ आपने सुनाई डाला, बहुत बढ़िया।
2: हाँ दरअसल क्योंकि मौसम है और मौसम में बात है कि मैंने अभी जिक्र किया कि जब महबूब के साथ होता है तो उसका साथ जिंदगी की सबसे बड़ी नियामत होती है।
1: शायर होते ही महबूबा की बात क्यों करते हैं, मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ क्या? मतलब मैं यहाँ मोस्टली जितने भी इंटरव्यूज कर चुका हूँ, हर कोई महबूबा और मतलब मैं क्या बताऊँ, पहली मोहब्बत, ये सब पे बात होती है ज्यादातर। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार क्या चल क्या रहा है देश दुनिया में, हर किसी ने प्यार किया, मैंने नहीं किया शायद, इसीलिए मेरे को समझ नहीं आता क्या जरूरी है ये सब समझने के लिए प्यार करना।
2: नहीं नहीं, आप क्या जरूरी है, आप चाहें तो छुपा सकते हैं, कोई बात नहीं
1: सर। आप कहना क्या चाह रहे हैं आप देख रहे दोस्तों,
2: लेकिन
1: सर निशाना कहाँ मार रहे हैं?
2: सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, ये रूह से महसूस करने की चीज होती है। और एक बात और होती है, मैं ये बिल्कुल पुख्तगी के साथ बता सकता हूँ,
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: वो बताना चाहता हूँ और ये रखता हूँ कि इश्क नहीं दुनियावी यारो,
1: क्या बात है,
2: इल्हाम ही है रास मिया, रूह से रूहों का रिश्ता है, दिल ने जिसे पिरोया है,
1: क्या बात है।
2: तो ऐसी कंडीशन में कि जब व्यक्ति दुनियादारी के बारे में सोचता है तो वो उस प्रेम को, उस इश्क को, इस जज्बे को फील करना उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है, और जो इसे डीपली सेंटीमेंट्स के साथ फील करता है इस रूहानी एहसास को, वो दुनिया उसके लिए सेकेंडरी हो जाती है।
1: नहीं, सर बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में, ऐसे सारे लिसनर भी खो गए हैं, मैं भी खो गया हूँ, मुझे जागना पड़ेगा कि मैं रेडियो में बैठा हूँ। तो अभी एक काम करते हैं कि अच्छा से गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे, क्योंकि दोबारा के लिए भी सर को दोबारा बुलाना है ना, तो पिटारे को थोड़ा संभाल के रखना है, इनके पास बहुत बड़ी पोटली है, तो उस पोटली में से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी रखी जाए, क्यों मनु जी?
2: अरे बस ये आपकी मोहब्बत है जो
1: अभी अभी हम थोड़ा सा,
2: और हमें भी उस जिंदगी को, उस पास्ट को जीने के लिए
1: बहुत अच्छी बात है, और
2: मजबूर नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस मामले में कि
1: ये शुक्राना जो है एक कप चाय से होगा, ऐसे नहीं होगा, खाली खाली शुक्राने से काम नहीं चलता मनु जी, है ना?
2: क्या बात है, हाँ मौसम भी इजाजत दे रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, तो हम बिल्कुल आपसे अभी इजाजत नहीं ले रहे, लेकिन एक गाने की इजाजत जरूर चाहते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, और अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप फरमा सकते हैं साहब, अपने दिल की बात हम तक रख सकते हैं हमारे मैसेजेस के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं। जाइए अपने मैसेज बॉक्स में, टाइप कीजिए अपना नाम और अपना प्यारा संदेश, उसको छोड़िए ना हमारे नंबर पे 9837896896 9837896896 पर।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप।
2: इन्हें से इनकार किया, सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गईं। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
3: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
2: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सरायकाली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपद क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं

0: को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाण पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमरीकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got licenses.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
5: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
6: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का ये विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
7: सेमीकंडक्टर जर्नी,
8: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
7: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
5: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
7: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां है, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुद्दुचेरी में ततान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
10: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
9: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्त, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका अपना अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। तो दोस्तों, शुक्रवार आ चुका है, यानी हफ्ते भर की टेंशन को बोल दो भाई, अब सोमवार को मिलना, क्योंकि भाई अब तो ना ऑफिस की टेंशन, ना ही कोई बात होगी, ना बॉस की डांट का कोई हिसाब होगा, और आज होगा दोस्ती का दरका, प्यार का छौक और शायरी की मिठास। तो मस्ती फुल ऑन है। अगर थोड़ी सी आवाज़ कम है ना तो बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि शुक्रवार को सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं, शुक्रवार तो दिल का वो नोटिफिकेशन है जो कहता है भाई अब थोड़ा जी भी ले। और मेरे दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके लिए, अगर आपको आज शाम अपने सबसे खास दोस्त, हाँ बहुत ही खास, जैसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने का मौका मिले, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? चाय की टपरी पर, लॉन्ग ड्राइव पर, गोलगप्पे की दुकान पर, या किसी ऐसी जगह जहाँ पुरानी यादें ताज़ा हो जाए? तो हमें अपना जवाब भेजिए 9837896896, क्योंकि आज शो में होंगी बातें, वो भी दिल की जैसे हर बार होती हैं, और किस्सों की जहाँ पे लगेंगे खूब ठहाके। शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। शुक्रवार की शाम है, चेहरे पे मुस्कान रहने दो, दोस्तों के नाम आज की हर एक दास्तान रहने दो, दुनिया की फिक्र तो चलती रहेगी उम्र भर, आज दिल को थोड़ा बेफिक्र और जवान रहने दो। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं अपने पहले लिसनर से, पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं।

0: हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? हेलो
1: हेलो
0: सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका?
1: नरेंद्र सिंह नाम है और।
0: तो नरेंद्र जी, क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: हम लेटे पड़े हैं।
0: लेटे पड़े हैं? पंखा चल रहा है या कूलर चल रहा है नरेंद्र जी?
1: भैया पंखा चल रहा, कूलर वाले एसी वाले नहीं है हम।
0: तो क्योंकि आज मौसम भी ऐसा हो गया ना, जो थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है और बीच में इतना गीला कर दिया उसने हम सभी को कि भैया अभी तो पहले उसी से फुर्सत नहीं पा रहे हैं। तो नरेंद्र जी, आप बताइए कोई ऐसी बात जो दिल के बहुत करीब हो और सभी श्रोताओं के साथ आप साझा कर सकते हो उसे।
1: क्या बात बताएं, पुरानी बातें सब।
0: कोई तो नहीं, जख्म नहीं होते हैं, कुछ कुछ पुरानी बातें ऐसी भी होती है नरेंद्र जी जहाँ पे मुस्कान आ जाती चेहरे पे, थोड़ी सी ना कहते हैं ना, हल्की सी लकीरें जो हैं चेहरे की बदल जाती हैं।
1: बस कुछ नहीं है बाकी हमारे पास कहने के लिए।
0: क्या बात है, मुझे लग रहा है आज कुछ शायरी सुना दोगे आप इसी बात पे।
1: शायरी तो अखिल जी हमें आती नहीं,
0: कोई बात नहीं,
1: शायरी के लिए तो आप ही मशहूर हो। प्रभात जी ने कह दिया था आपके मुंह से बहुत अच्छी लगती है शायरी।
0: प्रभात जी का तो इसमें जवाब ही नहीं। प्रभात जी तो बस इंतजार करते हैं कि कहाँ हम छोड़े और कहाँ से उसे पकड़ ले।
1: कहीं खुशी कहीं गम तो होते ही रहते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। चलिए, आपने शायरी की बात की है तो एक शायरी की बात हम सुनाई देते हैं।
1: सुनाई दो, हाँ सुनाई दो।
0: दोस्ती में ना कोई दिन खास होता है, ना मिलने का कोई तय एहसास होता है। जहाँ सच्चा यार मिल जाए जिंदगी में, वही हर लम्हा अपने आप में खास होता है। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, खास गाना आज आप?
1: फिल्म जुदाई का गाना सुनेंगे, बहुत पुरानी फिल्म है। जितेंद्र की, मुझे मार गई तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई।
0: जरूर जरूर जरूर ये गाना सुनाते हैं। अच्छा ये बताइए नरेंद्र जी, जब कभी मेले में आपने झूले तो झूले ही होंगे या झूले नहीं झूले होंगे तो झुलाए होंगे किसी को?
1: झूले तो नहीं झूले लेकिन मेला बहुत देखा है।
0: तो कभी ऐसा मतलब कोई ऐसा झूला मतलब जिसे देख के लगता है यार ये तो बहुत ऊंचाई तक लेके जा रहा है और डर सा लगता है?
1: लोगों के पेशाब निकल जाते हैं भाई साहब, ने देखा है।
0: अरे वो तो एक अलग चीज़ है, मगर कोई आप बताइए आपको कोई ऐसा झूला जो लगता है कि अखिल जी मैंने आज तक ट्राई तो नहीं किया मगर मेरे हिसाब से वो बहुत ही डेंजर है।
1: डेंजर सबसे बड़ा उससे जो बड़ा हिंडोल आता है जो आप बिजली से चलता है। पहले तो हाथों से चलते थे, पैरों से चलाते थे लोग, अब वो बिजली से चलता है। सबसे खतरनाक झूला वही होता है। इस टाइम कभी एक बार आपने सुना भी होगा किसी मेले में एक झूले का कटा टूट गया तो उस पर कई बच्चे सिर के नीचे मरे भी थे।
0: ये तो होता ही है, कहीं कहीं अगर कुछ हो जाते हैं, कुछ हादसे होते हैं ना जो बिना बताए हो जाते हैं। मगर झूला जो है वो सच में आपने कहा जिसमें बैठने से डर लगता है, जैसे आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको पूरा शहर नजर आता है उस झूले से।
1: अरे डर लगता भैया।
0: चलिए कोई बात नहीं, आपका डर निकालते हैं इस गाने के साथ जो आपने अभी बोला है, मार गई मुझे तेरी जुदाई। धन्यवाद नरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए, और इतनी कहते हैं ना,
1: आपको सोमवार को मुलाकात होगी
0: आपको सारा डेटा पता है। हाँ अब सोमवार को ही मुलाकात होगी आपसे। चलिए जी, करते हैं आपकी फरमाइश पूरी और खूब सारी बातें। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र जी जो कह रहे हैं कि कुछ झूले तो ऐसे होते हैं कि डर के मारे जो है ना सब सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तो हाँ जी, होते हैं ऐसे झूले जहाँ सिट्टी बिट्टी गुल हो ही जाती है। तो चलिए फरमाइश पूरी करते हैं जो दिल से निकली हुई है, और आपकी भी ऐसी कोई फरमाइश है तो 9837896896। हाँ जी साहब, 9837896896 पे आप कॉल करें या मैसेज करके उस फरमाइश को बताएं आपके दिल से जो निकली हुई है। और तब तक इस गाने को करते हैं एंजॉय।

0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। अभी जो आप गाना सुन रहे थे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, तो इस मूवी का नाम क्या है वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये गाना जो गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है, और इसमें जो कास्ट है वो है अमिताभ बच्चन और रेखा जी। तो आप बता ही सकते हैं कि ये मूवी का क्या नाम है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम जो है ना 9:26 हो गया, और कहते हैं दोस्ती की तो हमने खूब बात हो गई है, मगर थोड़े दिल के उस कोने में भी चलते हैं जहाँ किसी का नाम आते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। प्यार भी कितना अजीब एहसास है, पहले इंसान कहता है मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर एक दिन किसी का मैसेज आता है और जनाब हर 2 मिनट में फ़ोन चेक करने लगते हैं। तो होता है प्यार कहीं ना कहीं दिल के ऐसे कोने में बैठा होता है जहाँ जाना और पहुँचना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तेरी मुस्कान से मेरी सुबह बन जाती है, तेरी बातों से शाम सज जाती है, तू पास हो तो क्या बात है मेरी जान, तेरी याद से भी ज़िंदगी मुस्कुरा जाती है। लेकिन दोस्तों प्यार में ना सिर्फ आई लव यू बोलने का काम नहीं है, प्यार है किसी की बात ध्यान से सुनना, उसकी इज्जत करना, मुश्किल वक्त में साथ देना, और बिना कहे उसकी परेशानी समझने की कोशिश करना। तो मेरे सिंगल दोस्तों आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि प्यार में होना ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी से प्यार करना ज़रूरी है। पहले खुद खुश रहिए फिर खुशियाँ बांटें। और हाँ एक बात और बताइए, जब किसी का मैसेज आता है हमें ना कहते हैं जब उस मैसेज में हमें तुमसे कुछ बात करनी है, तो दिल में रोमांटिक गाना बजता है नहीं बजता, या बैकग्राउंड में कोई ऐसा सस्पेंस वाला म्यूजिक बज जाता है टेंटन है, हाँ हाँ बज जाता है कभी, तो जवाब आता है कुछ नहीं रहने दो, तो भाई साहब फिर तो पूरी रात रिसर्च चलती है कि आखिर बात क्या थी। तो चलिए आपके साथ भी खूब सारी रिसर्च चलेगी, मगर इस गाने के बाद आपकी भी कोई दिल की बात हो 9837896896 पे आप कर सकते हैं कॉल और मैसेज भी। तो चलते हैं इस गाने का एंजॉय करते हैं और फिर करते हैं दिल की बातें।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसी 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: हे, यू आर ट्यून्ड टू FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक हलचल, और आज शुक्रवार के इस समय पे अगर मतलब कहा जाए, अगर आज हम दिल की बातें भी करेंगे और दिमाग का दही भी जमाएंगे। अच्छा तो बताइए, आपके घर में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है, आपकी आपकी पत्नी की? और जो लोग अभी अपनी पत्नी के पास बैठकर शो सुन रहे हैं ना, वो जो जवाब है उनका ना, वो सोच समझ कर दें, क्योंकि अपनी सुरक्षा जो है ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं अपने दूसरे लिसनर से, बात करते हैं, पूछते हैं क्या कह रहे हैं वो इस समय। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। और क्या हो रहा है इस समय?
1: थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हैं मैच को देख के।
0: तो मैच में मनोरंजन किसका हो रहा है, इंडिया का या वेस्ट इंडीज का?
1: दोनों टीमें भिड़ी हुई हैं आपस में।
0: दोनों टीमें भरी हुई हैं। इंडिया ने जो स्कोर किया ना आज 249 का, वो इन वेस्ट इंडीज को देख के लगता तो कम है, मगर अगर हम कहते हैं हमारे बॉलर्स में भी बहुत दम है।
1: देखो क्रिकेट की एक कहावत है, बहुत पुरानी, जब तक अगले बॉल में बॉल या हार जीत में हो तब तक पता नहीं चलता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो क्रिकेट में होता ही है। कहते हैं ना, लक बाय चांस और क्रिकेट बाय प्रैक्टिस, ऐसे ही है कुछ। तो आप बताइए, इस समय मैच के अलावा और क्या चल रहा है आपके साथ?
1: बस जिंदगी कट रही है भाई साहब, जैसे कट रही है भगवान
0: जाने। ये तो भगवान जो हैं वो तो सभी जानते हैं, मगर अभी आप क्या क्या जानते हैं ये बताइए। कोई गाना या कोई शायरी आप सुनाना चाहेंगे?
1: बहुत कुछ।
0: तो कोई शायरी सुना दीजिए आज बढ़िया सी। आप शायरी सुना दीजिए आज बढ़िया सी।
1: बढ़िया सी, आंखों से ही रंग डाला है, आंखों से ही रंग डाला है आज तूने मुझको,
0: क्या बात।
1: अब मैं होली खेल के करूंगा अभी क्या।
0: सही है, सही है। आपने ये नहीं कहा कि आंखों से कह के पटाखे छोड़ दिए मेरे पास तूने, अब मैं दिवाली मना के करूंगा क्या।
1: नहीं, आंखों से पटाखे छोड़ने से भाई साहब आंखों में कुछ जा सकता है, उससे आंखें भी खराब हो सकती है।
0: बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल सही। आप फूलझड़ी छोड़ते हैं या वो एकदम वो बुलेट बम?
1: मैं कोई पटाखे नहीं छोड़ता, मुझे याद है।
0: आप कोई भी पटाखे नहीं छोड़ते?
1: नहीं है किसी को जलाकर अपने दिल की खुशियां बनाना।
0: अच्छा जी,
1: आदत नहीं है मुझे किसी के दिल को जला के खुशियां बनाना, मैं तो बस आपको सही आंखों में खुशियां दे देता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है। लगता है मिलना पड़ेगा आपकी, जो जितनी भी कहते हैं ना आंखों से जितनी भी बातें होती हैं वो देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी।
1: ऐसा तो मौका आपके पास आएगा मुझसे मिलने का।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपको कभी बुलाएंगे स्टूडियो में, फिर देखते हैं। हमें कभी जब आग लगानी होगी ना तो हम आप ही को बुलाएंगे, कभी लाइट वाइट चली जाएगी तो आप ही को बुला।
1: आग लगाने के लिए माचिस का सहारा लेने की जरूरत नहीं है।
0: क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों के साथ बैठे तो शाम सुहानी हो गई, चाय की चुस्की लो ली तो बात पुरानी हो गई, बिल आया तो सबने फोन निकाल लिया, दोस्ती की असली परीक्षा वही कहानी हो गई। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: एक बार बताओ अखिल भाई, आप शायरी देख के बोलते हो या कुछ याद कर ही बोलते हो?
0: कुछ शायरी जो होती है ना, मैं जो है देख के बोलता हूँ, क्योंकि वो एकदम एट रैंडम जो है ना वो एकदम दिल के पास आ जाती है। और कुछ शायरी जो याद होती है ना, एकदम जो दिल में बसी होती है, उन्हें बिल्कुल दिल से बोल देते हैं।
1: तो अखिल भाई, मैं आपको बताऊं, मैंने लिखो मुझे कम से कम 8 साल से छोड़ दी था लिखने।
0: अच्छा, आपने मतलब समय की वजह से या आपकी काम की परिस्थितियों की वजह से?
1: कुछ परिस्थिति आ गई, बिल्कुल ही मैंने छोड़ दी। आप जब से बात होती है ना, तो खुद शायरी ऐसे निकल के आती है जो मैंने छोड़ चुका था।
0: ऐसी होता है एक्चुअली शायरी, मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायरी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिल में आसपास, आपके जहन में आसपास रहती है, बस शब्दों का खेल है। थोड़ा सा कहते हैं ना, उसी समय उसको एहसास करके अगर आप बोल देते हैं तो वो चीज़ और भी शायरी का रूप में आ जाती है।
1: कितने बजर यहाँ पर पतीत निकले हैं, कितने बदर यहाँ पर बदित निकले हैं, ना जाने कितने यहाँ फिसले हुए निकले हैं। आसमान की तरह कितने हो गए बुराक, मैच को देख देख के हम हो गए खाक।
0: सही है साहब, सही है। आप जो है ना बिल्कुल, मतलब एक तो छोड़ा आपने MDA से रास्ता और एक जोड़ दिया आपने दिल्ली रोड का रास्ता। बोले कहीं ना कहीं तो निकलेगी, कोई ना कोई तो शायरी निकल ही जाएगी। चलिए इसी बात पे हम एक गाना आपके लिए भी डेडिकेट करते हैं, अपने श्रोताओं के लिए भी डेडिकेट करते हैं आपकी तरफ से। नमस्कार, बहुत ही अच्छा लगा आपसे जुड़ के। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। श्रोताओ, इस तरीके से कहते हैं ना, जब कभी कभी दिल की बात एकदम निकलती है तो ऐसी ही निकलती है। कहीं जज्बात आप पे इतने हावी हो जाते हैं और कहीं बातें आपकी इतनी कहते हैं ना मनमानी हो जाती हैं, तो वो चीज़ें निकल के ही आती हैं। तो चलिए इसके साथ एक गाना सुनते हैं, बहुत प्यारा सा, और वो गाना जो है ना वो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, गुनगुनाएंगे भी, और पक्का सुना दूं हल्का सा।
2: चांद सितारे फूल और खुशबू,
0: चांद सितारे। हाँ ना, ये गाना आप भी

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और अब वक्त है हमारे पास फ्राइडे एंटरटेनमेंट अपडेट्स का, क्योंकि दोस्तों शुक्रवार की शाम और फिल्मों की चर्चा ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो कोई अगर दृश्यम देखने के लिए भाग रहा है तो भागता रहे भाई, क्योंकि 9:55 का जो शो है ना वो चालू होने वाला है वेव में। और थोड़ा जल्दी से पहुंच के गाड़ी को पार्क करें, एक आध मिनट की निकल जाएगी तो सही है, मगर उससे ज़्यादा की मत निकलने देना क्योंकि मूवी बहुत ही मस्त है। और किसी का प्लान है दोस्तों के साथ थिएटर जाने का ना, तो किसी का प्लान होता है घर पे बैठ के पॉपकॉर्न के साथ OTT देखने का। तो चलिए जानते हैं इस शुक्रवार को यानी 9 अक्टूबर को कौन सी मनोरंजन अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं। पहली कुछ जो रिलीज में है जो थोड़ी सी हॉरर और रहस्य पसंद करने वाले लोग हैं ना, उन्हें इस फिल्म को थिएटर रिलीज में देख के आना चाहिए। और अगर आपको डरावनी कहानी पसंद है तो बहुत ही बढ़िया, मतलब कहते हैं अपनी वॉच लिस्ट में आप इसे रख सकते हैं। इस मूवी का नाम है बॉक्सी। और दूसरी है रिपोर्टिंग लाइव, परिणीति चोपड़ा अभिनीत, ये इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है और नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। तो ज़रूर अगर आप कहते हैं ना थोड़ा सा थ्रिलर अगर आपको पसंद है तो ज़रूर इस मूवी को, इस सीरीज को आप देखें OTT पर। क्राइम और सस्पेंस पसंद करने वाले दर्शकों का इस थ्रिलर को अपनी वीकेंड वॉच लिस्ट में शामिल जरूर कर सकते हैं। ये जो कहानी एक मेयर पद के उम्मीदवार के बेटे के अपहरण के बाद पैदा हुए संकट पे है आधारित, और इसका नाम है एनिमल्स। तो चलिए अब आप बताइए आपको क्या पसंद है, हॉरर फिल्म देखकर कंबल में छिपना या रोमांटिक फिल्म देखकर किसी की याद में खो जाना, कॉमेडी देखकर तो पेट पकड़ के हंसना ही पड़ता है साहब। तो सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि फिल्म देखने के लिए आप किस दोस्त को बुलाते हैं। हाँ हाँ, अगर कोई दोस्त नहीं मिल रहा तो आप मुझे ही बुला सकते हैं, जो हर 5 मिनट में पूछता है भाई कहानी में हुआ क्या है। कहानी नहीं भाई, तू पॉपकॉर्न एंजॉय कर, कहानी तो हम देखते रहेंगे क्या चल रहा है। तो दोस्तों रिलीज और कहते हैं ना आपके शहर में अगर उपलब्धता होती है उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप देखिए और टिकट बुक करिए साहब। स्ट्रीमिंग शुरू होने से पहले जो है ना एक जो चार्म होता है जब सीट पर बैठ के हाँ भाई ये मूवी भी ट्रेलर्स आने लगते हैं और उन्हें देखने लगते हैं कि कौन सी मूवी आने वाली है। एक शायर इसी के ऊपर, कभी पर्दे पर मोहब्बत, कभी पर्दे पर कहानी, कभी आंखों में आंसू, कभी हंसी की रवानी। दोस्तों के साथ फिल्म का मज़ा ही कुछ और है, यादों में जुड़ जाती है हर एक शाम सुहानी। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं बढ़िया सा गाना। और हाँ जी साहब, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं आपके हमारे दरमियान, उसके बाद पढ़ेंगे खूब प्यारे से मैसेजेस और करेंगे अलविदा। तो चलिए इस गाने के बाद आपसे होती है बहुत सारी मुलाकातें।

तुमसे बात हो तो दिन अच्छा गुजरता है, तुमसे बात हो तो दिन अच्छा गुजरता है, तुम्हारा ख्याल आए तो दिल मुस्कुराता है। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, कभी दूर रह के भी अपना बनाना होता है। तो साहब थोड़ा हंस लेना, थोड़ा मुस्कुरा लेना, हर छोटी खुशी को दिल से अपना लेना, जिंदगी दोबारा मिले ना मिले दोस्तों, आज के इस पल को यादगार बना लेना। तो इसी के साथ कुछ यादगार मैसेजेस पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे श्रोता हमसे क्या कहते हैं। हेलो सर, गुड नाइट। आई एम अनुराग यादव, अवंतिका कॉलोनी, MDA मुरादाबाद से। हम आपके दिल में रहते हैं, प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग। और इंतज़ार रहता है हर शाम तेरा, रातें कटती हैं लेकर नाम तेरा, मुद्दत से बैठा हूँ पाल की आस, कभी तो आएगा कोई पैगाम तेरा। तो ज़रूर यादव जी, आपका ये पैगाम ज़रूर आएगा और पहुँचेगा। और आपका जो गाना है ना, वो हमने शायरी से पहले ही आपको सुना दिया, तो बिल्कुल बढ़िया। और आप अवंतिका कॉलोनी में रहते हैं, तो कहते हैं ना अवंतिका कॉलोनी से आपके आसपास की खूब सारी शायरियाँ तो निकलती रहती होंगी, कभी MDA कभी आशियाना, तो ये तो जगह ही आपने ऐसी चुन रखी है। दूसरा मैसेज आया हुआ है हमारे पास। गुड इवनिंग सर, आपके दिल से दिल तक शो का अपना ही एक अलग अंदाज है, आपकी आवाज़ बेहतरीन गानों का सलेक्शन और अपनापन सफ़र को और भी खूबसूरत बना देता है। परदेश में बैठे बैठे जब आपका शो सुनने को मिलता है तो लगता है जैसे अपने लोगों के बीच बैठे हो। बस आपसे एक छोटी सी फरमाइश है, अगर मुमकिन हो तो हमारी पसंद का एक गाना ज़रूर सुनाइएगा। यूं ही अपनी आवाज़ और खूबसूरत नगमों से महफिल सजाते रहिए। आपकी शो के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़रूर ज़रूर, आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे। और कह रहे हैं गुड नाइट अखिल सर, लेट गो ऑफ ऑल टायर्डनेस ऑफ द डे एंड क्लोज योर आइज विद अ पीसफुल स्माइल, मे गॉड फिल योर नाइट विद पीस हैप्पीनेस एंड ब्यूटीफुल रेनबो ड्रीम्स, विल मीट अगेन टुमारो विद न्यू होप फ्रेश एनर्जी एंड रिन्यूड स्ट्रेंथ, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्लीप पीसफुली, स्वीट ड्रीम सर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। तो आपको भी खूब सारा प्यार, अपना रखे ध्यान, अपने साथ साथ अपनी गाड़ी का भी रखे ध्यान, क्योंकि साहब जिंदगी का नाम ही गाड़ी है। तो दोस्तों अब हो गया है टाइम 10:03, और आज रात घर लौट करना आप अपने किसी खास दोस्त को, मैं कहता हूँ ना हमेशा की तरह, मैसेज ज़रूर कीजिएगा, किसी को, किसी अपने से कहिए कि वो आपकी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है। कई बार तो दो शब्द कैसे हो किसी का पूरा दिन बेहतर बना देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त हो चला है आज के खूबसूरत इस शो दिल से दिल तक अखिल संग को अलविदा कहने का। आज हमने दोस्ती की शरारतें की, प्यार की बातें की, हंसी के ठहाके लगाए, और ऐसे ठहाके लगाए साहब, कुछ हंस रहे हैं और कुछ अभी तक सोच रहे हैं कहाँ लगे थे ठहाके। शुक्रवार की फिल्मों की चर्चा भी की, तो लेकिन याद रखिए शुक्रवार की मस्ती है ना सिर्फ आज रात तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में हर दिन थोड़ी खुशी, थोड़ी हंसी और थोड़ा प्यार ज़रूर रखिएगा। जाते जाते आपकी फरमाइश का एक आखिरी शायरी। हर शाम में खुशियों का पैगाम होना चाहिए, दोस्तों के नाम एक प्यारा सलाम होना चाहिए, ज़िंदगी छोटी है गिले शिकवे छोड़ दीजिए, हर दिल में मोहब्बत का मुकाम होना चाहिए। तो मैं हूं आपका अपना अखिल, आपसे ज्यादा चाहता हूं अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। दोस्तों आपकी जिंदगी में दोस्ती भी बनी रहे, प्यारी बना रहे और हंसी का सिलसिला भी चलता रहे। इसी दुआ के साथ गुड नाइट, हैप्पी फ्राइडे और हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड। तो याद रखिए दिल से जुड़िए, दिल की सुनिए, क्योंकि आपका अखिल आपके साथ है दिल से दिल तक में। तो मिलते हैं अगले शो में एक नई कहानी, नई शायरी और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे मंडे को।
आपको यहीं पर।

0: அண்ணா யாரு?
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: ジョーカ
1: ー。सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.